आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान और मतगणना 18 तारीख को होगी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति ने विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नामांकन पत्र दाखिल

0: अक्षरशः आमच्या आजच्या प्रसारणामध्ये सकाळी 8:40 आपण ऐकणार आहात मराठी चित्रपट संगीत. 9 प्रसारित करू हिंदी चित्रपट संगीत. 9:30 आपण ऐकाल मिश्र संगीत. 10:30 भावगीतांच्या काही रचना सुगम संगीताच्या कार्यक्रमात. तर 11:00 आपण ऐकाल नाट्यसंगीताचा कार्यक्रम. 11:30 सूत्रबद्ध निवेदनासह गीतांचा कार्यक्रम आपण ऐकाल. आमच्या संगीतविषयक कार्यक्रमाविषयी आपण ऐकत होतात. आपण आहात आकाशवाणीच्या सातारा केंद्रासोबत. सकाळचे 8:00 समाचार प्रभात हिंदीतून बातम्या दिल्ली केंद्र प्रसारित करील. आम्ही सहक्षेपित करणार आहोत काही क्षणातच.
1: सरकार का लक्ष सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है.
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है. माने बिजली बिल जीरो और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं. तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर.
3: हर घर सूर्य घर.
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन से वार्ता करेंगे. 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी. केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे. प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन. और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 से हराकर IPL खिताब जीता. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे. इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी. इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी.
5: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे. सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे. इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है. म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है. म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है. अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
4: 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी. आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे. महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी. 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं. मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी. महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है. समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी. विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी. कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे. उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा.
6: यह अभियान देश

0: कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
2: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
2: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
4: मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं, वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए के इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
2: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
5: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों

कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा, सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग के डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी, बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन, राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। कागिसो रबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड पॉइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी, 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुनीश शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिए देसी पेय। ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में 5वां एफटीए, पश्चिम एशिया संकट के बीच 2 गुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत ने 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार। जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली वालों की राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बैंक

सुरीला सफर कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम की बात और इस कार्यक्रम के गीत होते हैं बहुत खास, और आज भी कुछ ऐसी ही बात है, ऐसा ही कार्यक्रम है। तो चलिए ना एक सुरीले सफर

पर हमारे साथ। इस सुरीले सफर में आज की जो इबारत है वो हम बता देते हैं, खासतौर से उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने अभी नहीं देखा है फेसबुक पर इस इबारत को। इबारत कुछ इस तरह से है, उनका प्यार नहीं बढ़ता चाहे दुनिया 1/2 हो जाए। वो सिखाते हैं गगन में उड़ते मस्त पंछी की तरह जीना, रोते रोते हंसना, दिल की गिरह खोल कर बाहर से अंदर तक दुनिया को समझना। उनके होठों पर बड़ा नाम करेगा या राज करेगी जैसी दुआएं रहती हैं, मुड़ के ना देखो या चुनरी संभालो जैसी उनकी हिदायतें जिंदगी भर साथ रहती हैं, याद रहती हैं। याद आती है उनकी सुनाई हंसों की कहानी और गुजरते जाते हैं दिन महीने साल, हम सीख जाते हैं साथी का साथ देना। खुश रंग हिना की खुशबू लेकर डोलती पवनिया से दिल का संदेश कहना, उनका हाथ लगते ही बिगड़ता काम बन गया है। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? वैसे आखिरी लाइन तो एक हिंट थी आपको ये जानने के लिए कि देखिए आज आपने इस कार्यक्रम की क्या बातें होने वाली हैं उन्हें समझा है या नहीं, या ये इबारत की सोर इशारा कर रही है। और बेहद खुशी की बात है कि हमारे सभी श्रोताओं ने जल्दी से जल्दी इस थीम को पहचान लिया। हाँ, आज विश्व अभिभावक दिवस है और इसीलिए बातें हो रही हैं उन अभिभावकों की, माता पिता की, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। ऐसा हमारे एक साथी कह रही हैं, सच कहूँ तो माँ पापा का प्यार ऐसा खजाना है जिसकी कीमत कभी नहीं लगाई जाती। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे तब भी माँ पापा का प्यार हमारे साथ खड़ा रहता है। उनकी दुआओं में इतनी ताकत होती है कि जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान लगने लगती है। उनके जैसा चाहने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होता। माँ पापा का प्यार शब्दों में नहीं बल्कि उनकी हर चिंता, हर दुआ और हर त्याग में दिखाई देता है। क्या बात है। इन्होंने ये भी लिखा है कि आज के कई गाने हम समझ गए हैं और वो गीत हम विविध भारती पर सुनते भी रहते हैं, पर बताएंगे नहीं। जो गीत सही होगा उस समय बता देंगे, सच ही कहेंगे, आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप हमारी प्यारी सी उद्घोषिका के साथ एक सखी भी हैं। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अनमोल दोस्ती होती है ये जब इस तरह से हम बात शुरू करते हैं और हम जो कहते हैं वो आप झट से समझ लेते हैं। हमारे साथियों ने बताया है कि वो तमाम गाने बताए हैं जिन पर आज की ये इबारत रची गई है, और कुछ साथियों ने ये भी कहा है कि सारे गाने तो इबारत में ही छुपे हैं और एक एक गाना उनको समझ में आ गया है। क्या बात है। तो भाई ये गाना आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, आज आपकी पसंद के सारे गाने आ रहे हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आज कद्यांश को बहुत ही सुंदर भावों से सजाया है और शब्दों के चित्रण में माता पिता के ममत्व की सुमधुर खुशबू को पसारा है। माता पिता का प्यार इस दुनिया का सबसे निस्वार्थ, पवित्र और अनमोल एहसास है। ये वो पूंजी है जो हमें जीवन के हर कदम पर हिम्मत, सुरक्षा और सही संस्कार देती है। प्यार, ममता और अपनत्व का पूरा संसार आज रच दिया है। दो पंक्तियां साझा करूंगा, तुम्हारा जिक्र भी कितना अजीब है मेरे चेहरे पर, तुम्हारा जिक्र भी कितना अजीब है मेरे चेहरे पर, आते ही लबों पर मुस्कान और आंखों में नमी छा जाती है। वाह, क्या बात। एक और श्रोता कह रही है कि कहीं पढ़ा था बच्चे को मां 9 महीने तक गर्भ में रखती है, अपनी बाहों में 3 साल और अपने हृदय में तब तक जब तक कि खुद उसकी मृत्यु ना हो जाए। पिता के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि बचपन से पिता से एक अव्यक्त दूरी अपने आप बन जाती है, मगर पिता का हृदय बच्चे के लिए एक पाठशाला की तरह है। बच्चा समुद्र की गहराई में ना डूबने पाए इसके लिए पिता तमाम जतन जीवन भर करते रहते हैं और उनकी छवि एक कड़क पिता के रूप में बच्चों के हृदय में दर्ज हो जाती है। मगर पिता के सीने में भी एक नाजुक दिल धड़कता है। मंगल नसीम की लिखी कुछ पंक्तियां यहां साझा कर रही हूं। क्या सीरत, क्या सूरत थी, मां ममता की मूरत थी, पांव छुए और काम हुए, अम्मा एक मुहूर्त थी। बहुत सुंदर। एक और संदेश है कि आज की भारत में माता पिता के प्यार की खुशबू महक रही है। वात्सल्य और सुसंस्कारों का संतुलित जीवन रस लेकर उनके बच्चे खुशी से

फूले फले, ऐसी उनकी मनोकामना होती है। निस्वार्थ भाव से वो अपनी संतान को आधार और सुरक्षितता देते रहते हैं। उनके प्रेम की गहराई कभी मापी नहीं जाती। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, और इन्होंने बहुत सारे गाने लिखे हैं और मुझे लग रहा है कि आज इनकी पसंद बिल्कुल हमसे ही मिलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज वैश्विक अभिभावक दिवस पर यह इबारत माता पिता और अभिभावकों के निस्वार्थ प्रेम, त्याग और मार्गदर्शन को सुंदरता से व्यक्त करती है। उनका प्यार कभी बढ़ता नहीं बल्कि हर परिस्थिति में संतान के साथ खड़ा रहता है। वे हमें जीवन की कठिनाइयों में मुस्कुराना और सही राह पर चलना सिखाते हैं। उनकी दुआएं, सीख और हिदायतें उम्र भर हमारा संबल बनी रहती हैं। उनके स्नेहिल स्पर्श में ऐसा विश्वास होता है कि बिगड़े काम भी बन जाते हैं। अभिभावक हमारे जीवन की वो अनमोल छाया है जिनकी याद, सीख और प्रेम हर दिन हमारा मार्ग रोशन करते हैं। बहुत सुंदर लिखा आपने। और अब हम सुनवा रहे हैं ये गाना। सुनिए और बताइए फिल्म का नाम, और हाँ आवाजें किनकी हैं।

बिल्कुल सही जवाब आ गया। फिल्म कालीचरण का गाना अनुराधा पौडवाल, कंचन और साथियों की आवाजें, और ये भी बता दिया हमारे श्रोताओं ने, रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी लिया है, प्रेमनाथ जी का नाम भी लिया है। और एक श्रोता कह रहे हैं कि त्याग और समर्पण की सराहना, माता पिता अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए अपनी खुशियों का त्याग करते हैं, ये दिन उनके इसी निस्वार्थ भाव को मान्यता देने के लिए है। प्रथम गुरु माता पिता बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं, वे ही बच्चे को संस्कार और जीवन जीने के सही मूल्य सिखाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं

काफी बड़ा सा लंबा सा मैसेज है, हम छोटा करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। अभिभावक हमारे जीवन की वो अमूल्य छाया हैं जिनके स्नेह, त्याग और आशीर्वाद से हमारा जीवन संवरता है। उनका प्यार कभी नहीं बटता, उनकी दुआएं हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती हैं। उनका स्नेह किसी नदी की तरह होता है जो बिना किसी भेदभाव के निरंतर बहता रहता है। उनकी बातें, हिदायतें और स्नेह समय के साथ और भी अनमोल लगने लगते हैं। संसार में यदि निस्वार्थ प्रेम का कोई सबसे सुंदर रूप है तो वो माता पिता का प्रेम है। और आगे लिखते हैं कि आज वैश्विक अभिभावक दिवस पर ये इबारत माता पिता और अभिभावकों के निस्वार्थ प्रेम, त्याग और मार्गदर्शन को सुंदरता से व्यक्त करती है। उनका प्यार कभी नहीं बटता। वाकई एक संदेश है, आज का सुरीला सफर शुरू करने से पहले दो घटनाओं का जिक्र करना है। महान ज्येष्ठ गायिका सुमन कल्याणपुर का देहांत, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, होम शांति। महानायक शोमैन राज कपूर का आज स्मृति दिन है। उस आवारा छलिया अनाड़ी दीवाना कलाकार को अभिवादन। इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए आज का सुरीला सफर पूरा करना है। इनके लिए हमारा प्यार कम नहीं होगा, बटेगा नहीं। और फिर आगे इन्होंने गाने लिखे हैं, लेकिन हम बता दें कि आज जो जन्म तिथि है, आज है अभिनेत्री नरगिस की, और हम उन्हें याद भी करेंगे। सुमन कल्याणपुर जी की आवाज में आपने यादों की महफिल कार्यक्रम में कई गाने सुने, और सदाबहार नगमे भी आप सुनेंगे। आज का आज के फनकार भी आपने सुना था सुबह 9:30 पर, जो आधारित था सुमन कल्याणपुर पर। और अब कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं। ये गाना सुनिए और बताइए कि जो नायक है उनके हाथ में क्या है, ये आपको बताना है। और एक सवाल और है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने माता पिता के प्यार की बात की है। भाई कभी डांट भी तो पड़ी होगी या कभी अच्छी तरह से धुलाई भी हुई होगी, अगर याद हो, जिसे जिसके बाद आपने अपनी वो बात छोड़ दी जिसके लिए धुलाई या पिटाई हुई थी, तो वो भी हमें बताएं।

कयामत से कयामत तक फिल्म का ये गाना उदित नारायण की आवाज में, और हमारे श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने तुरंत बताया कि फिल्म में आमिर खान इलेक्ट्रिक गिटार लिए हुए हैं। बिल्कुल सही जवाब, और इस सही जवाब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही बहुत सारे प्यारे प्यारे संदेश भी हैं। एक श्रोता ने बताया है कि मेरी धुलाई आठवीं तक बहुत हुई है, खासकर तब जब गणित के सवाल नहीं बनते थे, पर जब नौवीं कक्षा में आई तो पापा ने एक दिन मेरे दोनों भाइयों और माँ को खास तौर पर बोला था, अब इस पर कोई भी हाथ नहीं उठाएगा। हाँ, बहुत अच्छा लगता ना जब ऐसे कहा जाता है, लगता सच में हम बड़े हो गए है ना। एक श्रोता कह रहे हैं, माता पिता ही तो हर एक जीवन के मूल में हुआ करते हैं, और वे अपने वैश्विक परिवार को वट वृक्ष की तरह न केवल पालते पोसते हैं, उनके पालन पोषण से अभिषिक्त हृदय ही तो भली भांति ही नहीं अपितु सुरहृद के साथ गाया करते हैं कि धरती मेरी, माता पिता आसमान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान। वह अपने गीत की पंक्ति जो है बड़ी सुंदरता से पिरो दी। हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं कि भाई चाचा चाची भाई भाभी भी तो होते हैं अभिभावक। बिल्कुल सही, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी यही कहने वाली थी कि बहुत बार बड़े भाई या बड़ी बहन बिल्कुल अभिभावक बनकर पालते पोसते हैं और बहुत सारी बातें उनसे साझा करते हैं और माता पिता से ज्यादा करीब उनके हो जाते हैं। तो अगर कुछ ऐसा हो तो उनके बारे में भी बताइए, और साथ ही ये भी बताइए कि जो हमने पहले पूछा था ना कि किस बात के लिए धुलाई हुई थी, एक श्रोता ने बताया, अगर आपको याद आ रहा हो तो जरूर बताइए, क्योंकि मम्मी पापा की तो पिटाई भी बहुत प्यारी होती है। आप भी इत्तेफाक रखते हैं ना इस बात से? संदेश मिला एक श्रोता का, कह रहे हैं कि जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, मिल गए विविध भारती पर, तुम तो सहारा मिला, आ गए एक नए रास्ते पर कदम, जब सुरीला सफर का नजारा देखने मिला, तब से पंछी बनू उड़ता फिरूं विविध भारती के मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं प्रसारण तरंगों पर, दिल की गिरह खोलकर चुप ना बैठूंगा मैं, क्योंकि यहां कोई नहीं है अजनबी, मुड़ मुड़ के ना देखो मुझे, तुम मेरे पास आओ, वीबीएस के साथ साथ गुजर जाए, हर दिन दिन हर पल गिन गिन साथिया साथ निभाना, साथी मेरे विविध भारती के राह में छोड़ ना जाना। बहुत सुंदर। आज की इबारत यही इंगित कर रही है कि जिंदगी का सब कुछ सीखने व सिखाने वाले हमारे अभिभावक हमारे माता पिता होते हैं। बेहद खूबसूरत इबारत है। आज विश्व अभिभावक दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे जीवन के सभी प्रियजनों को माता पिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माता पिता एक बेहतर कल के निर्माता है। इस दुनिया का भविष्य उनके द्वारा प्रतिदिन हर पल निभाए जाने वाले कर्तव्यों पर बहुत हद तक निर्भर करता है। हम सभी पर अपने माता पिता की शुभकामनाएं आशीर्वाद सदैव बना रहे। और अब एक गाना।

0: हमारे साथियों ने बता दिया, जाहिदा हुसैन अभिनेत्री नरगिस की भांजी थी, अनोखी रात फिल्म का ये गाना। बहुत बहुत शुक्रिया सही जवाब के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। शैतानियों की भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: 2 जून, सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: तो भाई, माँ बाप की, माता पिता की जो डांट होती है वो भी बड़ी मीठी होती है, और उस मीठी डांट को याद करते करते और ये संदेश लिखते हुए जरूर हमारे जो साथी हैं, श्रोता हैं, वो मुस्कुरा रहे होंगे। लिखते हैं हम।

0: भाई तीन बहनों का लंबा परिवार है। मैं सातवीं नंबर पर हूँ, अतः बचपन में डांट मार आम बात थी। चाहे बड़े भाई से हो या माँ से, हाँ पिताजी ने कभी नहीं मारा। क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि बात बचपन की है। पिताजी ने गणित में भाग के कुछ सवाल स्लेट पट्टी पर लिखकर हल करने को दिए। उस समय गणित कमजोर था, दो झपटे ऐसे पड़े कि सारे सवाल मैंने हल कर दिए। तब से लेकर आज तक कभी भी गणित में फेल नहीं हुए। वाह क्या बात है। एक और श्रोता बता रही है कि बचपन में माँ की साड़ी पहन के खूब खेल कूद कर गंदी करके रख दी, और जब माँ ने तीन चार तमाचे लगाए तो साड़ी पहनने का सारा भूत उतर गया। ओहो। एक और श्रोता ने बताया है, माँ तो खैर बहुत जल्दी चली गई थी, हम भाई बहनों को तो हमारे पापा ने ही बड़ा किया है और उन्होंने कभी भी हमें नहीं डांटा। आज भी वो हम भाई बहनों के साथ ही सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। उनकी जरा भी तबीयत खराब होती है तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। सच ऐसा ही होता है। एक और श्रोता ने बताया है कि शैतानियां तो बहुत होती थी, पर इन शैतानियों का सरताज भैया रहता था। बेचारा भैया को ही पड़ जाता था। माँ कभी किसी को नहीं मारती थी, माँ इमोशनल ब्लैकमेल करती थी। उसके उस इमोशनल ब्लैकमेल के डर के मारे हम अपनी गलतियां स्वीकार कर लेते थे। बोलती थी कि अगर तुमने झूठ बोला तो मेरे मुंह से खून निकल आएगा। पता नहीं कैसे माँ समझ जाती थी कि हम झूठ बोल रहे हैं, और वो मुंह में कुछ लाल रंग का चीज डालकर दिखा देती थी कि मेरे मुंह से लाल खून जैसा कुछ है, और हम भाई बहन डर के मारे उसे पकड़ के रोने लगते थे और अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते थे। पिताजी गुस्सैल थे पर हम लड़कियों को कभी नहीं मारते थे। इसी जून में 2 साल पहले माँ भी चली गई। इन सब बातों को याद करके मन थोड़ा भावुक भी हो रहा है। बिल्कुल हो जाता है। एक और साथी बता रहे हैं कि हम लोग अपने पिताजी से बहुत डरते थे। उनका रौब घर में था, हमारी बुआ चाचा भी उनसे डरते थे। डांटने पर कभी भी उलटकर जवाब नहीं देते थे, माँ से हर तरह से बात कर लेते थे। हम लोगों की बहुत सी गलतियों के कारण हमारी माँ भी डांट खा जाती थी। अब माता पिता कोई नहीं है, अब कोई डांटने वाला नहीं है। सच ये बात बहुत कसकती है। एक श्रोता ने कहा है कि इबारत भावनापूर्ण पारिवारिक रिश्तों को चित्रित करती है और हमें बचपन के गलियारों की सैर कराती है। सही है, माता पिता और पारिवारिक संरक्षण ही शैशवकाल से उत्तरार्ध तक बौद्धिक शारीरिक नैतिक विकास में सहायक होता है। पुराने काल के संयुक्त परिवार बहुमुखी विकास का मुख्य कारक होता था, जहां चाचा चाची ताऊ ताई बुआ सभी के सानिध्य में बचपन गुजरता था। अब एकाकी परिवार का चलन और एक या दो बच्चों में सीमित परिवार रह गया है। भविष्य में मौसा मौसी बुआ शब्द शब्दकोश से लुप्त हो जाए तो आश्चर्य नहीं। बहुत
1: दर्शना जोगदंडकर राष्ट्रीय बातम्या देत आहे। ठळक बातम्या, व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या दरांमध्ये वाढ, घरगुती सिलेंडरच्या दरात बदल नाही। राज्यसभेच्या 24 जागांसाठी होणाऱ्या द्वैवार्षिक निवडणुकीसाठी अधिसूचना जारी, 18 जूनला मतदान। महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या द्वैवार्षिक निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याचा आज शेवटचा दिवस। आयआयटी प्रवेशासाठीच्या जेईई ऍडव्हान्स परीक्षेचा निकाल जाहीर, आणि ज्येष्ठ पार्श्वगायिका सुमन कल्याणपूर यांचं काल रात्री मुंबईतल्या राहत्या घरी निधन। दिल्ली मुंबई कोलकाता आणि चेन्नई या चार प्रमुख शहरांमध्ये हॉटेल आणि इतर व्यवसायांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या एलपीजी सिलेंडरच्या दरांमध्ये 42 रुपयांपासून ते 53 रुपये 50 पैशांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे, तर घरगुती वापरासाठीच्या गॅसच्या दरात कोणतीही वाढ झालेली नाही। दिल्लीमध्ये व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या दरात 42 रुपयांची वाढ झाली असून आता या गॅसची किंमत 3113 रुपये 50 पैसे, मुंबईत 43 रुपये 50 पैशांनी वाढ झाली असून सिलेंडरची किंमत 3067 रुपये 50 पैसे, कोलकात्यामध्ये 53 रुपये 50 पैसे वाढ झाली असून गॅसची किंमत 3255 रुपये 50 पैसे, तर चेन्नईमध्ये 42 रुपयांची वाढ होऊन गॅसची किंमत 3283 रुपये झाली आहे। त्याबरोबरच 5 किलोग्रामच्या छोट्या गॅस सिलेंडरच्या दरात 11 रुपये वाढ झाली आहे। दरम्यान केंद्र शासनाने आजपासून पेट्रोल डिझेल आणि एटीएफ म्हणजे विमान इंधनावरचा निर्यात कर कमी केला आहे। पेट्रोलच्या निर्यातीवरील विंड फॉल गेनवरचा कर निम्म्यावर आणून 1 रुपया 50 पैसे प्रतिलिटर, तर डिझेल 13 रुपये 50 पैसे प्रतिलिटर आणि एटीएफवरचा कर 9 रुपये 50 पैसे प्रतिलिटर केला आहे। भारत आणि ओमान यांच्यातल्या व्यापक आर्थिक भागीदारी करार आजपासून अंमलात।

फिल्म रात और दिन का गाना लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजें, शैलेंद्र के वो उल शंकर जयकिशन का संगीत, और बिल्कुल सही जवाब के लिए बेहद बेहद ढेर सारा शुक्रिया। हमारे एक श्रोता ने बता दिया, तमाम श्रोताओं ने बताया कि प्रदीप कुमार और फिरोज खान इस फिल्म में अभिनेता के रूप में नजर आए थे। और अब संदेशों की बात हम करें, लेकिन उससे पहले एक सवाल और। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें मम्मी पापा घर में छुपा कर रख देते हैं, बाद में देते हैं, हमारे ही लिए रखते हैं, लेकिन वो छुपा हुआ खजाना ढूंढना उस समय बहुत एडवेंचरस लगता है, बड़ा रोमांचकारी लगता है। और कई बार वो ढूंढ भी लिया जाता है, और ढूंढने के बाद जब पता लगता है तो क्या होता है? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो हमें जरूर बताएं। एक श्रोता लिखते हैं कि जरूरी नहीं कि मार के डर से ही डरें, हमारे मम्मी पापा आंखों से डरा

देते थे। जी हाँ, ये आंखों का अनुशासन भी गजब का होता था। एक और श्रोता कह रहे हैं कि बाबूजी हम लोगों को जूते डंडा से पीट देते यदि उनके सामने आवाज वाला खेलते थे, पर माँ गलतियों पर झाड़ू से मारती थी, पढ़ने को हमेशा बोलती थी, इसलिए आज हम भी अच्छे जॉब में हैं। बाबूजी किताब के लिए हमेशा आगे रहते थे, कलाकार हैं बाबूजी, दोनों हाथों से लिखते हैं, चित्र बनाते हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है। एक और संदेश में बताया है कि बचपन में माँ बड़े भाई मास्टर जी से मार खाने और उससे बचने के लिए दूर दौड़कर भागने का आनंद ही अलग था। और एक संदेश है कि हमारी पीढ़ी वो थी, माता पिता की मार खाकर रोते थे, इतना रोते थे कि चुप कराने के लिए भी मार खाने के बाद चुप होते थे। क्या बात है। इन बातों के साथ चेहरे पर आप सभी के मुस्कान भी आती जा रही है। और एक संदेश में कहा है कि माता पिता बच्चे को प्यार, संस्कार और सुरक्षा देकर पालते हैं, जबकि सास ससुर का रिश्ता हमें परिस्थितियों का सामना करना, समझौता करना और एक नई सामाजिक दुनिया में अपनी पहचान बनाना सिखाता है। हर परिवार और परिस्थिति अलग होती है, कई बार सास ससुर का अनुभव और सीख जीवन में मजबूती लाते हैं, तो कभी उनके साथ का संघर्ष व्यक्ति को आत्मनिर्भर और साहसी बना देता है। एक श्रोता ने बताया है कि हम जब मुंबई में रहते थे, फोर्थ क्लास में था, तो एक दिन मैं स्कूल से घर वापस आ रहा था, मेन रोड क्रॉस कर रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया और कार टैक्सी ने मुझे टक्कर मार दी, मैं बेहोश हो गया था। जब मुझे होश आया तो टैक्सी ड्राइवर अंकल जी बहुत डरे हुए थे, वैसे गलती मेरी थी, दूसरे लोगों ने मुझसे पूछा कि घर कहाँ है, हम छोड़ दें। मैं कहने लगा अंकल मुझे छोड़ने मत चलो प्लीज, मम्मी बहुत डांटेगी और पिटाई होगी, मैं चला जाऊंगा। फिर भी ड्राइवर अंकल छोड़ने चले, परंतु पूज्य माता जी को घटना का पता चला तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया और खुद ही रोने लगी, कहीं मुझे ज्यादा चोटें तो नहीं आई हैं। ये होता है माँ का प्यार, और मैं डर रहा था। तो अब वो खजाने वाली बात अगर याद आ रही हो तो जरूर बताएं, और बताएं कि इस फिल्म के गीतकार संगीतकार कौन हैं।

फिल्म श्री 420 के इस गाने के लिए सही जवाब आ गया। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा था, शंकर जयकिशन का संगीत था इस फिल्म में। आशा भोसले और मन्ना डे के साथ साथियों की आवाजों में आपने ये गाना सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। रात और दिन फिल्म का जो गाना आपने इससे पहले सुना था उसके बारे में हमारे एक श्रोता ने बताया कि पोल्स धुन पर विशेष आधारित नरगिस जी और फिरोज खान, रात और दिन शंकर जयकिशन जी का संगीत, अकॉर्डियन खूबसूरत और तबले का खास चलन। और बहुत सारे श्रोता बहुत खुशी व्यक्त कर रहे हैं कि आज तो मेरे भेजे हुए बहुत सारे गीत कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, है ना, खुशी की बात। एक श्रोता ने बताया कि मेरे बेटे का विवाह 9 साल पहले हुआ है, कभी सास और बहू में कंकस नहीं होता, माँ बेटी की तरह सहृदय भाव से रहते हैं, ये भी जीवन का आनंद है। छोटी बातों पर कभी छोटा मन नहीं करना चाहिए, झगड़े का कारण एक दूसरे के प्रति कटु वचन से अभाव बढ़ता है। एक संदेश में कहा गया है कि बच्चों के जीवन के पहले गुरु माता पिता होते हैं जो अच्छे बुरे की परख से अवगत कराते हैं। बच्चों पर अपने माता पिता के आचरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। बच्चों को स्कूल में सिर्फ किताबी ज्ञान मिलता है लेकिन सामाजिक तौर तरीके सीखने की शुरुआत अपने परिवार से ही होती है, जहां माँ के आंचल की छांव और पिता के प्यार से बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो जाता है।

आज की एक और संदेश में कहा है कि आज की इबारत की खास बात यह है कि गीतों को लेकर इसमें कुछ भी दबा छुपा सस्पेंस नहीं है। इबारत पढ़कर साफ साफ पता लग रहा है कौन कौन से सदाबहार सुपरहिट गीत बजने वाले हैं। कुल मिलाकर बहुत सरल और आसान समझ में आने वाली इबारत है। वैसे कुछ सस्पेंस हो तो और मजा है। तो चलिए, आप सबको माता पिता दिवस की बहुत शुभकामनाएं और ढेरों बधाइयां। तो अब अगला गाना सुनिए और बताइए कि इस फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं किन कलाकारों ने निभाई थी।

0: फिल्म बहारों के सपने का गाना लता मंगेशकर और मन्ना डे के स्वरों में आपने सुना। राहुल देव बर्मन का संगीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और सही जवाब आ गया। आशा पारेख और राजेश खन्ना ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। संदेश मिला है कि हमारी श्रोता ने बताया है कि माँ से तो नहीं डर लगता था, पिता से बहुत डरते थे। कड़क स्वभाव वाले और शिष्ट पालन के आग्रही थे। सत्य की राह पर खुद चलते थे, हमें भी सत्य की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। आज माता पिता दोनों नहीं है, लेकिन उनके आशीर्वाद से हम सुखी हैं। और बचपन की यादें ताजा हुई मुड़ मुड़ के न देख गाना सुनकर, हमारी एक श्रोता की क्या बात है। एक और श्रोता बता रहे हैं कि हमारे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका पूरे घर में रुतबा चलता था। हम उनसे हम बच्चों को भी बहुत डर लगता था, लेकिन थे वो बहुत विकासवादी। आज से 70 साल पहले उन्होंने हमारी बुआ जी को स्कूल भेजा था, वो गांव से इकलौती थी स्कूल जाने वाली। क्या बात है, नतमस्तक हो जाते हैं हम ऐसे बुजुर्गों के सामने जो हमें विकासवादी सोच की तरफ के अपना दिखाते हैं कि विकासवादी सोच से क्या क्या बदलाव आ सकता है। और अब अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं, गाने को सुनिए और प्रमुख कलाकारों के नाम आपको बताने हैं, साथ ही बताइए गीतकार और संगीतकार कौन है।
1: दिन

जब घर आए तो हम बच्चों के लिए टॉफी का पैक लेकर आए। माँ ने उसको छुपा कर रख दिया। हम सबका ध्यान उस पर लगा था। बहुत जतन किए गए पर सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन माँ हर बच्चे को उनके अच्छे काम के लिए जब उपहार स्वरूप टॉफी देती तो मन प्रसन्न हो जाता था।

फिल्म अवतार का गाना राजेश खन्ना, शबाना आजमी प्रमुख भूमिकाओं में थे। आनंद बख्शी ने गीत लिखे थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत तैयार किया था, ऐसा हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है तो कुछ संदेश जल्दी से। ना कोई दौलत ना कोई खजाना चाहिए, बस माता पिता का प्यार पुराना चाहिए। सारी खुशियां मिल जाती हैं जीवन में जब उनका आशीर्वाद सिरहाना चाहिए। क्या बात है। दूध दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय दूध दिवस की शुभकामनाएं देते हुए एक साथी कह रहे हैं कि रोज सुबह आधा लीटर दूध केसर डालकर पीजिए और 5 किलोमीटर लंबी यात्रा कीजिए। ओहो। एक और श्रोता ने कहा है कि हमारा पहला विद्यालय होते हैं जहां हमारे संस्कारों की नींव गढ़ी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया इतने सुंदर संदेशों के लिए। हाँ, समय की कमी के चलते हम बहुत से संदेश नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन बहुत सुंदर संदेश हैं और इन्हीं संदेशों के बीच में हमने ढूंढ लिया है प्यार और माता पिता का वो समर्पण और त्याग। तो अब इसी नोट पर इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं। डीजे राजू को इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

आज है विश्व दूध दिवस। दूध की उपयोगिता और महत्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये दिन दुनिया भर के 40 से अधिक देशों में मनाया जाता है। दूध के विषय पर सोचना शुरू करते ही यकायक मैथिली शरण गुप्त की रचना याद आती है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, है आंचल में दूध और आंखों में पानी। भले ही साथियों आज नारी अबला नहीं बल्कि सबला है, लेकिन ये भी तो सच है कि नारी हर दुख हर दर्द को पीकर पूरे घर को समृद्ध करती है। अपने रक्त को दूध में परिवर्तित कर एक माँ अपने संतान को पिलाती है, उसे जीवन दान देती है। तो

हालांकि 1 जून यानी कि आज के दिन विश्व दूध दिवस मनाया जाता है, पर भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। हाँ, वही कुरियन साहब जिन्होंने भारत में सफेद क्रांति ला दी थी अपने ऑपरेशन फ्लड के नाम से, यानी कि दुग्ध विकास मिशन के माध्यम से। इस क्रांति ने केवल देश भर में दूध की उपलब्धता को आशातीत रूप से बढ़ावा ही नहीं, बल्कि बच्चों में कुपोषण को भी कम कर दिया और साथ ही साथ लाखों बेरोजगार लोगों को रोजगार भी दिया।

आज भी हमारे देश में लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए दिन में एक गिलास दूध भी किसी विलास से कम नहीं। सरकार की तरफ से कुपोषण के खिलाफ कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन जब तक हम खुद सजग नहीं होंगे आखिर कौन सा कदम सफल हो सकता है। हम जागरूक रहे और कई कार्यक्रमों के माध्यम से हमारा सबसे बेहतर योगदान दे। हमारे लिए जितना भी संभव हो हम उन कुपोषित बच्चों को दूध पिलाकर उनका कुपोषण दूर करने में अपना योगदान दें।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। मई महीने में सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज। अमेरिका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए। और हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।
1: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे।
1: ये मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें अनुभवी विधायकों के साथ साथ पहली बार विधायक बने सदस्य भी शामिल है। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेताएं, सरकारी अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों उपस्थित थे। नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन बाद में घोषित किया जाएगा। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में सपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष और अन्य शामिल है। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
0: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय GST का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य GST का 45,143 करोड़ और एकीकृत GST का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। GST रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
2: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान 1 महीने तक चलेगा।
3: 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसान

0: किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
1: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के कि इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
0: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
2: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
3: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
2: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देशभर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रुपये की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113 रुपये 50 पैसे होगी। मुंबई में 43 रुपये 50 पैसे की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067 रुपये 50 पैसे होगी। कोलकाता में 53 रुपये 50 पैसे की वृद्धि के साथ व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3,255 रुपये 50 पैसे होगी। चेन्नई में कीमतों में 42 रुपये की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत 3,283 रुपये होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
4: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्जी ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
2: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
5: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
2: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा

0: साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। म्यांमा के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगित तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

अपनी सुरीली आवाज की खुशबू से तमाम यादगार गीतों को महकाने वाली सुमन कल्याणपुर की यह आवाज, साथ में मोहम्मद रफी, बेटी बेटे फिल्म का ये गाना आपने अभी सुना। शैलेंद्र के बोल थे और शंकर जयकिशन का संगीत था। और अब आपको सुनवा रहे हैं बूंद जो बन गई मोती फिल्म का गाना, मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजें हैं, भरत व्यास की रचना है और सतीश भाटिया का संगीत।

चांद और सूरज फिल्म का गाना आपने सुना। सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी के स्वरों में शैलेंद्र की रचना थी और सल चौधरी का संगीत। इन सुंदर गीतों के साथ मन का जला दीप सदैव प्रकाश बिखेरता रहता है। फिल्म संगीत के स्वर्ण युग का आखिरी सुमन भी कल मुरझा गया, लेकिन उनकी आवाज की कशिश हमेशा दिलो दिमाग पर छाई रहेगी। आइए सुनते हैं दिल ही तो है फिल्म का गाना। सुमन कल्याणपुर की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल हैं और रोशन की तर्ज़।

0: में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं जब से तुम्हें देखा है फिल्म का गाना मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ। शैलेंद्र के लिखे गीत को संगीत से संवारा है दत्ताराम ने।

सदाबहार नगमे प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं मासूम फिल्म का गाना। राजा मेहंदी अली खान के बोल हैं, रॉबिन बनर्जी का संगीत है, आवाज है सुमन कल्याणपुर की।

हसरतजयपुरी का लिखा और कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया हुआ ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। फिल्म का नाम था जी चाहता है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, मोहब्बत इसको कहते हैं। यह है फिल्म का नाम, आवाजें मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की हैं। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है खयाम ने।

0: आभूषणों की निंदा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम असहयोग का उत्पीड़न सह सकते हैं, पर ललनाओं के निर्दय घातक वाकवाणों को नहीं ओढ़ सकते। तो भी इतना अवश्य कहेंगे कि इस तृष्णा की पूर्ति के लिए जितना त्याग किया जाता है, उसका सदुपयोग करने से महान पद प्राप्त हो सकता है। यद्यपि हमने किसी रूपहीना महिला को आभूषणों की सजावट से रूपवती होते नहीं देखा, तथापि हम ये भी मान लेते हैं कि रूप के लिए आभूषणों की उतनी ही जरूरत है जितनी घर के लिए दीपक की। किंतु शारीरिक शोभा के लिए हम तन को कितना मलिन, चित्त को कितना अशांत और आत्मा को कितना कलुषित बना लेते हैं, इसका हमें कदाचित ज्ञान ही नहीं होता। इस दीपक की ज्योति में आंखें धुंधली हो जाती हैं। ये चमक दमक, कितनी ईर्ष्या, कितने द्वेष, कितनी प्रतिस्पर्धा, कितनी दुश्चिंता और कितनी दुराशा का कारण है, इसकी केवल कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन्हें भूषण नहीं, दूषण कहना अधिक उपयुक्त है। नहीं तो ये कब हो सकता था कि कोई नववधु पति के घर आने के तीसरे दिन अपने पति से कहती,
1: मेरे पिता ने तुम्हारे पल्ले बांधकर मुझे तो कुएं में ढकेल दिया है।
0: शीतला आज अपने गांव के तालुकेदार कुंवर सुरेश सिंह की नवविवाहिता वधू को देखने गई थी। उसके सामने ही वो मंत्रमुग्ध सी हो गई। बहू के रूप लावण्य पर नहीं, उसके आभूषणों की जगमगाहट पर उसकी टकटकी लगी रही। और वो जब से लौटकर घर आई, उसकी छाती पर सांप लौटता रहा। अंत को ज्यों ही उसका पति आया, वो उस पर बरस पड़ी और दिल में भरा हुआ गुबार पूर्वोक्त शब्दों में निकल पड़ा। शीतला के पति का नाम विमल सिंह था। उनके पुरखे किसी जमाने में इलाकेदार थे।

0: इस गांव पर भी उन्हीं का सोलहों आने अधिकार था, लेकिन अब इस घर की दशा हीन हो गई है। सुरेश सिंह के पिता जमींदार के काम में दक्ष थे। विमल सिंह का सब इलाका किसी न किसी प्रकार से उनके हाथ आ गया। विमल के पास सवारी का टट्टू भी न था, उसे दिन में दो बार भोजन भी मुश्किल से मिलता था। उधर सुरेश के पास हाथी, मोटर और कई घोड़े थे। 10-5 बाहर के आदमी नित्य द्वार पर पड़े रहते थे, पर इतनी विषमता होने पर भी दोनों में भाईचारा निभाया जाता था। शादी ब्याह में, मुंडन छेदन में परस्पर आना जाना होता रहता था। सुरेश विद्या प्रेमी थे। हिंदुस्तान में ऊंची शिक्षा प्राप्त करके वो यूरोप चले गए और सब लोगों की शंकाओं के विपरीत वहां से आर्य सभ्यता के परम भक्त बनकर लौटे। वहां के जड़वाद, कृत्रिम भोगलिप्सा और अमानुषिक मदांधता ने उनकी आंखें खोल दी थीं। पहले वो घर वालों के बहुत जोर देने पर भी विवाह करने को राजी नहीं हुए थे। लड़की से पूर्व परिचय हुए बिना प्रणय नहीं कर सकते थे, पर यूरोप से लौटने पर उनके वैवाहिक विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। उन्होंने उसी पहले की कन्या से बिना उसके आचार विचार जाने हुए विवाह कर लिया। अब वो विवाह को प्रेम का बंधन नहीं, धर्म का बंधन समझते थे। उसी सौभाग्यवती वधू को देखने के लिए आज शीतला अपनी सास के साथ सुरेश के घर गई थी। उसी के आभूषणों की छटा देखकर वो मर्माहत सी हो गई। विमल सिंह ने व्यथित होकर कहा,
1: तो माता पिता से कहा होता सुरेश से ब्याह कर देते और वो तुम्हें गहनों से लाद सकते थे।
2: तो गाली क्यों देते हो?
1: गाली नहीं देता, बात कहता हूं। तुम जैसी सुंदरी को उन्होंने नाहक मेरे साथ ब्याह।
2: लजाते तो नहीं, उल्टे और ताने देते हो।
1: भाग्य मेरे वश में नहीं है और इतना पढ़ा भी नहीं हूं कि कोई बड़ी नौकरी करके रुपए कमाऊं।
2: ये क्यों नहीं कहते कि प्रेम ही नहीं है? प्रेम हो तो कंचन बरसने लगे।
1: तुम्हें गहनों से बहुत प्रेम है।
2: सभी को होता है, मुझे भी है।
1: अपने को अभागिनी समझती हो?
2: हूं ही, समझना कैसा, नहीं तो क्या दूसरे को देखकर तरसना पड़ता।
1: गहने बनवा दूं तो अपने को भाग्यवती समझने लगोगी?
2: तुम तो इस तरह पूछ रहे हो जैसे सुनार दरवाजे पर ही बैठा है।
1: नहीं, सच कहता हूं, बनवा दूंगा, बनवा दूंगा, लेकिन कुछ दिन सबर करना पड़ेगा।
0: समर्थ पुरुषों को बात लग जाती है तो प्राण ले लेते हैं, सामर्थ्यहीन पुरुष अपनी ही जान पर खेल जाता है। विमल सिंह ने घर से निकल जाने की ठानी, निश्चय किया या तो इसे गहनों से ही लाद दूंगा या वैधव्य शोक से, या तो आभूषण ही पहनेगी या सिंदूर को भी तरसेगी। दिन भर वो चिंता में डूबा पड़ा रहा। शीतला को उसने प्रेम से संतुष्ट करना चाहा था। आज अनुभव हुआ कि नारी का हृदय प्रेम पाश से नहीं बंधता, कंचन के पाश ही से बंध सकता है। पहर रात जाते जाते वो घर से चल खड़ा हुआ, पीछे फिर कभी न देखा। ज्ञान से जागे हुए विराग में चाहे मोह का संस्कार हो, पर नैराश्य से जागा हुआ विराग अचल होता है। प्रकाश में इधर की वस्तुओं को देखकर मन विचलित हो सकता है, पर अंधकार में कितना साहस है जो लीक से जौबर हट सके। विमल के पास विद्या न थी, कला कौशल भी न था, उसे केवल अपने कठिन परिश्रम और कठिन आत्मत्याग ही का आधार था। वो पहले कलकत्ते गया, वहां कुछ दिन तक एक सेठ की अगवानी करता रहा। वहां जो सुन पाया कि रंगून में मजदूरी अच्छी मिलती है तो वो रंगून जा पहुंचा और बंदर पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने लगा। कुछ तो कठिन श्रम, कुछ खाने पीने के असंयम और कुछ जलवायु की खराबी के कारण वो बीमार हो गया। शरीर दुर्बल हो गया, मुख की कांति जाती रही, फिर भी उससे ज्यादा मेहनती मजदूर बंदर पर दूसरा न था। और मजदूर थे, पर ये मजदूर तपस्वी था। मन में जो कुछ ठान लिया था उसे पूरा करना उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। उसने घर

0: को अपना कोई समाचार न भेजा। अपने मन से तर्क किया, घर में मेरा कौन हेतु है, गहनों के सामने मुझे कौन पूछता है। उसकी बुद्धि ये रहस्य समझने में असमर्थ थी कि आभूषणों की लालसा रहने पर भी प्रणय का पालन किया जा सकता है। और मजदूर प्रातः काल सेरों मिठाई खाकर जलपान करते थे, दिन भर दम भर पर गांजे चरस और तंबाकू के दम लगाते थे, अवकाश पाते तो बाजार की सैर करते थे। कितनों ही को शराब का भी शौक था, पैसों के बदले रुपए कमाते थे तो पैसों की जगह रुपए खर्च भी कर डालते थे। किसी के देह पर साबुत कपड़े न थे, पर विमल उन गिनती के दो चार मजदूरों में था जो संयम से रहते थे, जिनके जीवन का उद्देश्य खा पीकर मर जाने के सिवा कुछ और भी था। थोड़े ही दिनों में उसके पास थोड़ी सी संपत्ति हो गई, धन के साथ और मजदूरों पर दबाव भी बढ़ने लगा। ये प्रायः सभी जानते थे कि विमल जाति का कुलीन ठाकुर है, सब ठाकुर ही कहकर उसे पुकारते थे। संयम और आचार सम्मान सिद्धि के मंत्र हैं। विमल मजदूरों का नेता और महाजन हो गया। विमल को रंगून में काम करते हुए 3 वर्ष हो चुके थे। संध्या हो गई थी, वो कई मजदूरों के साथ समुद्र के किनारे बैठा बातें कर रहा था।
1: यहां की सभी स्त्रियां निष्ठुर होती हैं। बेचारा झिंगुर 10 बरस से उसी बर्मी स्त्री के साथ रहता था।
2: अच्छा,
1: कोई अपनी ब्याही जोरू से भी इतना प्रेम न करता होगा। उस पर इतना विश्वास करता था कि जो कुछ कमाता सो उसके हाथ में रख देता था। 3 लड़के थे, अभी कल तक दोनों साथ साथ खाकर लेटे थे। न कोई लड़ाई, न बात, न चीत। रात को औरत न जाने कहां चली गई, लड़कों को छोड़ गई। बेचारा झिंगुर रो रहा है। सबसे बड़ी मुश्किल तो छोटे बच्चे की है, अभी कुल 6 महीने का है। कैसे जिएगा भगवान ही जाने।
3: गहने बनवाता था कि नहीं?
1: रुपए पैसे तो औरत ही के हाथ में थे, गहने बनवाती उसका हाथ कौन पकड़ता। गहनों से तो लदी हुई थी, जिधर से निकल जाती थी छम छम छम की आवाज से कान भर जाते थे।
3: जब गहने बनवाने पर भी निठुराई की तो यही कहना पड़ेगा कि नारी ही बेवफा होती है।
0: इतने में एक आदमी आकर विमल सिंह से बोला,
2: चौधरी, अभी मुझे एक सिपाही मिला था, वह तुम्हारा नाम, गांव का नाम और बाप का नाम पूछ रहा था। कोई बाबू सुरेश सिंह है?
3: हाँ है, तो मेरे गांव के इलाकेदार और बिरादरी के भाई हैं।
2: उन्होंने थाने में कोई नोटिस छपवाया है कि जो विमल सिंह का पता लगावेगा उसे 1,000 रुपए का इनाम मिलेगा।
3: तो तुमने सिपाही को सब ठीक ठीक बता दिया?
2: चौधरी, मैं कोई गवार हूं क्या? समझ गया, कुछ दाल में काला है, नहीं तो कोई इतने रुपए क्यों खर्च करता। मैंने कह दिया कि उनका नाम विमल सिंह नहीं,
3: अच्छा,
2: जसोदा पांडे है, बाप का नाम सुखू बताया और घर जिला झांसी में। पूछने लगा यह कितने दिन से रहता है। मैंने कहा कोई 10 साल से। तब कुछ सोचकर चला गया, मुझसे कहता था कि ठीक ठीक बता दो तो 50 रुपए मैं तुम्हें दिला दूं। मैंने सोचा आप तो 1,000 की गठरी मारेगा और मुझे 50 रुपए दिलाने को कहता है, फटकार बता दी।
1: मगर जो 200 रुपए देने को कहता तो तुम सब ठीक ठाक नाम ठिकाना बता देते, क्यों धत्ते रे लालची।
2: 200 रुपए नहीं, 2,000 भी देता तो ना बताता। मुझे ऐसा विश्वासघात करने वाला मत समझो, जब जी चाहे परख लो।
0: मजदूरों में यूं वाद विवाद चलता रहा। विमल आकर अपनी कोठरी में लेट गया। वो सोचने लगा,
3: अब क्या करूं, जब सुरेश जैसे सज्जन की नीयत बदल गई तो अब मैं किसका भरोसा करूं। नहीं, अब बिना घर गए काम नहीं चलेगा। कुछ दिन और ना गया तो फिर कहीं का ना होगा। 2 साल और रह जाता तो पास में पूरे 5,000 हो जाते और शीतला की इच्छा भी पूरी हो जाती। अभी तो सब मिलाकर 3,000 ही होंगे, इतने में उसकी अभिलाषा ना पूरी होगी। खैर, अभी चलूं, 6 महीने में फिर लौट आऊंगा। अपनी जायदाद तो बच जाएगी,

0: नहीं, 6 महीने तक रहने का क्या है? आने जाने का 1 महीना लग जाएगा। घर में 15 दिन से ज्यादा न रहूंगा। वहां कौन पूछता है, आऊं या रहूं, मरूं या जीऊं? वहां तो गहनों से प्रेम है।
1: इस तरह मन में निश्चय करके वो दूसरे दिन रंगून से चल पड़ा। संसार कहता है कि गुण के सामने रूप की कोई हस्ती नहीं। हमारे नीति शास्त्र के आचार्यों का भी यही कथन है, पर वास्तव में ये कितना भ्रम मूलक है। कुंवर सुरेश सिंह की नववधू मंगला कुमारी गृह कार्य में निपुण, पति के इशारे पर प्राण देने वाली अत्यंत विचारशीला, मधुर भाषिणी और धर्म भीरु स्त्री थी, पर सौंदर्य विहीन होने के कारण पति की आंखों में कांटे के समान खटकती थी। सुरेश सिंह बात बात पर उस पर झुंझलाते, पर घड़ी भर में पश्चाताप के वशीभूत होकर उससे क्षमा मांगते, किंतु दूसरे ही दिन वही कुत्सित व्यापार शुरू हो जाता। विपत्ति ये थी कि उनके आचरण अन्य रईसों की भांति भ्रष्ट न थे। वो दाम्पत्य जीवन ही में आनंद, सुख, शांति, विश्वास, प्रायः सभी ऐहिक और पारमार्थिक उद्देश्य पूरा करना चाहते थे, और दाम्पत्य सुख से वंचित होकर उन्हें अपना समस्त जीवन नीरस, स्वादहीन और कुंठित जान पड़ता था। फल ये हुआ कि मंगला को अपने ऊपर विश्वास न रहा। वो अपने मन से कोई काम करते हुए डरती कि स्वामी नाराज होंगे। स्वामी को खुश करने के लिए अपनी भूलों को छिपाती, बहाने करती, झूठ बोलती, नौकरों को अपराध लगाकर आत्मरक्षा करना चाहती। पति को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने गुणों की, अपनी आत्मा की अवहेलना की, पर उठने के बदले वो पति की नजरों से गिरती ही गई। नित्य नए श्रृंगार करती, पर लक्ष्य से दूर होती जाती थी। पति की एक मधुर मुस्कान के लिए, उनके अधरों के एक मीठे शब्द के लिए उसका प्यासा हृदय तड़प तड़प कर रह जाता था। लावण्य विहीन स्त्री वो भिक्षुक नहीं है जो चंगुल भर आटे से संतुष्ट हो जाए। वो भी पति का संपूर्ण अखंड प्रेम चाहती है, और कदाचित सुंदरियों से अधिक, क्योंकि वो इसके लिए असाधारण प्रयत्न और अनुष्ठान करती है। मंगला इस प्रयत्न में निष्फल होकर और भी संतप्त होती थी। धीरे धीरे पति पर से उसकी श्रद्धा उठने लगी। उसने तर्क किया कि ऐसे क्रूर हृदय शून्य कल्पनाहीन मनुष्य से मैं भी उसी का सा व्यवहार करूंगी। जो पुरुष रूप का भक्त है वो प्रेम भक्ति के योग्य नहीं। इस प्रत्याघात ने समस्या और भी जटिल कर दी।
2: कथा सुधा में आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का पहला भाग। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रकर, मंगला, ममता सिंह, मजदूर राजेश झा और आदमी दीपक केसावलेकर। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। इस कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए सुनिए कहानी का दूसरा भाग अगले सोमवार कथा सुधा में।
3: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
4: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
3: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
5: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
3: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।

0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात। तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
1: हाँ तो मंजरी, कल सखी सहेली का जन्मदिन है और लड्डू तो हमको कल मिलने ही वाले हैं।
2: बिल्कुल मिलने वाले हैं।
1: और हिमानी शिवपुरी हमारी बतौर मेहमान कल आने वाली हैं और उनका सजीव प्रसारण कल
2: और हम लोग मिलकर करेंगे उनका स्वागत और हमारे श्रोता साथ में मिलकर सुनेंगे प्रोग्राम और भेजेंगे बहुत सारी कमेंट्स, विचार,
1: शुभकामनाएं
2: भेजेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, सब मिलके एक समय पे इकट्ठे होंगे।
1: हाँ तो ये कार्यक्रम जो है 3 से लेकर 4 बजे के बीच में होगा। हिमानी शिवपुरी हमारी कल की मेहमान है, लाइव ब्रॉडकास्ट होगा। फेसबुक पेज पर आप बराबर बने रहें और अपने विचारों से अवगत करते रहें और आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है इसके बारे में बताएं और खासतौर से हमारे जो सखी सहेली की कल वर्षगांठ है उनको शुभकामनाएं देने के लिए आप लगातार हमसे बने रहे, सभी सखी और सखा तैयार होकर
2: क्योंकि हम लोग भी तैयार होकर
1: कल आएंगे
2: बर्थडे मनाने।
1: बिल्कुल, तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग तैयार रहेंगे कल। और अब तो समय हो गया है एक अंतराल लेने का। मंजरी, पहले अंतराल लेते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं।

0: हाँ तो मंजरी, बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना है। और जीवन में जब हम किसी सुंदर चीजों के आसपास होते हैं ना, तो जिंदगी थोड़ा आसान भी लगती है।
1: बिल्कुल, और बहुत ही खूबसूरत होते हैं हमारे वो रिश्ते भी जो हमें जन्म देते हैं, जिन्हें हम माता पिता के रूप में जानते हैं।
0: बिल्कुल,
1: आंख खुलती है वो उंगली हम उनकी पकड़ते हैं, उनका स्पर्श सुख पाते हैं माता पिता के रूप में, तो वो हमारे लिए बहुत ही अजीज होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं। और इसीलिए उनको सम्मान देने के लिए वैश्विक अभिभावक दिवस ये जो है मनाया जा रहा है। 17 सितंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र ने 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस के रूप में घोषित किया। इस दिवस का उद्देश्य माता पिता होने के महत्व और बच्चों के सकारात्मक विकास के लिए आवश्यक सुरक्षा और साधन प्रदान करने में उनकी भूमिका में प्रगति जागरूकता बढ़ाना है। तो कहना चाहिए मंदाकिनी जी, आज के दिन हम अपने माता पिता के लिए एक जश्न जैसा घर में कुछ सेलिब्रेशन करें,
0: करना चाहिए
1: और
0: ना?
1: हाँ, उनका सम्मान करें, उनके चरण छुएं, और आप जो भी उनके लिए पसंद का खाना बना सकते हैं वो बनाएं, उपहार में उन्हें चीजें दें, तो देखिए कितना अच्छा लगेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और जो माता पिता के सबसे करीब होते हैं वो हमारे माता पिता ही जो हमारे सबसे करीब होते हैं। और बच्चा जब घर से कई बातें सीखता है और जैसा अपने माता पिता को करते देखता है वैसा ही व्यवहार उनकी उसकी आदत में भी आता है। और कहना चाहिए कि माता पिता हमारे पहले शिक्षक होते हैं, हमारी पहली पाठशाला होते हैं, और इसलिए बच्चों के सामने हमेशा कहा जाता है कि अच्छा आचरण करें ताकि आपके बच्चे भी जब आपको देखें तो वैसे ही बड़े होकर आगे अपना उदाहरण पेश करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और ये दिन माता पिता और अभिभावकों के प्रति सम्मान, प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए समर्पित है। बच्चे के जीवन में अभिभावकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती, केवल पालन पोषण ही नहीं करते बल्कि उनके जीवन जीने की सही दिशा, संस्कार, अनुशासन और नैतिक मूल्य भी सिखाते हैं। और वो अपने बच्चों के सुख दुख के साथ मंदाकिनी जी हमेशा खड़े रहते हैं, और बच्चे की सफलता के पीछे उसके अभिभावकों का त्याग, मेहनत और समर्पण छिपा होता है। वे अपनी इच्छाओं को पीछे रखकर अपने बच्चों के सपने को पूरा करने का प्रयास करते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, और आज की अगर हम बात करें मंजरी, तो आज के आधुनिक समय में बच्चों और अभिभावकों के बीच थोड़ा संवाद कम हो रहा है ना?
1: और उसका कारण भी है
0: मोबाइल और सोशल मीडिया, ये हमारी जिंदगी बन गए हैं, है ना? तो रिश्तों में दूरी बढ़ गई है। ऐसे में क्या है कि वैश्विक जो अभिभावक दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपने माता पिता को समय देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी भावनाओं को समझना बेहद जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: और ये दिन आज का केवल ये नहीं कि आपने हमें जन्म दिया धन्यवाद कि अगर हमने इतिश्री कर दी,
1: नहीं, नहीं
0: ये वो दिन नहीं है, बल्कि अपने रिश्तों को और मजबूत बनाने का ये दिन हमें संदेश देता है। और हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका प्यार तो निस्वार्थ होता है और उनका स्थान जीवन में सबसे ऊंचा होना चाहिए।
1: बिल्कुल, और मंदाकिनी जी हम कह सकते हैं कि माता पिता वो छांव है जिसके रहते जीवन की हर धूप हल्की लगती है। उन्हें सुरक्षा, स्नेह और अपनापन उनसे मिलता है। जैसे तेज धूप में पेड़ की छाया राहत देती, वैसे ही जीवन की कठिनाइयों में माता पिता अपने बच्चों को संभालते हैं। उन्हें उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही बच्चे सही राह पर चलना सीखते हैं। और मंदाकिनी जी, जब पुराने समय की हम बात करें तो उस समय ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, तो घर में सभी सदस्य होते थे, तो माता पिता तो अगर बच्चे की देखभाल करते थे, लेकिन दादा दादी हुए, नाना नानी या चाचा चाची, मामा मामी, सब लोग परिवार के जितने भी लोग होते थे, बुआ हो चाहे कोई भी हो, सब लोग बच्चे का ख्याल रखते थे। तो बच्चे कैसे पल जाते थे
0: पता ही नहीं चलता था
1: और बच्चों के अंदर सबके गुण आते थे। कोई कहानी सुनाता था, कोई उनको अलग तरीके बातें सिखाता था, कोई कर्तव्य करना सिखा रहा है तो कोई व्यायाम सिखा रहा है, कोई कह रहा सुबह जल्दी उठो, तो ये जो रोक टोक का टाकी बच्चों को होती थी सिखाने की, कहना चाहिए नियम अनुशासन सिखाने की, तो उससे बच्चे सीखते थे और सभी उनके माता पिता के ही समान थे उस समय।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब हम ज्वाइंट फैमिली में रहते थे तो सभी लोग हम बच्चे की कद्र करते थे, बच्चे का लालन पालन कैसे होता था माता पिता तक को पता नहीं चलता था। लेकिन मंजरी आज स्थिति बिल्कुल अलग है, आज हम ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहते हैं, जहां तक है एकल परिवार हो गए हैं। और ऐसे में बच्चे को जो नौकरी करने वाले माता पिता हैं वो किसी केयर टेकर के उसमें छोड़ जाते हैं। और मुझे खुद भी याद है मेरे माता पिता दोनों सरकारी नौकरी करते थे और हमें किसी केयर टेकर के पास छोड़ जाते थे, वो किस तरह से हमारा लालन पालन करती थी ये तो भगवान ही जाने। और होता था कि जब माता पिता आते थे बड़े परेशान आते थे, क्योंकि जो केयर टेकर है वो उस तरह से तो नहीं पाल सकती बच्चों को जैसे माता पिता या परिवार के सदस्य पालते हैं।
1: और देखिए हमारे बहुत सारे साथियों ने भी संदेश लिखकर भेजा है। एक लिखते हैं कि माता पिता सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता, वो हमारा पहला विद्यालय होते हैं जहां से हमारे संस्कारों की नींव गढ़ी जाती है। माँ अगर उंगली पकड़कर चलना सिखाती है तो पिता उंगली छोड़कर संभलना दुनिया का हर रिश्ता कुछ ना कुछ मांगता है, पर माता पिता वो होते हैं जो अपनी संतान के प्रति जीवन भर निस्वार्थ स्नेह रखते हैं। उनका प्रेम किसी पैमाने पर मापा नहीं जा सकता।

0: सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाना, जवानी में परछाई की तरह साथ रहना और वृद्धावस्था में भी संतान के प्रति चिंतित रहना ही उनके निस्वार्थ प्रेम को दिखाता है। बहुत प्यारी सी
1: बहुत
0: बात आपने
1: सुंदर बात
0: लेकर
1: लिखी
0: भेजी।
1: है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सखी सहेली मंच संभाल रही दोनों बहनों को बहुत सबने नमस्कार लिखते हैं। आज अभिभावक दिवस है, इस दिन विशेष का बड़ा महत्व है। इस दिन का आज के दिन दुनिया के सभी माता पिता के साथ साथ सभी अभिभावकों को बच्चों के लालन पालन के साथ उनकी सुरक्षा और सर्वांगीण विकास के प्रति उनके निस्वार्थ समर्पण और बलिदान के लिए सम्मानित करना है। माता के लिए गुजराती मुहावरा है, माई माँ बाकी बगा वगड़ा नावा, मतलब माँ के बिना सब जग उजड़ा हुआ यानी वीराना सा लगता है।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर सी बात लिखी है। ऐसे ही हमारे साथी लिखते हैं कि आज अभिभावक दिवस पर विशेष बधाई। अभी तो कोई कलम नहीं बनी है जो माता पिता पर कुछ सर्वश्रेष्ठ लिख सके, ये तो ईश्वर के बस की भी बात नहीं। मेरी हर खुशी का रास्ता माँ से होकर जाता है और मुझे दुनियादारी का सबक मेरे माता पिता सिखाते हैं। माता पिता का प्यार इस दुनिया का सबसे निस्वार्थ पवित्र और अनमोल एहसास है। ये वो पूंजी है जो हमें जीवन के हर कदम पर हिम्मत, सुरक्षा और सही संस्कार देती है। इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव है।
1: वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि माता पिता का ही तो प्यार है जो कभी नहीं बढ़ता। जीवन रूपी खुले आकाश में उन्मुक्त पक्षियों के जैसे उड़ने की सीख और हौसला देने वाले वे ही हैं। रोते रोते हंसा देते हैं, दुनियादारी की बातें समझा देते हैं। उनकी ही दुआ से हम बड़ा नाम करते हैं और इस दुनिया पर राज करते हैं। असफलता में भी मुड़कर मत देखो पर अपनी गरिमा को भी संभाल कर रखो, ऐसी हिदायतें उनसे ही मिलती हैं। उनके आशीर्वाद से बिगड़े काम बन जाते हैं, उनकी सुनाई कहानियों की खुशबू पूरे जीवन भर महसूस करते हैं। और वैश्विक अभिभावक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं ये हमें देते हैं। तो अब एक गीत सुन ले।
0: जी।

0: हाँ
1: तो देखिए, अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। विश्व दुग्ध दिवस है और हम सभी जानते हैं कि बच्चों से लेकर बड़ों तक, बुजुर्गों तक, सभी के लिए, महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, सभी के लिए दूध बहुत आवश्यक है। और विश्व दुग्ध दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, जिसका उद्देश्य वैश्विक खाद्य पदार्थ के रूप में दूध के महत्व को मान्यता देना है। ये दिवस 2001 से प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान आकर्षित करने का अवसर प्रदान करता है।
0: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और मंजरी, विश्व दुग्ध दिवस केवल हम इसे कोई उत्सव के रूप में नहीं मना रहे हैं, बल्कि एक आंदोलन है जो दूध को एक महत्वपूर्ण और सुलभ खाद्य स्रोत के रूप में उजागर करता है, जो अरबों लोगों का पोषण करता है। और यही दूध आवश्यक पोषक तत्व हमें प्रदान करता है, जो हमारी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए, विकास के लिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता भी है।
1: बिल्कुल। और विश्व दुग्ध दिवस की जो इस वर्ष की थीम है, महिला किसानों का सम्मान है। रोजाना दूध पीना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत फायदेमंद होता है, क्योंकि ये कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी और पोटेशियम जैसे आवश्यक पोषक तत्वों को एक बेहतरीन स्रोत है। और ये आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है, मांसपेशियों के विकास में मदद करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कुछ मंदाकिनी जी, कुछ माता पिता ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कुछ बच्चे को परेशानी हुई, तो तबियत खराब हुई, तो सीधे वो दूध को ही बोल देते हैं, दूध बंद कर दो, इसका दूध नहीं पिलाना है। तो बच्चों के मुख से दूध छीनना बहुत गलत बात होती है। आप पहले उसका चिकित्सीय इलाज कीजिए, डॉक्टरी इलाज कीजिए कि उसको क्या समस्या है, तब आप सोचिए कि दूध
0: नुकसान कर रहा है या नहीं कर रहा है।
1: कुछ समय तक तबियत खराब है तो दूध आप नहीं ना दें, लेकिन ये नहीं कि आप पूरा जीवन पर्यंत दूध बंद कर दें, ये गलत बात।
0: हाँ, ये बिल्कुल गलत है। और हमें डॉक्टर खुद नहीं बनना है ना, चाहे कोई भी, अपना भी डॉक्टर हमें खुद नहीं बनना चाहिए। हमें चिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए कि क्या दूध हमें नुकसान कर रहा है। दूध हमारे लिए, कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे लिए कुछ लोगों को दूध नहीं सूट करता तो वो नहीं पीते हैं, लेकिन उसके लिए साइंटिफिक कारण होने चाहिए, केवल ये नहीं, वहम नहीं होना चाहिए,
1: वहम नहीं होना चाहिए।
0: एक श्रोता लिखते हैं हमारे कि अभिभावक दिवस के साथ साथ आज विश्व दुग्ध दिवस हम मना रहे हैं। दूध एक ऐसी जरूरत है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए जरूरी है। वैश्विक आहार में दुग्ध का बड़ा महत्व रहा है। इसे संपूर्ण आहार माना जाता है, जिसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और पोटेशियम जैसे शरीर के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, और इसके बिना सुबह की चाय भी नहीं बनती है, आए हुए मेहमानों का स्वागत नहीं होता, और इसके विधिवत उत्पादन के लिए डेयरी उद्योग का एक बड़ा योगदान रहा है। अपनी हड्डियों के साथ साथ डेयरी उद्योग को भी हमें मजबूत बनाना चाहिए।
1: और एक साथी लिखते हैं, दूध भी हमारे जीवन का अभिन्न चीज है, खासकर के मेरे लिए तो है, क्योंकि दूध के बिना मेरी मन पसंद अदरक इलायची वाली चाय नहीं बनती।
0: अरे, हमारी तो ये भी चाय के शौकीन है
1: जी। और एक लिखते हैं, देश में दूध उत्पादन में गुजरात अग्रणी राज्य है, इन्होंने लिखा है। और एक लिखते हैं कि दूध को अक्सर प्रकृति का संपूर्ण भोजन माना जाता है, क्योंकि इसमें मानव के शरीर के लिए आवश्यक लगभग सभी प्रमुख पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और विटामिन का प्राकृतिक संतुलन होता है। दूध में मौजूद प्रमुख पोषक तत्व जो है प्रोटीन, शरीर की मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत के लिए, कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए, विटामिन ए, डी और B12, आंखों, त्वचा, तंत्रिका तंत्र और ऊर्जा स्तर को के लिए ये बेहतर है, बेहतर रखता है कहना चाहिए।
0: बिल्कुल अच्छा लिखा है। और साथ ही एक श्रोता लिखते हैं कि जो दूध है वो भोजन में महत्वपूर्ण तो होता ही है, साथ ही हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि ये बात अलग है कि बहुत लोगों को दूध पसंद

0: आता, लेकिन दूध को ठंडा पदार्थ के रूप में पीना बहुत लोगों को पसंद होता है, खासकर गर्मियों के दिनों में।
1: बिल्कुल। और मंदाकिनी जी, देखा जाए अगर बच्चे आपके सीधा डायरेक्ट दूध नहीं पी रहे हैं तो आप सोचिए कि उसमें थोड़ी सी इलायची मिला के हम पिला दें, या फिर आप दूध को खीर में कन्वर्ट कर दें, या चावल की खीर या सूजी की खीर में भी आप कर सकते हैं, या ड्राई फ्रूट पीस करके मिला के कुछ चेंज कर करके, या ठंडे शरबत उसमें मिक्स करके भी आप, गुलाब का शरबत मिलाकर भी आप दूध किसी न किसी रूप में आप बच्चों को
0: पिला
1: सकते
0: हैं। खासतौर से छोटे बच्चे और किशोरावस्था वाले जो बच्चे हैं ना, ये थोड़ा परेशान करते हैं कि मम्मी दूध नहीं पीना है, तो उन्हें दूध को तरह तरीके से करके आप पिला सकते हैं, ताकि फाइनली दूध तो बच्चे के पेट में जाना ही चाहिए।

0: तो भाई मंजरी दूध की हम बात कर रहे थे और हमारे जो चाय वाले श्रोता हैं जो हमारे ही जैसे हैं, चाय पसंद करते हैं, चाय मिल जाए और साथ में ये बनारस की मटर मुंगोड़ी वाला निमोना या नमकीन मिल जाए तो फिर कहने ही क्या होते हैं।
1: हमारी सखी ने ये रेसिपी लिखकर भेजी तो हम वही पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश का निमोना मुंगोड़ी या मूंग की बड़ी, उड़द की बड़ी, ताजी हरी मटर, पिसे हुए मसालों और मूंग दाल की मंगोड़ियों से बनने वाली एक बेहद स्वादिष्ट और पारंपरिक करी है। ये उत्तर प्रदेश के घरों में सर्दियों के मौसम में चावल के साथ बहुत चाव से खाई जाती है। इसकी सामग्री इन्होंने लिखी, हरी मटर 2 कप, मुंगौड़ी एक कप, आलू चाहिए
0: आधा कप
1: आलू, 2 लंबे पतले कटे हुए, मसाला पेस्ट इसका है, हरा धनिया, लहसुन की कलियां, अदरक और हरी मिर्च, मिक्सी में पिसा हुआ होना चाहिए ये। और तड़का के लिए आप जीरा, हींग और तेजपत्ता, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार और सरसों का तेल लगेगा। और इसको बनाने की विधि है कि मंगौड़ी को और आलू को भून लें, एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करें, मूंग की मंगौड़ियों को सुनहरा होने तक भूनें और निकाल कर रख लें। उसी तेल में कटे हुए आलू को भी फ्राई करें और अलग रखें, मटर भूनें, बचे हुए तेल में दरदरी पिसी हुई मटर डालें और मध्यम आंच पर 3 से 4 मिनट तक इसे भून लें ताकि मटर का कच्चापन दूर हो जाए। इसे एक प्लेट में निकाल कर लें, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालें जिसमें हींग जीरा तड़का लगाएं। अब कटा बारीक प्याज, हरा धनिया, लहसुन वाला मसाला पेस्ट डालकर तब तक भूने जब तक तेल अलग ना होने लगे। भुनी हुई मटर, साबुत मटर, तले हुए आलू और मंगौड़ी डालें, सभी को अच्छी तरह मिलाएं और इसमें आवश्यकता अनुसार गर्म पानी और नमक डालें। कढ़ाई को ढककर धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक पकने दें जब तक कि मंगौड़ी और आलू पूरी तरह से नरम ना हो जाए। अंत में ऊपर से गर्म मसाला छिड़कें। आपकी गर्मा गर्म यूपी स्पेशल मंगौड़ी और निमोना तैयार है।
0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने इसको तैयार किया है और मुझे लगता है कि बहुत ही स्वादिष्ट होता होगा मंजरी।
1: बिल्कुल, क्योंकि मटर और मुंगौड़ी दोनों ही बहुत स्वाद से भरपूर होते हैं और मेरी तो बहुत फेवरेट है मंदा।
0: बिल्कुल, और मैं धनिया वाला जो मट्टी है ना, धनिया वाली मट्टी, उसके बारे में बताना चाहती हूँ। अगर हमारे श्रोता पसंद करती हैं सखियां, वैसे तो उन्हें बनाना आता होगा पर मैंने भी इसको बना के देखा था, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कैसे बनेगी ये। आप मैदा ले लें 2 कप, हरा धनिया ले लें, कटावा साबुत धनिया ले लें और 2 चम्मच कुटी हुई साबुत धनिया ले सकते हैं, घी ले सकते हैं तेल मोयन के लिए, जीरा ले लें, 1/6 चम्मच अजवाइन ले लें और काली मिर्च ले लें और दरदरी कुटी हुई नमक और तेल तलने के लिए और साथ में पानी। अब आप स्वादानुसार ये सब चीजें ले सकते हैं कम या ज्यादा, क्योंकि मैं आपको जो बताऊंगी हो सकता है आप उसे ज्यादा पसंद करते हो। फिर आटा को तैयार करें, एक बड़े बर्तन में मैदा ले लें, इसमें जीरा, अजवाइन, साबुत धनिया, कुटी हुई काली मिर्च, नमक और मोयन और पिघला हुआ घी 1/4 कप डाल सकते हैं या तेल डालें। सभी चीजों को हाथों से अच्छी तरह से मिला लें ताकि मैदा में मोयन अच्छे से रच बस जाए और उसके बाद बारीक कटी हुई हरी धनिया डालकर उसको मिला लें। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सख्त आटा आप गूंथ लें। इस आटे को 15 से 20 मिनट के लिए गीले कपड़े से ढककर आप रख दें। फिर आटे को थोड़ा मसल लें और फिर उसमें से छोटी छोटी लोइयां तोड़ लें। अब एक लोई को हथेली से दबाकर चपटा करना है, इसे ज्यादा नहीं पतला करना है, ना बेलना नहीं है। एक फिर दबाकर कांटे की मदद से मट्टी के दोनों तरफ थोड़ा छेद कर लें 5-6 और इसको गरम गरम तेल में तलें और धीमी आंच में तलने के बाद जो कुरकुरी मटरी निकल के आएगी ना वो गर्मा गर्म चाय के साथ तो
1: गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: और अब मंजरी सखी सहेली कार्यक्रम का वक्त तो खत्म हो चला है, इस कार्यक्रम से हम इजाजत लेते हैं। तो कार्यक्रम समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी और
1: मंजरी वर्मा को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं।
1: जाओ जाओ जल्दी जाओ डॉक्टर को बुलाओ, नब्ज दिखाओ, मेरा हाल बताओ।
0: जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश खुखी।
2: दांतों का जमाना, प्यारे दांत बचाना, कोई तोड़ दे या टूटे तो पास हमारे आना।
0: इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने।
1: जाओ जाओ जाओ किसी वैद्य को बुलाओ।
0: सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। हाल ही में डेंटिस्ट डे मनाया गया और इस मौके पर आज हमारे साथ हैं मुंबई के डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश घुगे। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका।
3: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं अपनी तरफ से आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे यहाँ पे आज न्योता दिया गया। मुझे बहुत खुशी होगी कि आज मैं डेंटिस्ट्री के बारे में, दांतों के बारे में लोगों के साथ रूबरू हो पाऊंगा। बहुत सारी जो मिथ्स है उनके ऊपर से हम लोग पर्दा उठा पाएंगे।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, दांतों को लेकर बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे लोगों के मन में खाम ख्यालियां हैं, गलत मान्यताएं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बातचीत की शुरुआत हम करते हैं दूध के दांतों से।
3: ठीक है।
0: जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अपने दांत होते हैं जो बड़े मायने रखते हैं, लेकिन अमूमन परिवार में उनके टूटने का इंतजार किया जाता है कि ये दांत निकल जाएंगे।
3: हाँ जी।
0: तब जो दांत आएंगे वो असली दांत होंगे।
3: सही है।
0: जरा इसके बारे में तफसील से बताइए।
3: जैसे आप जानते हैं कि बच्चा जब 2 साल का हो जाता है तब उसके दूध के दांत आने चालू हो जाते हैं। 2 से 2.5 साल तक दूध के दांतों की ग्रोथ पूरी हो जाती है। ठीक है। दूध के दांत होते हैं 20, टोटल मिला के 20 दांत होते हैं। दूध के दांतों का फंक्शन क्या होता है या फिर उनका काम क्या होता है? नॉर्मली लोगों का ये मानना होता है कि दूध के दांत हैं गिर जाएंगे तो वो सड़ जाए, गल जाए, और आजकल ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि जंक फूड बच्चों को इजीली अवेलेबल हो रहा है, प्लस बच्चों को पॉकेट मनी अच्छी मिलने लग गई है तो चॉकलेट्स वगैरह बच्चे इजीली खा लेते हैं, तो उनको सड़न वगैरह बाकी के इश्यूज दांतों के बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अभी दूध के दांतों का मेन फंक्शन क्या होता है कि अपने जबड़े की साइज मेंटेन रखना। जितना जबड़ा काम करेगा खाना चबाने के लिए उतने बाजू के मसल्स जो होते हैं वो काम करते हैं और उस तरीके से उसकी ग्रोथ होती है, जबड़े की हड्डी बढ़ती है, ताकि जो पक्के वाले दांत आएंगे तो वो बड़े साइज के होते हैं तो उनके लिए जगह बनाए, प्लस उनको डायरेक्शन दिखाए, जो दांत बनते हैं पक्के वाले नीचे वो एक सही तरीके से अपनी पोजीशन में आ जाए, उसको वो रास्ता दिखाने का काम जो है वो दूध के दांत करते हैं। तो इसके लिए दूध के दांत अगर खराब है आपके तो पक्के वाले दांत खराब होने की आपकी जो संभावना है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूध के दांत अगर जल्दी गिर जाए, इवन लेट भी गिर जाए, अगर उसमें टाइम लग जाए गिरने में, तो भी जो पक्के वाले दांत आएंगे, परमानेंट दांत आएंगे, वो आड़े टेढ़े ही आएंगे। दूध के दांतों में सबसे बड़ी चीज है कि नेचुरली दूध के दांतों में एक स्पेसिंग होता है, जिसको टर्मिनोलॉजी, अगर मैं डेंटल टर्मिनोलॉजी बताऊं तो उसको फिजियोलॉजिकल स्पेसिंग कहा जाता है। तो वो जरूरी है। और वो क्यों होती है? क्योंकि आने वाले दांत, जो परमानेंट दांत आने

0: होते हैं और सारे डायमेंशंस में, चौड़ाई में, लंबाई में बड़े होते हैं, तो वो जगह जो फिजियोलॉजिकल स्पेसेस है वो जगह उनकी चौड़ाई से भर दी जाती है।
1: अच्छा,
0: जिन बच्चों में या फिर जो दूध के दांत है उनके बीच में अगर उतनी जगह नहीं होगी, जबड़े की साइज अगर छोटी है पहले से ही, तो कुछ ट्रीटमेंट्स किए जा सकते हैं बचपन में ही ताकि जबड़े की साइज नॉर्मली बढ़े। घरेलू तौर पर हम लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो नॉर्मली कड़क चीजें आजकल जो अवेलेबल होती है वो होती है कड़क चकली, सूप स्टिक्स, या फिर कड़क बूंदी के लड्डू, वो कड़क चीजें मायने नहीं रखती है। जैसे गाजर, जो अपनी पारंपरिक चीजें हैं, गाजर हो गया, मूली हो गया, ककड़ी हो गया, उसको बिना उबाले कच्चा खाओ, ताकि जो नेचुरल एक्सरसाइज है जबड़े की होनी चाहिए वो होती है और नेचुरल ग्रोथ अपने आप नॉर्मल रहती है। ये एक चीज है।
1: लेकिन बच्चे तो ये चीजें खाते ही नहीं है।
0: बच्चे बच्चे हैं, वो तो जिद करेंगे, उनको खिलाना, उनको उन चीजों का महत्व समझाना वो पेरेंट्स का काम है।
1: जी
0: ठीक है, इसके लिए पेरेंट्स को थोड़ा सतर्क होना जरूरी है कि बच्चा अपना क्या खा रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी की पूरी डेवलपमेंट उसके न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है। एक चीज, अगर दांतों की बात करूं तो खाने की पाचन क्रिया जो है मुंह में चालू होती है। अगर मुंह में कैविटीज है, मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ है, कीटाणु मुंह में है, तो वो खाने के साथ मिक्स होंगे और वो कहां जाएंगे?
1: पेट में।
0: पेट में जाएंगे तो पेट की बीमारियां, बार बार लूज मोशंस होना बच्चों को, कॉन्स्टिपेशन होना, डाइजेशन के प्रॉब्लम्स, ना सिर्फ बच्चों में बड़ों में भी फ्रीक्वेंट एसिडिटी प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें हैं। इवन अगर जनरलाइज में बताऊं, ना सिर्फ बच्चों के केस में, लॉन्ग टर्म कैविटीज कैन कॉज यू हार्ट प्रॉब्लम्स ऑल्सो एंड ब्रेन प्रॉब्लम्स ऑल्सो। बैक्टीरियल डिसीजेस हार्ट के भी हो सकते हैं, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया हम लोग खा रहे हैं वो अपने खून में मिक्स होने वाले हैं। वो खून में मिक्स होंगे, वो कहीं ना कहीं पे तो जाके लॉज करेंगे और उस जगह की वो बीमारियां फैलाएंगे।
1: अच्छा, ये जो दूध के दांतों की आपने बात की, तो जब बच्चे अपने तरीके से ब्रश करने लायक हो जाते हैं तब से माँ बाप को किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए और किस तरह की आदतें बच्चों में डालनी चाहिए?
0: सबसे पहली बात, ब्रशिंग कब चालू होना चाहिए ये लोगों को पता ही नहीं है। ब्रशिंग मुंह में जैसे ही पहला दांत दिखता है तब से चालू हो जानी चाहिए।
1: जी,
0: उसके पहले मतलब 6-8 महीने तक तो कोई दांत आते नहीं है, उसके बाद ही दांत आने चालू होते हैं। तो उसके पहले मतलब दांत आने से पहले भी मसूड़े क्लीन करना जरूरी है, मसूड़ों की मसाज करना जरूरी है, ताकि आने वाले दांत जो है वो इजीली आए, बच्चों को तकलीफ ना हो। क्योंकि दांत जो आ रहा है हड्डी में से आ रहा है, वो हड्डी को सेपरेट कर रहा है, मसूड़ों को सेपरेट कर रहा है, तो वो सेपरेट करने के लिए मसूड़ों की अगर मसाज होती रही तो वो इजीली सेपरेट होंगे और उसको मसाज करने के लिए एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। अपनी उंगली से आप मसाज कर सकते हो बच्चे के मुंह में, और वो भी ज्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट दिन में 1 या 2 बार, ये बहुत है। दूसरी बात, जब माँ दूध पिलाती है बच्चे को तो उसके बाद उनका मुंह क्लीन करना जरूरी है, क्योंकि दूध में जो शुगर्स होती है वो जो दांत आते हैं उनको खराब कर सकती है। अभी उस मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ कि दांत आने के बाद कैसे ख्याल रखना है, कि जैसे ही पहला दांत मुंह में दिखना चालू हुआ, उंगली में पहनने वाले ब्रश आते हैं, आप वो यूज कर सकते हो, या फिर सिंपल एक गौज होता है, गौज पीस, कॉटन की तरह जो हम लोग नॉर्मली जख्मों पे पट्टी लगाते हैं जो बांधी जाती है, गौज पीस बोला जाता है, वो स्टराइल गौज पीसेस मिलते हैं मेडिकल शॉप में। अगर बच्चे का मुंह उतना नहीं खुल रहा या फिर बच्चा ब्रश को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो आप वो सिंपल गौज पीस को पानी में डुबा के गीले गौज पीस से दांत को साफ कर सकते हो उंगली से।
1: छोटे बच्चों के लिए,
0: छोटे बच्चों के लिए एकदम, हाँ एकदम छोटे बच्चों के लिए जिनके 1 या 2 दांत या 4 दांत आए हुए हैं। फिर धीरे धीरे दांत जैसे बढ़ते जाएंगे तो उंगली में ब्रश जो मैं बोल रहा हूँ वो आप यूज कर सकते हो। अभी उसमें 0 to 3 years मतलब बचपन, पैदा होने से लेके 3 साल तक एक अलग टूथपेस्ट आता है, जो बच्चे इंजेस्ट करे, खा ले, तो भी कोई उनको तकलीफ ना हो।
1: बिल्कुल,
0: उसके जो बनावट रहती है वो उस तरीके से की जाती है। 3 से 9 से 10 साल तक अलग टूथपेस्ट आती है जिसमें फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है। फ्लोराइड की मात्रा क्यों जरूरी है? क्योंकि दांतों में बनने वाली कैविटीज को रोकना, दांतों की बेसिकली इम्यूनिटी अच्छी रखना फ्लोराइड करता है, दांतों की ग्रोथ अच्छी रखना फ्लोराइड करता है। तो इसके लिए 3 से 10 साल की उम्र तक एक अलग टूथपेस्ट आता है। 10 साल के बाद वो जो स्टेज होता है उसको बोलते हैं मिक्स डेंटिशन, जहां पे आधे दांत दूध के होते हैं आधे होते हैं परमानेंट के, तो मिक्स डेंटिशन बोला जाता है। तो वो स्टेज चलती है और परमानेंट दांतों का डेवलपमेंट लगभग चलता है 16 साल तक। तो 10 से 16 तक एक अलग टूथपेस्ट यूज किया जा सकता है या फिर होता है, और 16 के बाद आप कोई भी टूथपेस्ट पे शिफ्ट कर सकते हो। तो बेसिकली बच्चों में 2 टाइम ब्रशिंग, जैसे आपने सवाल पूछा अभी कि बच्चों को कैसे समझाया जाए, पहले तो उनको बचपन से ही ये उंगली वाले ब्रश से अगर आप ट्रेनिंग लगाओगे तो उनको आदत पड़ेगी कि ब्रशिंग करना जरूरी होता है, वो साइकोलॉजिकली उनमें वो डेवलपमेंट होगी कि हाँ ब्रशिंग इज मैंडेटरी, 2 टाइम ब्रशिंग इज मैंडेटरी। ठीक है, उसके बाद समझ लीजिए 3 से 4 मिनट ब्रशिंग करना होता है, उससे ज्यादा ब्रशिंग की जरूरत नहीं होती है। हाँ, अभी मुद्दा निकला ही है तो मैं यहाँ पे ये भी बात क्लियर करना चाहूंगा कि एक टूथब्रश कितने दिन यूज करे।
1: सभी के मामले में,
0: हाँ,
1: चाहे बच्चे हो,
0: बच्चे हो या बड़े हो, 1.5 से 2 महीने के बाद अपना टूथब्रश चेंज करना है। ठीक है, वो भले कितना भी अच्छा दिखे, नॉर्मली अपना इंडियन मेंटेलिटी है जब तक वो ब्रिसल्स है ब्रश के
1: टेढ़े मेढ़े ना हो,
0: टेढ़े मेढ़े घस ना जाए या फिर वो अलग अलग आकार ना

0: तब तक हम लोग चेंज नहीं करते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। माइक्रो ब्रिसल्स रहते हैं वो, उनमें माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं, उनकी एक लाइफ होती है। मतलब आपने कुछ टूथब्रश ऐसे सुने भी होंगे या देखे भी होंगे, उनके ऊपर कलर इंडिकेटर दिया जाता है अभी ब्रिसल्स में, कि वो फेड हो जाए या फिर इसका कलर चेंज हो जाए तो आपने ब्रश को चेंज करना है। तो उसका भी टाइम फ्रेम उतना ही होता है कि 1.5 से 2 महीने तक आपका वो उसका कलर चेंज हो जाता है या फेड हो जाता है, जो कुछ भी है, तो तब आपको वो चेंज करना होता है। अभी वापस बच्चों की बात करें तो 2 टाइम ब्रशिंग मैंडेटरी होता है। अभी बच्चों को जैसे हमने बात की कि जंक फूड इजीली मिल रहा है, क्रेविंग करते हैं बच्चे, स्कूल्स भी अभी ज्यादा पार्टीज होती है, बर्थडे पार्टीज होती है, तो वो चीजें खिलाए नहीं खिलाए, बच्चे हैं उनका खाना हक बनता है, लेकिन उसको खाने का एक तरीका होना चाहिए। ये जो खाना मैं बात कर रहा हूं वो सारा जंक फूड, स्टिकी फूड,
1: चॉकलेट,
0: स्वीट्स, तो उनके लिए अगर आपके बच्चों के केस में नॉर्मली कैविटीज नहीं है तो हफ्ते में 3 से 4 दिन आप उनको दे सकते हो, लेकिन उसका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, 15 मिनट का विंडो। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग की बात बता रहा हूं। आपके घर में जितनी बड़ी थाली हो, परात बोलते हैं कोई लोग, बड़ी से बड़ी थाली हो, वो थाली पूरी भर के सजा दो उनके सामने जो चीजें उनको पसंद है। उसमें बिस्किट्स आ गए, चॉकलेट्स आ गए, वेफर्स आ गए, 10 पैकेट आपके चिप्स के आ गए, कुछ भी, सब उसके सामने रख दो बच्चों के सामने, और उनको बोलो कि ये 15 मिनट है आपके पास, जैसे खाना है वैसे खाओ, फिर दोनों हाथों से खाओ, दोनों पैरों से खाओ, थाली में बैठ के खाओ या थाली सर पे रख के खाओ, चलेगा। लेकिन 15 मिनट के बाद वो सब उठा के रखना है, 15 मिनट के बाद उनको इमीडिएटली ब्रश करवाना है।
1: ओके,
0: सो नॉर्मल 2 टाइम ब्रशिंग प्लस ये तीसरा वाला ब्रशिंग जंक फूड के बाद, इससे कैविटीज नहीं होते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग बच्चों का ऐसे होता है कि हमें घर पे सारी चीजें मिल रही है
1: तो हमको कहीं बाहर
0: क्रेविंग नहीं होता है। बाहर इजिली जो बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर कोई देता है तो तुरंत खाने के लिए जिद करते हैं, तो वो क्रेविंग चली जाती है। हाँ, जब आप ये उठा के रख रहे हो तो ऐसी जगह पे रखना कि एक डब्बा रहे जो उनको दिखे, एक्सेसिबल ना हो, इजीली वो पहुंच ना पाए, नहीं तो आप सो जाओगे, वो वापस खाने बैठ जाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: तो ये चीज अपने को ध्यान देनी है।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाने की बारी है, फिर आगे की बातें करते हैं।
0: हाँ जी,
1: तो बताइए आपको कौन से गायक बहुत पसंद है?
0: मुझे पुराने गायक पसंद है, सबसे ज्यादा पसंद है मुझे किशोरदा जी, किशोर कुमार जी।
1: क्या बात है, तो पहला गाना कौन सा चुन रहे हैं आप?
0: पहला गाना मुझे अभी जो याद आ रहा है, ओ साथी रे, मुकद्दर का सिकंदर।
1: क्या बात है, सुनते हैं।

0: ये गाना हमने सुना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, ऐसा लग रहा था जैसे ये दांतों के लिए कहा जा रहा हो, क्योंकि क्योंकि दांत अगर नहीं हो तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाए। दांतों की समस्या लोगों को तब समझ में आती है जब समस्या सामने आती है, यानी जब दर्द होता है तब डॉक्टर नजर आता है। यहाँ हम बात करेंगे कैविटी की,
1: हाँ जी,
0: कि कैसे कैविटी बनती है और व्यक्ति को सावधान कब हो जाना चाहिए, तब नहीं जब असह्य दर्द हुआ और डॉक्टर साहब के पास गए कि डॉक्टर साहब जल्दी से ठीक कर दो।
1: तो ये समझने से पहले मैं आपको दांत का नेचुरल स्ट्रक्चर कैसे होता है ये थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। कुदरती तौर पे वैसे तो पूरी बॉडी ही इतनी खूबसूरती से बनाई गई है, तो दांतों के स्ट्रक्चर के बारे में मैं अगर बताऊं तो दांत में एक नस होती है, नस के ऊपर एक पार्शियली मिनरलाइज्ड 60% मिनरलाइज्ड लेयर होता है, उसको बोलते हैं डेंटिन। सबका डेंटिन का कलर येलोइश टू ब्राउनिश होता है।
0: अच्छा,
1: उसके ऊपर कोटिंग आती है एनामल की।
0: हाँ।
1: डेंटिन की थिकनेस होती है 4 से 6 mm तक। उसके ऊपर रहती है 2 से 4-5 mm तक इनामल की थिकनेस।
0: ठीक है,
1: तो अभी जो नस है उसके जो सिरे हैं वो डेंटिन तक आए हुए रहते हैं, इनामल में कोई भी नस का सिरा नहीं आया है।
0: बिल्कुल,
1: इसके लिए कैविटी जब स्टार्ट होती है, बैक्टीरियल ग्रोथ जब स्टार्ट होती है, तब कभी दर्द नहीं होता है। दांतों में एक ब्राउनिश स्पॉट या फिर ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है।
0: ओके,
1: कभी कभार खाना फंसता है तो हम लोग उसको निकाल देते हैं, टूथपिक से, पिन से, जो कुछ भी मिले उससे निकाल देते
0: लेकिन
1: हैं।
0: नस तक,
1: नस तक अभी तक पहुंचा नहीं है
0: जी।
1: लेकिन धीरे धीरे वो बैक्टीरिया अंदर बढ़ेंगे, जब डेंटिन तक पहुंचेंगे, नसों के एंड तक पहुंचेंगे, तब कभी कभार पानी पी लिया, ठंडे पानी पे झिंझिनाहट हो रही है, या फिर स्वीट खाया तो जब तक वो स्वीट का असर है तब तक झिंझिनाहट हुई, उसके बाद चला गया, तभी भी हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं,
0: बिल्कुल
1: नजरअंदाज करते हैं। लेकिन वही चीज जब आगे बढ़ के नस तक पहुंच जाती है, तो नस एक ऐसा एरिया होता है कि दांतों की संवेदनाएं ब्रेन तक पहुंचाता है, और दांतों को खून का सप्लाई रखना, दांतों को न्यूट्रिशन देना नसों से ही होता है। तो जब वो नस तक पहुंच जाता है तब जाके असहनीय दर्द जो बोलते हैं वो तब होना चालू होता है,
0: जिसकी हमने चर्चा की।
1: एग्जैक्टली,
0: डॉक्टर साहब मर गए बचा लो।
1: हाँ जी, उसमें भी कुछ लोग काउंटर सेल पे जो मेडिसिन मिलते हैं, मेडिकल में जाके दर्द की दवाई ले लेते हैं, चला लेते हैं, अभी वो नस सड़ गई है।
0: हाँ।
1: नस सड़ने के बाद नीचे हड्डी के नीचे सेप्टिक जमना चालू होता है, उसको डेंटल एब्सेस बोलते हैं।
0: ये बहुत खतरनाक है।
1: यस, फिर कोई दवाई भी असर नहीं करती है, तब जाके डॉक्टर को याद किया जाता है, और तब जाके लोगों की नींद खुलती है कि हमें दांतों की समस्या है या फिर दांतों का ध्यान हमें रखना चाहिए। यहाँ पे मैं और एक चीज कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों में ना एक मिथ है कि मुंह में जितना दांत दिखता है ना उतना ही दांत होता है।
0: अच्छा,
1: पर असलियत ऐसी नहीं है। असलियत जितना मुंह में दांत दिखता है उसका कम से कम 1.5 गुना दांत अंदर होता है, हड्डी में बैठा होता है, जबड़े की हड्डी में, तभी हम लोग सारी चीजें चबा पाते हैं। नहीं तो अगर सिर्फ इतना सा दांत होता तो हम लोग जितनी चीजें खा रहे हैं आज, जिस तरीके की चीजें खा पी रहे हैं, वो जरा भी पॉसिबल नहीं था, मुमकिन ही नहीं था। तो ये मिथ लोगों ने थोड़ा तोड़ लेंगे अपना तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे, कि दांत मुंह में दिखता है उतना नहीं होता है, उससे 1.5 गुना दांत अंदर होता है। मतलब सिंपली अगर इस चीज को मैं समझाऊं तो बिल्डिंग जितनी बाहर दिखती है उसका पाया उतना नीचे गहरा होता है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तब जाके वो खड़ी रह पाती है।
0: सेम बात
1: यहां पे है। फिजिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है कि बेस अगर स्ट्रांग रहेगा तो ऊपर का स्ट्रक्चर काम करेगा, वही प्रिंसिपल यहां पे लागू होता है। तो ये चीज है। तो ये कैविटीज जब नस तक पहुंच गई है, नीचे एब्सेस बना रही है, तब जाके दवाई असर नहीं कर रही, तब लोग जाते हैं डॉक्टर के पास। अभी जैसे मैंने बोला कि कैविटी शुरुआत में स्टार्ट होती है, ये बैक्टीरियाज की वजह से होती है। ये बैक्टीरियाज कहां से आते हैं? तो बॉडी में बहुत तरीके

0: के बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन अपने मुंह में और अतड़ियों में, इंटेस्टाइन्स में, बहुत सारे तरीके के, मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि दुनिया में जितने अवेलेबल बैक्टीरियाज है उतने सारे तरीके के बैक्टीरियाज अपने इंटेस्टाइन में और मुंह में अवेलेबल है, लेकिन उसमें से कुछ बैक्टीरियाज बेनिफिशियल होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज हार्मफुल होते हैं, मतलब नुकसानदायी होते हैं। तो जब ये हार्मफुल बैक्टीरियाज बढ़ जाते हैं तब सड़न बढ़नी चालू होती है, क्योंकि वो सर्वाइव करते हैं कैल्शियम पे एंड हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल्स, जो इनामल का स्ट्रक्चर है, फाउंडेशन स्ट्रक्चर इनामल का, उसको गला के वो अपना कैल्शियम की नीड पूरी करते हैं। और ये कब होता है, दांतों पे चिपका हुआ कोई भी खाना कैविटी बना सकता है लंबे समय तक। हम लोग स्वीट्स को या चॉकलेट्स को जल्दी दोष दे देते हैं, हाँ उसका कारण भी है वैसे, क्योंकि स्वीट्स खाने के बाद में नॉर्मली जो अपनी थूक है, सलाइवा है, उसका पीएच वो होता है 7.2 to 7.4, लेकिन जब हम लोग स्वीट्स खाते हैं तो इट ड्रॉप्स, वो कम हो जाता है इमीडिएटली विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर वो 4 से 5 के बीच में आ जाता है, मतलब न्यूट्रल रीडिंग होता है पीएच का 7, मतलब वो चीज ना एसिडिक है ना अल्कलाइन है, नॉर्मली सलाइवा अपना अल्कलाइन होता है, तो जब वो एसिडिक बन जाता है तो एसिडिक एटमोस्फियर में जो बैक्टीरियाज ग्रो होते हैं वो दांतों को गलाने के लिए, या फिर वो हार्मफुल बैक्टीरियाज है वो खुद को सर्वाइव करने के लिए दांतों को गलाना चालू कर देते हैं,
1: और ये हम खुद इस तरह का माहौल बनाते हैं दांतों में।
0: एग्जैक्टली, नॉर्मली ये तभी होता है जब आप ब्रश नहीं कर रहे हो या फिर स्वीट्स खाए हैं, टेस्ट अच्छा लग रहा है तो बहुत देर तक उसको मुंह में ऐसे ही घोलते बैठे हो
1: जी।
0: रात में नॉर्मली जब हम लोग ब्रश नहीं करते हैं या फिर खाना खा के तुरंत सो जाते हैं तो अपना जो थूक है, सलाइवरी सिक्रीशन है, वो भी कम हो जाता है, नहीं तो सुबह तक, वो भी कुदरती देन है, वो फंक्शन वैसा है, नहीं तो सुबह तक अपना तकिया पूरा सलाइवा से भर जाएगा।
1: बिल्कुल
0: ठीक है, तो वो सिक्रीशन कम होता है, तो इसकी वजह से जो सलाइवरी एंजाइम्स रहते हैं जो इम्यूनिटी का काम करते हैं वो भी कम हो गए। सलाइवा का दूसरा काम होता है कि वॉश आउट करना, नेचुरल रिंसिंग देना दांतों को, तो वो भी नहीं हो पाता। इसके लिए रात में जो लंबा समय 8 से 10 घंटे हम लोग जब सोते हैं तब ये बैक्टीरिया जल्दी ग्रो करते हैं, इसके लिए रात में ब्रश करके सोना जरूरी होता है।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, और सुबह उठते ही ब्रश करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, बातें ओरल हाइजीन की चल रही हैं और आपने बहुत सारी बातें बताई कि किस तरह से कैविटी पैदा होती है और बाकी तमाम चीजें हैं। आज हम देख रहे हैं कि पुरानी पीढ़ी के दांत बड़े मजबूत देखे गए, हमारी दादी नानियां कड़क से कड़क चीज, मतलब आपने गाजर और ककड़ी को कड़क कहा, उससे कहीं ज्यादा कड़क चीजों को, अखरोट जैसी चीजों को, गन्ने को मजे से छील के खा ले रही। आज के बच्चों में तो वो उनके दांतों में वो दमखम दिख ही नहीं रहा है। तो मुद्दा ये है कि क्या आज का समाज दांतों को लेकर कम अवेयर है और हम कमजोर दांतों वाले जमाने में आ गए?
0: अभी इसका एक्सप्लेनेशन मैंने जैसे पहले भी बताया था वैसे ही आएगा यहाँ पे, कि प्रॉब्लम ये हो चुका है ना कि ज्यादा पका हुआ खाना खाने की आदत बन चुकी है, सॉफ्ट खाना खाने की आदत बन रही है लोगों की, जिसकी वजह से मसल्स और जॉ बोन, हड्डी जो होता है जबड़े का, उतना स्ट्रांग बन ही नहीं पा रहा
1: जैसे पहले के बुजुर्गों का है।
0: एग्जैक्टली, क्योंकि वो कच्चा खाना खाते थे, खेतों में चलते चलते उनका गन्ना चूसने का काम होता था, गन्ना दांतों से छील के खाने का काम होता था, उनका खाना उतना फाइबरस था, फाइबर्स बोलते खाने में, बेसिक है, मतलब जैसे जिम जाते हैं हम लोग मसल्स बढ़ाने के लिए, वहां क्या करते हैं हम लोग, मसल्स को एक्स्ट्रा ट्रेन करते हैं, एक्स्ट्रा उसकी काबिलियत से ज्यादा उसके ऊपर लोड डाला जाता है, तब जाके मसल एक्स्ट्रा बड़ा बनता है। सेम फेशियल मसल्स का होता है, जो चबाने वाले मसल्स है उनमें भी वही चीज है, जितना काम आप उनको दोगे उतना वो बनेंगी, और ये चीज अगर डेवलपमेंटल स्टेज में हो तो ज्यादा अच्छा है। बट हम लोग, मैं ये नहीं बोलूंगा कि लोगों का अवेयरनेस कम हो रहा है, पैम्परिंग ज्यादा बढ़ गया है, बच्चों का पैम्परिंग ज्यादा बढ़ गया है, मतलब अगर हमारे भी बचपन की बात करें तो पेरेंट्स ये बना है ये खाना पड़ेगा,
1: बिल्कुल
0: ये रूल होता था घर का। आज ऐसे होता है, मतलब मेरा बच्चा भी छोटा है अभी, तो हमारे घर पे भी ऐसा होता है बहुत बार, लेकिन मैं खुद वहां पे एक विलन का रोल ले लेता हूं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए,
1: ये तो खाना ही पड़ेगा।
0: हाँ जी, तो नॉर्मली आजकल खाना बनता है कि बच्चा तुझे क्या चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए,
1: हाँ उनके मुताबिक बन रहा है।
0: हाँ उनके मुताबिक बन रहा है, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये चीज पूरी तरीके से गलत है, लेकिन एक लिमिट होना चाहिए, हम लोग वो लिमिट कहीं ना कहीं भूल रहे हैं मुझे लग रहा है। भी इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, एक आध साल पहले की बात है या फिर बहुत बार हुआ है वैसे, लेकिन ये एक एपिक पेशेंट मेरे क्लिनिक में आए थे जो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूं। 5 साल की बच्ची को लेकर आए थे, दांतों में कैविटीज थे, मसूड़ों में सूजन थी, मतलब उसका एब्सेस बन गया था अंदर, इतना उसका इन्फेक्शन फैला हुआ था। उसके पिताजी उसको लेके आए थे, मैंने देखा, चेक किया, ट्रीटमेंट बताया, उन्होंने सुना, सुनने के बाद उन्होंने बच्ची को पूछा, बेटा आपको करवाना है? अभी 5 साल की बच्ची को क्या पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, जिसने पहली बार दांतों का दवाखाना देखा है। तो मैंने उनको पूछा कि आप उसे क्यों पूछ रहे हो, वो तो छोटी है, उसको क्या समझेगा क्या अच्छा क्या बुरा। लेकिन उनका जवाब बहुत यादगार था मेरे लिए, कि नहीं, आजकल बच्चों को पूछना पड़ता है।
1: ओहो,
0: अभी इतना बच्चों को पूछ के अगर आप जियोगे, तो मैंने उनको भी ये चीज हंसते हुए बोल दी थी कि ये

0: दिनों बाद आपको नहीं पूछेगी।
1: बहुत सही है, बहुत सही है।
0: तो ये जो दुलार है ना,
1: ये बहुत नुकसानदेह है।
0: हाँ, मतलब एक लिमिट तक होना चाहिए। इसके लिए मैंने बोला ना कि पेरेंट्स को समझना चाहिए कि कहाँ प्यार करना है और कहाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट होना है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाने की बारी है, उसके अच्छा? बाद हम रूट कैनाल की बात करेंगे।
0: श्योरली। तो अभी किशोरदा का ही गाना सुनेंगे, मेरे नैना सावन भादो।
1: क्या बात है,
0: क्योंकि दांतों में दर्द होता है तो नैनों से तो सावन बरसना ही है।
1: सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, रूट कनाल ट्रीटमेंट आजकल बहुत लोगों को कराना पड़ता है और दांतों को लेकर एक जरूरी ट्रीटमेंट है जब सड़न हो जाती है। क्या इससे बचा जा सकता है? किन मामलों में, किन सावधानियों के जरिए और कब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है?
1: जैसे मैंने आपको दांत का स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि नस अंदर होती है, उसके ऊपर डेंटिन होता है, उसके ऊपर इनामल होता है, तो जब सड़न नस तक पहुंची है तब जाके रूट कैनाल करना पड़ता है। रूट कैनाल में बेसिकली क्या किया जाता है कि जो आपकी नस सड़ रही है उसको साफ किया जाता है और उसकी जगह पे नकली नस बोल सकते हो आप उसको, या फिर आर्टिफिशियल मटेरियल का फिलिंग किया जाता है।
0: यस,
1: जिसकी वजह से दांतों का सेंसेशन तो चला ही जाता है बट उसका ब्लड सप्लाई भी काफी हद तक कम हो जाता है।
0: यस,
1: इसके लिए रूट कैनाल करने के बाद कैप लगाना मैंडेटरी हो जाता है।
0: जी
1: क्यों? क्योंकि एक तो दांत का स्ट्रक्चर कमजोर हो रहा है, ब्लड सप्लाई कमजोर हो रहा है, मतलब जो न्यूट्रिशन मिल रहा है दांतों को वो भी कम हो रहा है, और तीसरी बात, जितना बड़ा गड्ढा होता है उतना बड़ा सीमेंट वहां पे टिके रहना मुश्किल होता है। चौथी बात यह है यहाँ पे कि नस तो चली गई, सेंसेशन चली गई, तो जब वापस उसमें अगर कैविटी लगेगी तो पेशेंट को भी पता नहीं चलेगा।

0: टूट जाएगा। अभी दांतों के ट्रीटमेंट्स कैसे होते हैं और किस तरीके से किए जा सकते हैं, सबसे पहली बात तो होती है नॉर्मल सफाई करना। जब आपके दांतों में सड़न नहीं है लेकिन दांतों पे कुछ परत दिख रही है आपको, तो उसको साफ कर लो। उसके बाद आता है फिलिंग करना। जैसे मैंने बताया कि शुरुआती दौर में कैविटी दांतों में एक ब्राउन स्पॉट या काला स्पॉट की तरह दिखती है, या फिर कभी कभार थोड़ा बहुत खाना फंस रहा है, उसी वक्त अगर उसको ट्रीट किया जाए तो सिंपल ट्रीटमेंट होता है कि उसको साफ किया जाता है, फिर वो गड्ढा बनता है उसमें सीमेंट भरा जाता है। अभी ये दांतों के स्पेशल सीमेंट्स होते हैं, कुछ लोगों का मिथ यहाँ पे ये भी है, और ये मॉक डेंटिस्ट या फिर स्ट्रीट डेंटिस्ट जो होते हैं वो ये चीज करते भी है कि बहुत बार दांतों में एक्रेलिक भर के दे देते हैं।
1: अरे बाप रे,
0: एमसील भरे हुए दांत देखे हैं मैंने,
1: अरे बाप रे,
0: व्हाइट सीमेंट भरा हुआ देखा हुआ है, जिसकी वजह से फिर कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि वो दांत तो चला ही गया, जबड़े का हड्डी भी गल गया, और उसकी वजह से आजू बाजू के भी दो दो तीन तीन दांत निकालने पड़े।
1: ओहो,
0: और ये होता है सस्ते के चक्कर में, जब लोग भागते हैं सस्ते में हमारा काम हो रहा है। सीधी सी बात है, दुनिया में आज हर कोई बिजनेस करने बैठा हुआ है। अगर कोई चीज 10 रुपए की बन रही है तो बनाने वाला उसको 15 रुपए की या 20 रुपए की बेचेगा,
1: बिल्कुल,
0: वो डिस्ट्रीब्यूटर वहां से लेगा, वो अपना मार्जिन जोड़ेगा, और फिर उसके बाद वो डॉक्टर के पास आ रही है या फिर पेशेंट के पास जा रही है, तो हर एक का मार्जिन जुड़ के अगर वो 10 रुपए की चीज आपको कोई 9 रुपए में ऑफर करे, तो सीधी सी बात है उसकी बनावट में कुछ खोट है, खामियां है, कुछ भी है, मतलब बनावट खराब है। डेंटिस्ट्री मतलब बहुत सारी फील्ड्स ऐसी है शरीर के मामले में कि जहां पे हम लोग शरीर में कुछ चीजें डाल रहे हैं जो एक्सटर्नल है, पर अगर वो शरीर से सुसंगत नहीं होंगी, शरीर के मुताबिक नहीं होंगी, तो शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा।
1: और लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि दांतों में कितना ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तो उस चीज का मजबूत होना कितना जरूरी है।
0: मतलब अगर यहाँ पे नंबर वाइज मैं बताऊँ,
1: हाँ, तो वही मैं जानना चाहता हूँ।
0: दांतों का जो नॉर्मल हमारा बाइटिंग फोर्स रहता है, इट इज रेंजिंग फ्रॉम 110 to 130 पास्कल, दैट इज न्यूटन सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर पे 130 न्यूटन का प्रेशर हम लोग डालते हैं, ये नंबर वाइज।
1: ये बहुत ज्यादा है,
0: बहुत ज्यादा है। तो ट्रीटमेंट्स पे हम लोग थे, तो पहले तो फिलिंग हो गया, उसके बाद फिलिंग प्लस कैप होता है, ये बच्चों में भी होता है और बड़ों में भी होता है। ये कब किया जाता है, जब कैविटी से दांत का ऊपर का स्ट्रक्चर अच्छा खासा सड़ गया है लेकिन वो नस तक नहीं पहुंचा है, तो उतना बड़ा सीमेंट लोड नहीं ले पाएगा जितना हम लोग फोर्स की बात कर रहे थे अभी। तो वो सीमेंट को रिटेन करने के लिए, उसको एक स्ट्रक्चर रखने के लिए उसके ऊपर कैप लगाया जाता है।
1: यस।
0: फिर तीसरा ट्रीटमेंट आता है रूट कैनाल, जब नस छू गई है, नस इन्फेक्ट हो गई है या फिर नस के नीचे इन्फेक्शन हुआ है, फिर उसमें 2-3 बार नस के एरिया की सफाई की जाती है, पूरी सड़न साफ करके नस तक एक्सेस लिया जाता है, नस के एरिया की सफाई की जाती है, दवाई डाली जाती है ताकि जो बैक्टीरिया अंदर चले गए वो मर जाए, खत्म हो जाए, और वो पूरा एरिया असेप्टिक बने। फिर उसको पूरा स्टराइल करके, मतलब फिलिंग करने से पहले भी अलग अलग दवाइयां डालते हैं हम लोग उसमें, ताकि वो पूरा एरिया स्टराइल हो जाए, डिसइन्फेक्ट हो जाए, और फिर हम लोग फिलिंग करते हैं। फिलिंग करते वक्त हम लोग इन चीजों का भी ध्यान रखते हैं कि जो पहले वाला फिलिंग या फिर सीमेंट निकाला हुआ है वो कहीं पे भी टच ना हो, या फिर थूक भी अपनी टच ना हो उसको, क्योंकि थूक में भी बैक्टीरिया होते हैं जैसे हमने बात की, तो वो भी वहां पे टच ना हो, ये ध्यान हम लोग रखते हैं। फिर उसके बाद फिलिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर कैप लगाई जाती है, और आखिरी ट्रीटमेंट होता है दांत निकालना, जबकि पूरा ही दांत टूट चुका है या फिर बहुत ज्यादा सड़न बढ़ चुकी है। जैसे बड़ी चौबर होती है पीछे वाली, उनकी 2 या 3 जड़ें होती है, वो जड़ों के बीच में क्रैक आने लग गया है, उस सिचुएशन में रूट कैनाल भी असर नहीं करता है, तब दांत निकालना पड़ता है। अभी यहाँ पे एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि दांत निकालने के बाद बच्चों में भी एक चीज होती है जिसको बोला जाता है स्पेस मेंटेनर, और बड़ों में एक चीज की जा सकती है, दांत बिठाने की जरूरत होती है। मुंह में एक इकलौता दांत ऐसा है जिसको बोलते हैं अक्कल दांत, विजडम टूथ, वो अगर निकाल दिया जाए और ना बिठाया जाए तो चलता है, क्योंकि नेचुरली भी जब हम लोग मुंह बंद करते हैं तो विजडम टूथ बहुत सारे केसेस, मतलब मैक्सिमम केसेस में वो टच होता ही नहीं ऊपर नीचे, तो खाना चबाने का एज सच कुछ फंक्शन नहीं होता उसका, ना दिखने में वो काम में आता है, तो इसके लिए वो दांत ना बिठाए तो चलता है। लेकिन उसे छोड़ के बाकी कोई भी दांत अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो उसे बिठाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अभी ये क्यों होती है,
1: बिल्कुल
0: नॉर्मली लोगों का सवाल आता है कि क्यों बिठाना है, मैं तो खा
1: इसके
0: पा
1: बिना
0: रहा
1: भी
0: हूं,
1: चल सकता है
0: इसके बिना भी मेरा चल रहा है, क्योंकि एक ही साइड का एक दांत निकाला हुआ, पीछे की चौबर तो है, आगे के दांत है, दूसरे साइड में मेरे सब फाइन है। सबसे पहली बात ये होती है कि नॉर्मली जब हम लोग दांतों पे प्रेशर देते हैं तो जैसे हमने बोला कि उसकी 1.5 गुना जड़ें अंदर होती है, वो जड़ों के द्वारा हड्डी में फोर्स पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो दांत के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है वो पूरे जबड़े के हड्डी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये उसका फंक्शन है। बॉडी की एक जनरल टेंडेंसी होती है कि जो भाग हम लोग यूज नहीं करते हैं बॉडी वहां पे न्यूट्रिशंस वेस्ट नहीं करती है। इसका एक क्लासिक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं यहां पे, तो किसी का हाथ अगर प्लास्टर में है, समझ लीजिए किसी वजह से फ्रैक्चर हुआ है प्लास्टर में, एक डेढ़ दो महीने बाद जब प्लास्टर निकाला जाता है तो आपने भी देखा होगा कि वो हाथ उतना मजबूत नहीं दिखता है जितना उसका पहले था। क्यों? क्योंकि उतना फंक्शन वो

0: तर ही नहीं रहा था 1.5-2 महीने तक। वहां पे न्यूट्रिशन की सिर्फ जरूरत थी उस घाव भरने के लिए, वो हड्डी भरने के लिए उतने ही न्यूट्रिशन पहुंचाए जाते हैं। तो वही होता है जबड़े की हड्डी के मामले में।
1: अच्छा,
0: जब दांत निकल गया वो हड्डी का फंक्शन खत्म हो गया, तो हड्डी गलना चालू हो जाता है। वो गलते गलते इतना गल जाता है कि आजू बाजू के दांतों का भी हड्डी गल जाता है। एक चीज ये होती है। दूसरी चीज, आगे का दांत पीछे झुक जाता है, पीछे का दांत आगे झुक जाता है, ऊपर वाला दांत नीचे आता है या नीचे वाला दांत एंटी ग्रेविटी ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी ट्राइज टू रेस्टोर इट्स फंक्शन।
1: ओके,
0: खाना खाना तो चालू ही है, बॉडी को सिग्नल्स मिल ही रहे कि यहाँ पे खाना चबाया जा रहा है,
1: तो वो तो

0: दांत आगे झुक जाता है, ऊपर वाला दांत नीचे आता है, या नीचे वाला दांत एंटी ग्रेविटी ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी ट्राइज टू रेस्टोर इट्स फंक्शन।
1: ओके,
0: खाना खाना तो चालू ही है, बॉडी को सिग्नल्स मिल ही रहे कि यहाँ पे खाना चबाया जा रहा है,
1: तो
0: वो बैलेंस करने के लिए जो दांत अवेलेबल है उनको वो एडजस्ट करने की कोशिश करती है।
1: ओके,
0: एक दो दिनों में ये चीज नहीं होती है, टाइम लगता है, लेकिन ये सब जब होता है और जब पेशेंट की नींद खुलती है तब उनके आजू बाजू के दांत भी खराब हो चुके होते हैं।
1: इसलिए डॉक्टर के पास जितने जल्दी हो सके, डेंटिस्ट के पास समस्या से पहले पहुंचना चाहिए।
0: सही बात है, और इसके लिए सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं करना है, डेली आप अगर ब्रश कर रहे हो ना तो उसी टाइम पे ब्रश होने के बाद मुंह में सिर्फ अपने झांकना है एक मिनट के लिए कि कहीं कुछ गलत तो नहीं दिख रहा, कहीं कुछ और तो नहीं दिख रहा, और अगर दिख रहा है नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकल रहा वो चीज तो एक बार डेंटिस्ट का ओपिनियन लिया जाए।
1: ठीक बात है,
0: इतनी सी बात होती है, पर हमारा अभी लाइफस्टाइल इतना स्पीड वाला हो गया ना कि उतना भी वक्त हमारे पास नहीं है। और जब तक प्यास लगती नहीं है हम लोग कुएं के पास जाते नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि आप गुनगुनाते भी हैं और गाने का शौक रखते हैं।
0: हाँ जी, शौकिया तौर पे रखता हूँ, मैं खुद को गायक नहीं मानता हूँ
1: जी,
0: बट हाँ कभी कभार छोटे मोटे घरेलू जो गेट टुगेदर होते हैं वहां पे हम लोग गा लेते हैं।
1: तो हमारे लिए भी गाइए।
0: ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ
1: जी।
0: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: क्या बात है, सुनते हैं ये गाना।

0: अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, तब दांत आड़े टेढ़े हो जाते हैं।
1: अच्छा,
0: अभी आड़े टेढ़े दांत क्यों नहीं होने चाहिए? नॉर्मली लोग एक चीज समझते हैं कि एस्थेटिक वाइज दिखने के लिए वो ज्यादा अच्छा नहीं दिखता है, या फिर ज्यादा आगे है तो इसके लिए वो सोचते हैं कि हमें ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन इसका और एक प्रॉब्लम होता है आगे चल के, क्या होता है ना, दांतों के ऊपर ही नहीं दांतों के बीच में भी गैप्स होते हैं नॉर्मली। वो गैप्स में जब खाना फंसता है, और अगर आपके दांतों के अरेंजमेंट ठीक नहीं है तो आपको फंसा हुआ खाना समझ में भी नहीं आता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: उसकी वजह से कैविटीज ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से दांतों के प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ते हैं, और वो व्यक्ति परेशान रहता है जिंदगी भर कि मेरे दांतों में हमेशा प्रॉब्लम ही होती है। दूसरी बात, हाँ हमने ब्रशिंग की बात की, यहाँ पे एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि दांतों के बीच के एरिया को साफ करने के लिए कोई भी ब्रश आज तक बना नहीं है।
1: ओके,
0: उसके लिए बना है, लेकिन जब गैप्स उतने बड़े हो, उसको प्रोक्सा ब्रशेस बोला जाता है, तो वो डिपेंड करता है कि गैप कितना है, बट नॉर्मली जो टचिंग होते हैं दांत, या फिर जो नॉर्मल गैप्स होते हैं जहां पे खाना फंस रहा है, वो नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकलता है, तो उसके लिए करना पड़ता है फ्लॉस।
1: फ्लॉस के लिए वो
0: धागा आता है, नायलॉन का धागा रहता है, इसको फ्लॉस ही बोला जाता है, अलग अलग कंपनियां बनाती है उसको, उसमें भी दो तीन टाइप के आते हैं, आपके लिए कंफर्टेबल रहे वो आप कीजिए, ये मेरी सलाह रहेगी यहाँ पे। अभी आड़े टेढ़े दांतों की बात करेंगे, आगे आए हैं, एस्थेटिकली अच्छे नहीं दिखते हैं, तो ब्रेसेस, यस इट इज द सोल्यूशन। अभी तो ब्रेसेस में बहुत सारे एडवांसमेंट्स आए हुए हैं, अलाइनर्स करके चीज आई हुई है जो पूरे ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस होते हैं कि पहना है व्यक्ति ने कुछ समझ में नहीं आता है।
1: ओके,
0: जिसको अलाइनर्स बोला जाता है, तो अभी उसमें भी कैसा है कि बनाने वाली कंपनीज बहुत है, लेकिन अच्छा प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज बहुत कम है। और प्रोडक्ट जब तक अच्छा नहीं है तब तक रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा डिजिटल प्रोग्रामिंग होता है, स्कैन किया जाता है आपके जबड़े का पूरा
1: जी,
0: और वो प्रोग्राम बताता है कि वो सेट्स कितने लगेंगे अलाइनर्स के, फिर हर सेट आपको 15 से 20 दिन पहनना होता है, तब जाके कुछ चेंज होता है दांतों में अरेंजमेंट में, तब दूसरा सेट पहनना होता है। अभी ये निकालने पहनने वाली चीज है, इसकी सबसे बड़ी खामी भी ये है और अच्छाई भी यही है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि खामी मैं इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि नॉर्मली लोग निकाल के भूल जाते हैं वापस पहनना, वो भले निकालने पहनने वाली चीज हो लेकिन उसको दिन में 20 से 22 घंटे पहनना जरूरी होता है, वो सिर्फ ब्रशिंग के टाइम पे या खाना खाने के टाइम पे आप निकाल सकते हो, बाकी टाइम आपको पहन के रखना है, पहन के बात करनी है, पहन के सोना है, वैसे भी वो दिखता नहीं है, तो मोस्ट कंफर्टेबल थिंग। पर अभी भी कुछ चीजें हैं जो अलाइनर्स से नहीं की जा सकती, जैसे ज्यादा ही कॉम्प्लिकेशंस है, तो उसके लिए फिर हम लोग हाफ ब्रेसेस से करते हैं और हाफ अलाइनर्स से ट्रीटमेंट कर देते हैं कि हाँ नॉर्मल पे आ गया, फिर हम लोग अलाइनर्स पे शिफ्ट करेंगे। इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर बजट, बाकी फाइनल रिजल्ट जो आपको चाहिए होता है वो सब में आता है।
1: ओके,
0: सेम ही आता है, ये डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, आपकी चॉइस क्या है। जितनी एस्थेटिक चीजें आप लोगे जो ना दिखे या फिर दिखने में ज्यादा खूबसूरत हो तो वो थोड़ी महंगी जाती है, और जितना सिंपल लुकिंग चीज रहेगा या फिर थोड़ा और दिखने के लिए होगा, जैसे नॉर्मली आप मेटल के ब्रेसेस देखते हो, स्टील के ब्रैकेट्स लगाए हुए होते हैं, वो एक सस्ता ऑप्शन है। क्योंकि मैं खुद पर्सनली पेशेंट्स को कभी सजेस्ट नहीं करता हूं कि महंगे वाली चीज के लिए जाइए आप, अनलेस एंड अंटिल उनका प्रोफेशन डिमांड ना कर रहा हो या फिर लेट वो ब्रेसेस कर रहे हैं, मतलब बड़े उम्र में कर रहे हैं, तब मैं सजेस्ट करता हूं कि आप इनविजिबल चीजों में जाइए। पर यंग बच्चा है जहां पे एस्थेटिक उसके कंसर्न नहीं है उतने, तब हम लोग नॉर्मली सस्ते वाले ब्रेसेस में भी जाने का ऑप्शन दे देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, दांतों की अरेंजमेंट ठीक हो जाती है, तो कहीं पे खाना फंस रहा है नहीं फंस रहा है वो सारी चीजें क्लीन रहती है, और जबड़े की हड्डी की ग्रोथ अच्छी रहती है। लॉन्ग टर्म में अगर आपके दांत आड़े टेढ़े हैं, आड़ा टेढ़ा प्रेशर पड़ रहा है उनके ऊपर, भले आप नॉर्मल खाना पीना भी खा रहे हो और फिर भी आड़ा टेढ़ा प्रेशर पड़ रहा है, तो फिर भी आपका हड्डी कमजोर हो जाता है, हड्डी गल जाता है, उसको ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन बोला जाता है, मतलब नॉर्मल बाइट की वजह से ट्रॉमा हो रहा है दांतों पे और वो हड्डी गल रही है।
1: ओके,
0: तो ये सारी चीजें आप ब्रेसेस से ठीक कर सकते हो, ये चीज है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, कई लोग होते हैं जिनके मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आती है, दांतों की बहुत सड़न होती है, पुराने जमाने से एक बहुत बड़ी समस्या पायरिया रही है।
0: हाँ जी,
1: इसकी बात करते हैं और उसके बाद उन मरीजों की बातें करेंगे जिनको पूरा डेंचर बदलने की जरूरत पड़ती है, एक्सट्रीम केसेस की बात उसके बाद करेंगे।
0: चलेगा, तो आपका पहला सवाल है पायरिया के बारे में। पायरिया जो चीज होती है, एक्चुअली ये बीमारी है जबड़े की हड्डी और मसूड़ों की।
1: अच्छा, वो दांतों की बीमारी?
0: दांतों की बीमारी नहीं है, ये पहले समझने वाली बात है। सबसे बुरी बात पायरिया की ये है, स्पेशली इंडियन पॉपुलेशन के लिए, कि इसमें मैक्सिमम लोगों को दर्द होता ही नहीं है। बहुत सारे केसेस में तो एक्सट्रीम बुरा हो जाता है तभी भी दर्द नहीं होता है। लोग सिर्फ इतना बोलते कि दांत अपने आप हिलने लग गए और अपने आप गिर गए।
1: ओके,
0: अपने आप कभी दांत नहीं हिलता है। आप खुद सोचिए कि जितना दांत मुंह में दिख रहा है उससे डेढ़ गुना दांत अंदर हड्डी में बैठा हुआ है, वो हड्डी जब गलेगी तब उसका सपोर्ट जाएगा,
1: यस,
0: तब दांत हिलेगा।
1: तो हड्डी मामला है।
0: एग्जैक्टली, वो एक दिन में होता नहीं है, पायरिया का बीमारी एक दिन में होता नहीं।

0: डॉक्टर साहब, जिंदगी एक सफर तो है, लेकिन जब दांतों का दर्द होता है तो इंसान बहुत सफर करता है। ये दूसरा वाला सफर जो है ये बड़ा खतरनाक है। माँ बाप दो बातों से परेशान रहते हैं, एक बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांत और दूसरे बाहर निकले हुए दांत। इन दोनों के लिए कुछ ना कुछ उपाय करने की कोशिश करते हैं। मैं देखता हूँ चारों तरफ ब्रेसेस लगे हुए बच्चे नजर आते हैं, ये सब क्या मामला है?
1: जैसे हमने बात की कि जब जबड़े की ग्रोथ बराबर नहीं होती है, तब दांतों को आने के लिए जगह नहीं होती है, परमानेंट दांत बड़े होते हैं, तो वो जैसे जगह मिलती है वैसे

0: के भी चार स्टेजेस है, ग्रेड वन, ग्रेड टू, ग्रेड थ्री, ग्रेड फोर बोलते हैं हम लोग उसमें, टेक्निकल चीजें हैं। लेकिन ये क्यों होता है, तो दांतों के ऊपर जो परत जमती है, अभी इसमें जो काम करते हैं वो बैक्टीरियाज अलग है, दांतों को सड़ाने वाले बैक्टीरियाज अलग है, उसके डिटेलिंग्स में मैं नहीं जाऊंगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी चीजें। पर ये जो परत जमती है दांतों के ऊपर, खाने की परत समझ लो या फिर कोई भी स्वीट की परत है, उसमें बैक्टीरियाज पनपने चालू हो जाते हैं। स्पेशली जहां पे आप ब्रश नहीं कर रहे हो, या फिर बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि नॉर्मली लोगों को एक ही साइड से खाना चबाने की आदत होती है, तो दूसरे साइड में सलाइवरी सिक्रेशन कम होता है, तो वहां पे भी ये परत जमना चालू हो जाता है। तो उस परत में जो बैक्टीरियाज जमते हैं उनका भी खाना होता है कैल्शियम, वो मसूड़ों में से अंदर जाके हड्डी से कैल्शियम लेना चालू करते हैं, तब जाके हड्डी गलती है। तो इसमें पायरिया जो बड़ा टर्म है उसको दो टर्म्स में डिवाइड किया जाता है, एक जिंजिवाइटिस और फिर होता है पेरियोडोंटाइटिस। दांत और हड्डी इनके बीच में एक लिगामेंट होती है जिसको बोलते हैं पेरियोडोंटल लिगामेंट, वो लिगामेंट की बीमारी होती है पेरियोडोंटाइटिस। तो ये जो बैक्टीरियाज है वो कहां से जा रहे हैं, दांतों के ऊपर जमी हुई परत से ही जा रहे हैं। तो वही चीज यहां पे ध्यान रखनी जरूरी होती है, जैसे मैंने बोला कि जो चीज आपके ब्रश से साफ नहीं हो रही है तो उस चीज के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। उसको वक्त रहते ही आपने साफ कर लिया तो बहुत सारे केसेस में ग्रेड वन वाली स्टेजेस में तो सेल्फ रिपेयरिंग चीज है, उसके लिए कोई ज्यादा मेडिसिन भी नहीं देने पड़ते, सिर्फ साफ करना पड़ता है और अपने आप बॉडी ठीक कर लेती है उसको। अभी पायरिया जब होता है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, एक मसूड़े में सूजन दिखना, अगर आप देखोगे तो समझ में आएगी, नॉर्मली लोगों के पास देखने के लिए वक्त है नहीं, वो आगे चल के मुंह से बदबू आना,
1: ये थोड़ा विजिबल साइन है।
0: ये विजिबल साइन है, लेकिन इसको भी लोग नजरअंदाज करते हैं क्योंकि अपने मुंह की बदबू अपने आप को नहीं आती है,
1: लेकिन वो एक सोशल डिलेमा बन जाता है।
0: सोशल डिलेमा बन जाता है अगर खुद को आई तो, अगर आप उस बारे में अवेयर हो,
1: लोग आपसे दूर जाने लगते हैं,
0: नहीं तो आपको पता ही नहीं चलता। और नॉर्मली कोई आके खुल के आपसे ये बोलेगा नहीं कि भाई साहब आपके मुंह से बदबू आ रही है, इजीली बोलेगा नहीं, अनलेस एंड अनटिल आपका उस बंदे के साथ या बंदी के साथ उतना क्लोज रिलेशनशिप ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे होता है कि कभी कभार ब्लीडिंग होना चालू होता है मसूड़ों में से,
1: हाँ जी,
0: ब्रश करते वक्त खून आ गया, फिर उसके बाद चालू होता है दांत हिलना। ये एक स्लो पॉइजन है बॉडी में, मतलब ये बहुत कॉमन है। अभी कल की बात है, मेरे एक दोस्त के पिताजी के चार दांत गिर गए, बोले शुक्रवार को गिरे हैं, मुझे कल फोन आया, तो मैंने पूछा कैसे गिरे, अपने आप गिर गए।
1: कितना नॉर्मल है ना,
0: कितना नॉर्मल है। आपको अभी जो आगे की चीज है कि पूरा डेंचर वगैरह, उसमें जब हम लोग जाएंगे तो मैं आपको समझा दूंगा कि कितनी महंगे दांत है,
1: बिल्कुल,
0: जो हमें फ्री मिले हैं, इसके लिए हम लोग उसकी कदर नहीं कर रहे। ऐसा मुझे बहुत बार लगता है, जिसके लिए मुझे बुरा लगता है।
1: यस,
0: या फिर पूरे शरीर की ही कीमत आप लगा लो, रिपेयरिंग की कीमत लगा लो, तो करोड़ों में जाती है, कई सौ करोड़ों में जाती है।
1: यस,
0: लेकिन हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि फ्री में मिला हुआ है।
1: बिल्कुल,
0: उल्टा उसको बर्बाद करने वाली चीजों पे हम लोग खर्चा करते हैं। फिर उसमें वो सुपारी आ गई, पान आ गया, अभी मुंह के बारे में बात कर रहे तो
1: वो सारी
0: चीजें,
1: तंबाकू,
0: स्मोकिंग, और बहुत यंग एज में बहुत गंदी हालत देखी हुई है मैंने
1: दांतों की,
0: ओवरऑल मुंह की, मसूड़ों की, जबड़ों की। मतलब बहुत बार मैंने जो पेशेंट को लाइन बोली है, मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, 25-30 साल की उम्र है लेकिन उनका दांत का कंडीशन होता है 60-65 साल की उम्र के बुड्ढों की तरह।
1: अरे अरे,
0: तो उनको भी मैं ये समझा देता हूँ। और ये नॉर्मली हैबिट्स जब होती है तभी होता है।
1: बिल्कुल,
0: और जब ये पेशेंट मेरे पास ट्रीटमेंट मांगते हैं तो मैं उनसे एक ही चीज मांगता हूँ कि आप अपनी हैबिट बंद कर दो, मैं बाकी की सारी चीजें रिपेयर करने की जिम्मेदारी ले लेता हूँ। लेकिन अगर आप अपनी हैबिट चालू रखोगे तो कुछ भी आप कर लो, आप पूरा पैसा डाल के आप अपना भी वक्त खर्चा करोगे, मेरा भी करवाओगे, मेरी मेहनत भी लगवाओगे, लेकिन बाद में बर्बादी आप करोगे। तो इसके लिए जो फ्री मिला है उसकी थोड़ी वैल्यू कर लो।
1: बिल्कुल,
0: ये सजेशन मैं यहां दूंगा।
1: इसी बात पर एक गाना सुनते हैं और उसके बाद वो डेंचर वाली बात करते हैं।
0: सही है, तो हम यहाँ पे सुनेंगे, यहाँ पे दांत बोलेंगे कि हम बेवफा हरगिज न थे।
1: वाह, पर हम वफा करना सीख, क्योंकि आप
0: क्योंकि आपने
1: करना सीख।
0: एग्जैक्टली,
1: क्या बात है, सुनते।

0: डॉक्टर साहब, बहुत एक्सट्रीम केसेस की अब हम बात करना चाहते हैं। जो आपने कहा कि इतने महंगे दांत हैं और फ्री में मिले हैं तो हम कदर नहीं करते, इसको जरा तफसील से बताइए कि कितने लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं अपने दांतों को वापस लाने के लिए, जब पूरा डेंचर बदलना पड़ता है।
1: हाँ जी, अभी जैसे हमने बात की कि एक दांत भी अगर आपका निकला है तो उसको इमीडिएटली रिप्लेस करवाना चाहिए, क्योंकि उसका फंक्शन रेस्टोर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
0: बिल्कुल
1: ठीक है, तो वैसे ही ऑप्शंस क्या क्या है उसके, पहले तो ये बताऊंगा मैं कि वहां पे मुंह में दो ही कड़क स्ट्रक्चर है जिनके ऊपर हम लोग सपोर्ट लेके परमानेंट वाला फिक्स दांत दे सकते हैं। एक तो खुद दांत अपने, या फिर हड्डी जिसमें दांत बैठे हुए, जबड़े की हड्डी। तो दांतों के ऊपर सपोर्ट लेके जो चीज की जाती है उसको बोलते हैं ब्रिज। जैसे बीच में एक दांत नहीं है तो आगे के एक दांत को छोटा किया जाता है, पीछे के एक दांत को छोटा किया जाता है, और तीन दांत
0: लेवल में लाया जाता
1: है। एग्जैक्टली, और तीन कैप एक साथ बिठाए जाते हैं, जिस चीज को बोलते हैं ब्रिज, क्योंकि जो बीच वाला है वो ब्रिज है।
0: करेक्ट,
1: दो दांतों के सपोर्ट पे। ये हो गया एक ऑप्शन। अभी उसमें भी अलग अलग टाइप के कैप्स आते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपके दांत कैसे हैं, कौन से तरीके का कैप आपके केस में बेटर रहेगा, या आपके डेंटिस्ट आपको अच्छे से सलाह दे सकते हैं।
0: इसमें दांतों का प्रेशर भी काम करता है।
1: एग्जैक्टली, आपका बाइट फोर्स कितना है,
0: जी,
1: आपके फूड हैबिट्स कैसे हैं, दांतों का अरेंजमेंट कैसा है।
0: यस,
1: क्योंकि जैसे लंबे स्पैन वाले ब्रिज होते हैं, तो अगर आपके अपोजिट साइड के दांत नीचे के जबड़े का कर रहे, तो ऊपर साइड के दांत अगर आपके आड़े टेढ़े हैं तो ब्रिज के ऊपर सीधा फोर्स नहीं पड़ने वाला है, आड़ा टेढ़ा फोर्स पड़ेगा। तो उसके लिए कौन सा मटेरियल ज्यादा सूटेबल रहेगा,
0: yes.
1: वो डिपेंड करता है आपके अरेंजमेंट के ऊपर, क्योंकि वो फोर्स जहां पे पड़ेगा वहां पे अगर टूटते रहेगा तो क्या होता है ना, ये भी एक चीज है कि एक दो बार टूटता है तो पेशेंट खुद ही गिवअप कर देते हैं और नहीं करना है बोल के छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे उनको ये चीज समझनी जरूरी है कि हर बार महंगी चीज ही अच्छी होगी जरूरी नहीं है, और हर बार सस्ती चीज ही आपके केस में काम करेगी वो भी जरूरी नहीं है। तो केस टू केस डिपेंड करता है कि क्या आपके केस में सबसे बेस्ट होगा, वो आपके डेंटिस्ट आपको बेस्ट तरीका बता सकते हैं। अभी दूसरा तरीका जो है रिप्लेसमेंट का, उसको बोलते हैं डेंटल इम्प्लांट्स, जहां पे हड्डी में एक इम्प्लांट डाला जाता है, एक स्क्रू जैसी चीज होती है। एक्चुअली उसका डिजाइन स्क्रू जैसा होता है, एक्चुअल में स्क्रू नहीं होता। वो डिजाइन स्क्रू की तरह देने का कारण ये होता है कि उतना ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल होता है हड्डी को उसके साथ पकड़ बनाने के लिए। तो इसके लिए वो इम्प्लांट जाता है हड्डी के अंदर, उसके ऊपर एक अटैचमेंट लगती है जिसको अबटमेंट बोलते हैं, और उसके ऊपर कैप लगाई जाती है। ये सबसे बेस्ट तरीका है आज की तारीख में दांत बिठाने का, क्योंकि इस तरीके में नेचुरली जैसे दांत फंक्शन करता है वैसे ही दांत हम लोग रिस्टोर कर रहे हैं। और अभी टेक्नोलॉजीज इतनी आ चुकी है, ये तो एक इम्प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो पूरे मुंह के इम्प्लांट्स दो दिन में तीन दिन में हम लोग केसेस खत्म करते हैं। पूरे मुंह के दांत हम लोग इमीडिएट इम्प्लांट करके पेशेंट को दो दिन में फाइनल दांत दे देते हैं।
0: बहुत जल्दी होने लगा ये,
1: बहुत जल्दी होने लगा है। हाँ, खर्चीली चीजें है। अभी इसका खर्चा अगर मैं बताऊं तो लाखों में जाता है
0: बाकायदा,
1: क्योंकि जो हड्डी में स्क्रू जा रहा है वो बना होता है टाइटेनियम से,
0: और वो महंगी चीज है।
1: टाइटेनियम सोने से भी ज्यादा महंगा आता है, तो वो महंगी चीज है। प्लस उसके टेक्निकल चीजों में अगर मैं जाऊं तो जो कंपनीज उसको बनाती है, तो उसके जो मशीन्स होते हैं, मतलब एक बार चालू कर दी मशीन तो बल्क प्रोडक्शन करेगी तभी वो रुका पाओगे आप, नहीं तो एक या दो सैंपल पीस बना के आप रोक नहीं सकते, वो हजारों में बनाने पड़ते हैं। ये कंपनी की मजबूरी है क्योंकि मशीन्स वैसे है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनको खर्चा ज्यादा करना पड़ता है उसके पीछे। ऑब्वियसली बात है, वो बाहर भी अपना नफा जोड़ेंगे। तो अगर मैं आपको अंदाजा दूं तो कम से कम 20-25 हजार से

0: के 70-80 हजार, 1 लाख रुपए तक का इम्प्लांट होता है एक दांत का।
1: एक दांत का?
0: तो अगर हम लोग पूरे मुंह की बात करें तो कम से कम 4-5 लाख रुपए से लेके 20-25 लाख तक आपका खर्चा जा सकता है, सारे दांत अगर आपको फिक्स में बिठाने हैं। ये हो गई फिक्स दांतों की बात। अभी आते निकालने पहनने वाले दांतों पे, डेंचर्स, या फिर हमने बहुत अपने दादा दादी को वगैरह देखा होगा पहनते हुए, निकालते हुए, वो निकाल के डब्बे में रखते हैं दांत, तो वो चीज आज की तारीख में ज्यादातर आउटडेटेड हो चुकी है। वो चीज वही पुरानी जनरेशन ही पहनना चाहती है जो पहले से पहन रहे हैं, लेकिन वो चीज का ड्रॉबैक बहुत सारा है। एक, जैसे हमने दांतों के ऊपर फोर्स की बात की थी, 120 टू 130 न्यूटन सेंटीमीटर का प्रेशर रहता है, डेंचर में आपको प्रेशर रेस्टोर होता है 5 से 15 का।
1: बहुत कम है,
0: बहुत कम है। वही हम लोग इम्प्लांट के साथ रेस्टोर कर पाते 110 से 115 तक।
1: इक्विवेलेंट है,
0: ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। तो इसके लिए डेंचर पे आप बहुत सारी चीजें नहीं खा पाते हो।
1: पर इम्प्लांट बहुत महंगा होता है।
0: इम्प्लांट बहुत महंगा होता है
1: जी,
0: डेंचर उसके मुकाबले काफी सस्ते होते हैं।
1: तो कुल मिलाकर डॉक्टर साहब, आज की इस पूरी बातचीत का जो सबक है वो ये है कि दांत बहुत बेशकीमती हैं, और जैसे कि आपने कहा कि चूंकि मुफ्त में मिले हैं तो लोग उनकी केयर, उनकी कदर नहीं करते।
0: Exactly.
1: तो रोजमर्रा की स्थिति में इन दांतों को बचाकर रखना जरूरी है। अब अगर मैं आपको कहूं लास्ट में एक वन लाइनर दे दीजिए अपने मरीजों को, सुनने वालों को, तो आप वो दांतों की केयर के लिए क्या वन लाइनर देंगे?
0: स्माइल प्लीज। स्माइल प्लीज क्यों? क्योंकि दांत अच्छे हैं तो आप खुल के स्माइल भी करोगे, खुल के स्माइल करोगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच सर।
2: ये थी जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश घुगे से यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गली।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
5: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: संबंध
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। साथ ही साथ नए महीने जून की आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: मौसम चाहे जैसा हो, मन में उम्मीद की धूप हमेशा खिली रहनी चाहिए। बहुत खूबसूरत विचार है, आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद।
1: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कोटकुटिया नायक, पद्मलोचन मोहंती, अभिराम साहू, सत्यजीत नायक और साई प्रसाद नायक जी का।
2: रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा।
1: और ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश, धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा जी ने लिखा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं जी? आशा करते हैं आप सकुशल होंगे। आज बहुत दिनों बाद आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र भेज रहे हैं। काम की कुछ व्यस्तताओं के कारण आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र नहीं भेज पा रहे थे, लेकिन हम लोग नियमित रूप से आपका उमंग कार्यक्रम सुन रहे थे। उमंग कार्यक्रम में इन दिनों राग रस बरसे कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। धन्यवाद इस कार्यक्रम को उमंग कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। आपने संगीत प्रेमियों की खुशी को दोगुना बढ़ा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जेल रोड कानपुर से फातिमा वली बेलदार, सरफुद्दीन वली बेलदार, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम बेलदार जी का।
2: खेरागढ़ राजलालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे।
1: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्डखे, नंदा बोर्डखे, हनुमान बोर्डखे और उत्तम जामदाड़े जी।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए।
1: और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ है?
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका का शीत मरुस्थल।
1: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
2: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में सकुरा कहते हैं।
1: और अब हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है?
2: ट्यूलिप फूल मूल रूप से कजाकिस्तान का है। यहाँ से ये तुर्की पहुँचा और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया।
1: और फिर हमने आपसे पूछा था श्रोताओं, रजनीगंधा फूल रात में ही अधिक खुशबू क्यों देता है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। प्रकृति ने रजनीगंधा फूलों को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए बनाया है। रात को इस फूल के अंदर का सुगंधित तेल बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण रात्रि बेला के कीट पतंगे इस फूल की ओर आकृष्ट होते हैं।
1: हमारा अंतिम प्रश्न था, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
2: इसका उत्तर है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था?
1: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, एक्स, फेसबुक

0: और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आज का हमारा पहला कार्यक्रम है श्रोता संवाद। चर्चा का विषय है समावेशी शिक्षा।
0: यह कार्यक्रम उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण है, जिसे हम CIET NCERT और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की जाने वाली डिजिटल व अन्य पहलों के बारे में जानकारी देते हैं। आज की चर्चा की विषय विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। श्रोता संवाद।
1: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने हमारा विशेष मासिक रेडियो संस्करण श्रोता संवाद प्रसारित होता है, जिसमें हम जानकारी देते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और CIET NCERT द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही विभिन्न पहलों पर। इस क्रम में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। आप CIET के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्ष हैं। तो प्रोफेसर कौशिक, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: हमारे श्रोता ये जानने के लिए हमेशा बहुत उत्सुक रहते हैं कि श्रोता संवाद में हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा। तो आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं?
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो अक्सर आपको और मुझको छूता तो है, हम देखते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम झिझक जाते हैं इस पर बातचीत करने में। आज हम बातचीत करेंगे समावेशी कक्षाओं की, समावेशी शिक्षा की।
1: क्या बात है। तो मेरा पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से ये है कि समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? क्या इसे हम समता मूलक शिक्षा भी कह सकते हैं?
2: इसको हम समता मूलक शिक्षा तो शायद नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी को सम दृष्टि से देखना।
1: जी,
2: तभी तो वो समावेशी शिक्षा है, सबको साथ लेकर के चलना। लेकिन जहां हम बात करते हैं समता मूलक, मतलब हर एक की विशिष्टता को, हर एक की आवश्यकता को पहचान देना, हर एक की आवश्यकता को समझना और उसके अनुरूप उसकी पूर्ति करना।
1: जी,
2: अब ये विद्यालयों में, हमारे कक्षा कक्ष में कैसे हो सकती है, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं।
1: जी,
2: आप ये समझिए कि समावेशी कक्षा के या समावेशी शिक्षा के प्रावधानों में आता है कि सबको समान तरह की पुस्तकें देना, सबको समान तरह का खाना देना मिड डे मील के अंतर्गत, या सबको समान तरह की आप यूनिफॉर्म देते हैं। ठीक है
1: जी।
2: अब अगर कोई विद्यार्थी मेरी कक्षा में ऐसा है जो देख नहीं सकता या जिसको देखने में दिक्कत है, तो क्या होगा? लेकिन मैं तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत काम कर रही हूँ, तो मुझे तो उसको मुद्रित या प्रकाशित या छपी हुई किताबें ही देनी है।
1: जी,
2: लेकिन वो विद्यार्थी जो नहीं देख पा रहा, उसका क्या? उसके लिए तो वो किताबें किसी काम की नहीं है। यहाँ पर मुझे क्या करना है? यहाँ मुझे समतामूलक शिक्षा के सिद्धांतों का पालन करते हुए मैं उनके लिए ऐसी किताबें दूं जो या तो वो सुन ले, यानी ध्वनि के रूप में हो किताबें, रिकॉर्डेड हो,
1: जी,
2: या मैं उन्हें ऐसी किताबें दूं जो ब्रेल में हो, जिनको वो छू करके पढ़ सकें, या एक तीसरा स्वरूप हो सकता है कि मैं उन्हें डेजी में भी किताबें दूं, जो भी ध्वनि आधारित किताबें होती।
1: जी,
2: समतामूलक शिक्षा में हम क्या करते हैं? हम प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम तब उसको पूर्ति करते हैं। और समावेशी शिक्षा में हम क्या करते हैं? सबको सम दृष्टि, एक समान दृष्टि से देखते हैं। यानी अगर हम एक को अगर हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो पूरी कक्षा को हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो वहां व्यक्तिगत आवश्यकताओं का उतना ज्यादा ध्यान हम नहीं दे पाते हैं।
1: जी, आपने बहुत ही विस्तार से हमें बताया कि समावेशी शिक्षा और समता मूलक शिक्षा में क्या अंतर है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके इतिहास की। प्रोफेसर भारती, हमें अब ये बताएं कि भारत में समावेशी शिक्षा की शुरुआत कब हुई?
2: सबसे पहला जिक्र विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा का आता है हमारे कोठारी कमीशन में, जो 1964 का जो शिक्षा आयोग है, जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं।
1: जी,
2: इस कमीशन में बातचीत तो की गई थी कि हमें दिव्यांगजन विकलांगजनों को हमें शिक्षा देनी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी।
1: जी,
2: क्या इन्हें सामान्य विद्यालयों में, मुख्य धारा विद्यालयों में बिठा करके पढ़ाना है, या इनके लिए अलग से कुछ हमें एक विद्यालय खोलने होंगे। लेकिन हाँ, जिक्र जरूर किया गया था। तो शुरुआत हमने किया कि ठीक है, इनके लिए हम कुछ अलग से विद्यालय बनाते हैं, वहां हम इनको पढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये विद्यार्थी भी अंततः हिस्सा तो हमारे ही समाज का बनेंगे। तो एक पहल छोटी सी ये की गई कि इन विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों से निकाल करके कुछ समय के लिए मुख्य धारा विद्यालयों में लाया गया, ताकि

0: दोनों तरह के विद्यालयों के बच्चे आपस में बातचीत कर सकें और घुल मिल सकें और एक दूसरे को अजूबा न समझें। विशेष विद्यालयों में पाठ्यचर्या भी विशेष थी, शिक्षक भी विशेष थे और बच्चे भी हमारे विशेष आवश्यकता वाले थे। तो जब ये हम मुख्य धारा में इनको कुछ समय के लिए लेके आए तो ये हमारा एक प्रयोग कुछ आंशिक रूप से सफल हुआ
1: जी।
0: उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या किया, कुछ विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को हमने विद्यालय से पूर्व उनकी पूर्ति करने की कोशिश की और फिर उन्हें मुख्य धारा विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं से समावेश करना उनका शुरू किया। इसमें भी कुछ सफलताएं मिली, कुछ विफलताएं मिली, लेकिन सफलताओं से सीख करके आगे बढ़े और आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम कहते हैं कि हर बच्चे को मुख्य धारा विद्यालय में दाखिला दे। इसीलिए हम जीरो रिजेक्शन पॉलिसी अपनाते हैं कि एडमिशन में हमें सभी को दाखिला देना ही है। इसीलिए आज हमारा हर एक विद्यालय समावेशी विद्यालय है।
1: जी प्रोफेसर भारती, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में पढ़ाने की बात की है। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा के पूरे परिदृश्य को बदल दिया है।
0: बिल्कुल।
1: आज हम विशेष रूप से आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा के मौलिक सिद्धांत क्या क्या हैं।
0: हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारे शिक्षा के परिदृश्य को बहुत अच्छी तरह से परिवर्तित किया
1: जी।
0: ठीक है। इसने मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में तो बहुत परिवर्तन किए ही हैं, साथ ही साथ जो समावेशी शिक्षा की हमारी परिकल्पना है
1: जी,
0: उसमें भी बहुत बदलाव किए हैं। जैसे अभी तक हम समझते थे कि समावेशी शिक्षा का मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजन या विकलांग शिक्षार्थियों से जुड़ी हुई है या उन विद्यार्थियों से जुड़ी हुई है जो अलाभान्वित वर्गों या क्षेत्रों से आते हैं
1: जी।
0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारी इस अवधारणा को और व्यापक और विस्तृत स्वरूप दिया है
1: जी।
0: इसने सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूहों की पहचान की है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो इसमें 5 उपसमूह आते हैं
1: जी।
0: सबसे पहला उपसमूह इसमें लिंग के आधार पर है, जिसमें हम जेंडर आधारित आवश्यकताओं को पहचानते हैं और उनकी पूर्ति विद्यालयों में कैसे की जाए इस पर सोच विचार करते हैं
1: जी।
0: दूसरा जो हमारा उपसमूह है वो ऐसा उपसमूह है जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों से आता है या वहां से संबंधित रखता है। विषम भौगोलिक परिस्थितियां जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से आता है, मरुभूमि से आता है या ऐसी जगहों से आता है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, विद्यार्थियों को अपने विद्यालयों तक पहुंचने में अतिरिक्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है
1: जी।
0: तो वहां पर विद्यालय कैसे सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, ये हमारा दूसरा उपसमूह है
1: जी।
0: तीसरा उपसमूह हमारा सांस्कृतिक परिवेश को लेकर के है
1: जी।
0: सांस्कृतिक परिवेश कैसे, इसमें हमारे ऐसे उपसमूह में लोग आते हैं जो जनजातीय क्षेत्रों से हैं, आदिवासी क्षेत्रों से हैं या अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित हैं
1: जी।
0: इन उपसमूहों के छात्रों को भी विशेष आवश्यकताएं हैं, उनकी पाठ्यचर्या से संबंधित, उनके दिनों दिन की आवश्यकताओं और रहन सहन से संबंधित, जिनका पाठ्यचर्या से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, तो इन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक चौथा उपसमूह है जो है हमारा आर्थिक रूप से कमजोर समूह, हमें दोनों ही जगहों पे मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलता है और शहरी क्षेत्रों में भी मिलता है, तो इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है
1: जी।
0: पांचवा उपसमूह इसमें आता है जो है विकलांगताओं का या विशेष आवश्यकताओं का, जिनको हम पहले से भी पहचानते हैं
1: जी।
0: इसमें NEP 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकलांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से अपना समर्थन देती है और इस 2016 के अधिनियम में 21 तरह की विकलांगताओं या दिव्यांगताओं को पहचाना जाता है। तो हम इन पूरी 21 तरह की दिव्यांगताओं के सकारात्मक शैक्षिक समावेशन पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में
1: जी।
0: इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है वो है भारतीय सांकेतिक भाषा
1: जी।
0: पहली बार एक सरकारी दस्तावेज में भारतीय सांकेतिक भाषा को भाषा का एक औपचारिक दर्जा दिया गया और ये भी कहा गया कि जो भी हमारे शिक्षण अधिगम सामग्री है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राजकीय स्तर पर हो, दोनों ही स्तरों पर यह सामग्री सांकेतिक भाषा

0: में भी उपलब्ध कराई जाए। तो ये बहुत दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हमारी दृष्टि को बहुत व्यापक किया है।
1: जी, आपने अभी सांकेतिक भाषा की बात की, तो हमारे श्रोता जरूर ये जानना चाहेंगे कि सांकेतिक भाषा क्या है और समावेशी शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है।
0: सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा जहां आप बोल करके नहीं बातचीत करते हैं
1: जी।
0: एक ऐसी भाषा जहां आप देख करके हाव भावों से, संकेतों से पहचानते
1: जी।
0: हैं। जैसे आपको प्यास लगी है लेकिन आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां बहुत शोर शराबा हो रहा है, आप चाहे जितना मर्जी चिल्ला करके बोले क्या होगा, कोई आपकी बात नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर आपने पानी पीने का इशारा किया
1: जी,
0: तो जो देख रहा है वो समझ जाएगा ना कि भाई आपको पानी पीना है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन ये तो बात हुई एक विशेष स्थिति की
1: जी।
0: आप सोचिए, आपके हमारे बीच में ऐसे लोग भी तो हैं जिनको सुनाई कम देता है
1: जी,
0: या जिनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता, और ये स्थिति शायद उनकी जन्म से है
1: जी।
0: अच्छा, अब ये लोग क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि सुनाई नहीं देता तो वो बात नहीं करना चाहते, अपने विचार नहीं रखना चाहते, उनको समझ नहीं आ रहा है। तो उनके लिए जो भाषा है वो है संकेतों की भाषा
1: जी।
0: अब ये संकेत हर जगह के अलग हो सकते हैं। भारत में अगर सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो है भारतीय सांकेतिक भाषा
1: जी।
0: अगर आप अमेरिका में जाकर के कुछ सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो अमेरिकन सांकेतिक भाषा हो जाती है
1: जी।
0: दोनों भाषाओं में अंतर है, और ये अंतर उस तरीके से है जिस तरीके से आप अपने हाथों का, अपनी उंगलियों का या अपने हाव भावों का इस्तेमाल करते हैं। तो हर देश की अपनी एक सांकेतिक भाषा है। और आपको यहाँ ये जानकर आश्चर्य होगा, जैसे संज्ञा शब्द होते हैं हमारी बोलचाल की भाषा में, मौखिक भाषा में, बिल्कुल उसी तरह से, उदाहरण के लिए लेते हैं गणपति का संकेत
1: जी।
0: गणपति का संकेत मंगलवार को दर्शाता है महाराष्ट्र में
1: जी,
0: ठीक है, लेकिन मंगलवार को दर्शाएगा हनुमान जी की गदा का संकेत कहाँ? उत्तरी भारत में।
1: बिल्कुल।
0: तो ये संकेत भी हमारे अलग अलग जगह पे अलग अलग आते हैं
1: जी।
0: तो इसीलिए भारतीय सांकेतिक भाषा की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी उतनी ही विविधता है जितनी की किसी और मौखिक भाषा में है
1: जी। ये तो हुई हमारी सांकेतिक भाषा के बारे में जानकारी और समावेशी शिक्षा के बारे में जानकारी। तो अब हमारे श्रोता विशेष रूप से ये जानना चाहेंगे कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी यानी CIET NCERT द्वारा क्या क्या पहलें की गई हैं।
0: जी देखो, सांकेतिक भाषा में भी हम बहुत काम कर रहे हैं
1: जी।
0: जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिगम सामग्री बनेगी, तो हमारी जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं उनको हम सांकेतिक भाषा के वीडियोज में हम परिवर्तित कर रहे हैं
1: जी।
0: लेकिन इन वीडियोज में ऑडियो भी है
1: जी,
0: और इन वीडियोज में सांकेतिक भाषा तो है ही है, साथ ही साथ आपकी पाठ्य पुस्तक का पेज भी है
1: जी,
0: ताकि कोई भी छात्र, चाहे उसे सांकेतिक भाषा आती हो या नहीं आती हो, अपने साथी के साथ बैठ करके वो वीडियो देख सके। इसके अलावा CIET NCERT सभी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप भी बना रही है, जो बहुत सरलता से CIET की वेबसाइट पर उपलब्ध है
1: जी।
0: इसके अलावा समावेशी कक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर रोज दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक हमारा एक विशेष लाइव सत्र हर DTH चैनल पर प्रसारित होता है। इस लाइव सत्र में हम क्या करते हैं? इस लाइव सत्र में हम एक कक्षा, एक विषय, एक पाठ्य पुस्तक और एक पाठ लेकर के हम विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, इस पाठ की सहायता से आप ये बताइए कि आप कैसे इस पाठ को समावेशी कक्षाओं में सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए
1: जी
0: आप पढ़ा सकते हैं। और जब आप आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो समावेशी कक्षा है, लेकिन सिद्धांत आपको समतामूलक अपनाना है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को आपको ध्यान में रखना है। तो एक हमारी ये जाती है सीरीज
1: जी।
0: इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने विद्यालयों को किस तरह से अवरोध मुक्त बना सकते हैं
1: जी,
0: उसके लिए हमारे पास है प्रिया सुगम्यता योद्धा। अब ये प्रिया सुगम्यता योद्धा क्या है? ये एक छोटी सी कॉमिक बुक है जो बहुत सरलता से समझाती है कि सुगम्यता का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आप सीढ़ियां हटा करके रैंप बना लें
1: जी,
0: सुगम्यता का मतलब यह भी है कि आपकी जो कक्षा है उसका दरवाजा थोड़ा सा बड़ा हो
1: जी,
0: आपका जो सभागार है उसके मंच तक पहुंचने के लिए

0: ये सीढ़ियों के साथ रैंप हो,
1: व्हीलचेयर
0: आसानी से पहुंच जाए।
1: जी।
0: आपके विद्यालय में कौन सी कक्षा कहाँ है, कौन सी प्रयोगशाला कहाँ है, उसका एक मानचित्र भी कहीं उपलब्ध हो।
1: जी।
0: आपकी विद्यालय में टेक्टाइल पाथ हो, टेक्टाइल पाथ क्या, आपने मेट्रो में सफर तो किया ही होगा।
1: जी जी।
0: जब आप मेट्रो स्टेशन पर होते हैं तो आपने देखा होगा वो पीली टाइलें।
1: बिल्कुल।
0: पीली टाइलें कैसी हैं? उनकी विशेषता यह है कि आप अपने जूते पहने हुए भी उनको महसूस कर सकते हैं।
1: जी।
0: उनके उभारों को महसूस
1: बिल्कुल
0: कर सकते हैं, मतलब वो स्पर्शनीय टाइल हैं।
1: जी।
0: ये स्पर्शनीय टाइल बताती हैं कि कहाँ रास्ता है, कहाँ इकट्ठा होना है हमें।
1: जी।
0: तो उस तरह की टाइलें हमारे विद्यालयों की संरचना को भी बहुत सुगम्य बनाती हैं।
1: जी।
0: इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल हमारी CIT NCERT की है, वो है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में पहचानी गई सभी 21 तरह की दिव्यांगताओं को विद्यालयी स्तर पर पहचानने के लिए एक जांच सूची बनाना, जिसको हम कहते हैं प्रशस्त। प्रशस्त हिंदुस्तान की पहली स्टैटिस्टिकली स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत जांच सूची है, जो 21 तरह की सभी दिव्यांगताओं को शिक्षकों, विशेष शिक्षकों की मदद से पहचानती है। और इसके लिए शिक्षकों का दिव्यांगताओं के बारे में विशेषज्ञ होना भी जरूरी नहीं है।
1: जी।
0: तो ये भी एक हमारी पहल है।
1: जी प्रोफेसर भारती, अभी आपने ये जानकारी दी कि NCERT की बुक्स ऑडियो बुक्स के रूप में उपलब्ध हैं, तो ये किताबें हमें कहाँ से मिल सकती हैं?
0: ये किताबें आपको बहुत सरलता से CIET के वेब पेज से मिल सकती हैं। आप CIET के वेब पेज पे जाइए, वहाँ पे ऑडियो बुक्स लिखिए तो आपको वो मिल जाएंगी।
1: जी।
0: और एक और सरल उपाय है
1: जी,
0: आजकल तो गूगल हम सबकी मदद के लिए है ही है, गूगल पर जाइए, लिखिए ऑडियो बुक CIT NCERT, आपको सीधा वहाँ उसी पेज पे ले जाएगा और आप वहाँ से ले सकते हैं।
1: जी।
0: एक चीज और भी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किताबों के लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है और CIT वेब पेज के साथ साथ आपको ये दीक्षा पर भी आराम से मिल सकती हैं।
1: जी।
0: और यह किताबें आपको NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी आपको मिल जाएंगी। तो सरलता से आप हमारी ऑडियो बुक्स को CIT की वेबसाइट से, NCERT ऑफिशियल YouTube से और साथ ही साथ दीक्षा से बिल्कुल निशुल्क, बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में आदिवासी समूहों और समाज के अन्य पिछड़े समूहों को भी शामिल करने की दिशा में NCERT की क्या पहल है?
0: बिल्कुल, आदिवासी जाति या अन्य पिछड़े समूहों को शिक्षा से जोड़ने के लिए NCERT की पहलों में सबसे मुख्य जो है वो यह है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं,
1: जी,
0: अगर आप ध्यान से देखें तो वो पाठ्य पुस्तकें पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं।
1: जी।
0: उनकी कहानियां, उनके पाठों की विषय वस्तु जनजाति समूहों, हमारे आदिवासी समूहों और अन्य पिछड़े वर्गों के परिवेश को भी दर्शाती हैं।
1: जी।
0: जिससे ये पाठ्य पुस्तकें हर बच्चे को अपनी सी लगती हैं, उससे उनमें कोई अलगाव की भावना विकसित नहीं होती है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है। और जब आप पाठ्य पुस्तकों से जुड़ते हैं तो फिर आप अपने विद्यालयों से भी जुड़ते हैं।
1: जी,
0: ये पहल हमारी यहाँ से शुरू होती है लेकिन अंत यहाँ पर नहीं है।
1: जी बिल्कुल। तो अब आज का अंतिम प्रश्न, ये भी प्रश्न मेरा दिव्यांगों से ही जुड़ा हुआ है। मेरा प्रश्न है, दिव्यांगों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कुछ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं?
0: दिव्यांगों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, जैसा हमने बीच में भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने तो बहुत सारे प्रावधानों की बात की है। उसके दो प्रावधानों पर हमने चर्चा की कि सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूह कौन से हैं, उसमें कौन से बच्चे आते हैं और भारतीय सांकेतिक भाषा की। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि प्रत्येक बच्चे की भागीदारी और उसको अपनापन या जुड़ाव महसूस हो, इस पर बहुत ज्यादा काम करना जरूरी है। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी कहती है कि व्यक्तिगत सहयोग और समर्थन दिया जाए प्रत्येक बच्चे को, तभी हम समतामूलक शिक्षा की बात करते हैं, समावेशी कक्षाओं या शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। तीसरी चीज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि आपको तकनीक और सहायक उपकरणों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ यह भी है बहुत सरल से शब्दों में कि आप दीक्षा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, आप ध्वनि पुस्तकों का इस्तेमाल कीजिए, साथ ही साथ अगर कोई बच्चा आकर के शिक्षक को कहता है

0: जी मुझे आज की कक्षा रिकॉर्ड करनी है क्योंकि मैं सही से लिख नहीं पाता हूँ या समझ नहीं पाता हूँ या ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाता हूँ, तो शिक्षकों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह भी समावेशी कक्षा प्रणाली का ही एक भाग है और सहायक उपकरणों का प्रयोग है। एक और चीज भी है इसी कड़ी में जुड़ता है, शिक्षकों का संवेदीकरण और उनकी तैयारी
1: जी।
0: मतलब शिक्षकों को आपको सेंसिटाइज करना भी जरूरी है विशेष आवश्यकताओं के प्रति, ताकि वो अपनी कक्षाओं को समतामूलक और समावेशी कक्षाओं में परिवर्तित कर सके
1: जी।
0: यह काम लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा शिक्षक और विद्यालय नहीं कर पाएगा, इस काम के लिए आपको परिवार और समुदाय का सहयोग भी लेना होगा।
1: जी।
0: जब परिवार और समुदाय शिक्षा व्यवस्था प्रणाली से जुड़ते हैं तभी तो विद्यार्थियों का समग्र विकास हो पाएगा। तो बहुत सारी चीजें हम एक साथ शुरू कर रहे हैं
1: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भारती इस उपयोगी जानकारी के लिए। इस आशा के साथ कि देश की शिक्षा व्यवस्था में समावेशी शिक्षा का भविष्य दिन प्रतिदिन उज्ज्वल होता जाएगा, हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप हमारे श्रोताओं को कोई विशेष संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहिए, ये आपके और हमारे आसपास ही हैं। कई बार हम इन्हें देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर भरता है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें इस कार्यक्रम पर आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।

0: तो हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए मुझे यानी अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: युववाणी कार्यक्रम आपण ऐकला आकाशवाणी मुंबई अस्मिता वाहिनीवरून.
1: साहित्य सौरभ या कार्यक्रमात ऐकूया मराठी साहित्याला ग्रंथालयाचं योगदान याविषयी एक विशेष रूपक. लेखन आणि निवेदन मकरंद जोशी.
2: अभिरूप न्यायालय, परिसंवाद, चर्चासत्र, लेखकांच्या मुलाखती अशा वेगवेगळ्या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून मराठी ग्रंथसंग्रहालयाने कायम पुस्तकं आणि वाचक यांना जवळ आणण्याचं काम केलं आहे. बदलत्या काळानुसार आपली सेवा अधिकाधिक विस्तारित करण्यासाठी मराठी ग्रंथसंग्रहालयाने आपल्या नौपाडा शाखेत डिजिटल लायब्ररी सुरू केली आहे. मराठी ग्रंथसंग्रहालयाने राष्ट्रीय डिजिटल लायब्ररीचं सदस्यत्वही मिळवलं आहे. असं सदस्यत्व मिळवणारं हे महाराष्ट्रातलं पहिलं सार्वजनिक ग्रंथालय आहे.
1: सोमवार दिनांक 1 जून 2026 रोजी संध्याकाळी 6:30 न्यूज ऑन AIR ॲपसह आकाशवाणी मुंबईच्या अस्मिता वाहिनीवर.
0: संध्याकाळचे 6:00 आहेत. आता सुरुवातीला हिंदीतून आणि
3: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा. थोड़ी ही देर में होंगी समाचार.
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक रक्षा सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की. द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया. दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की. विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की.
5: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया. कुल मिलाकर राष्ट्रपति की

0: यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि इस समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल वस्त्र, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता मिलेगी।
3: I am confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
3: Of our shared future.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। LPG आपूर्ति के संबंध में उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिन में 1,21,00,000 से अधिक बुकिंग प्राप्त हुई, जबकि 1,22,00,000 से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल RN रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। शपथ लेने वाले सदस्यों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस रॉय, शंकर घोष और अन्य शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतिव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। प्रख्यात पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का अंतिम संस्कार आज मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। उनका निधन कल रात मुंबई में हुआ था। हांगकांग में एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 19 पदक जीते हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: तराने नए पुराने,
6: तो लीजिए साथियों, इन समाचारों के बाद हम फिर हाजिर हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने में विविध भारती से। आइए अब आपको सुनाते हैं कमाल खान की आवाज में समीर का लिखा ये गीत, जिसकी धुन बनाई है जतिन ललित ने। फिल्म का नाम प्यार किया तो डरना क्या।

I love you all. दोस्तों, ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से।

सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में आपने ये गीत सुना फिल्म रहना है तेरे दिल में से। समीर ने इस गीत को लिखा था और हैरिस जयराज का संगीत। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कुमार सानू का गाया ये गीत, फिल्म का नाम फिर तेरी कहानी याद आई। कतील शिफाई के बोल हैं, अनु मलिक का संगीत।

श्रोताओं, हमें खेद है ये गीत हम आपको नहीं सुनवा पा रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला ये गीत फिल्म खामोशी द म्यूजिकल से। उदित नारायण के बोल हैं, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं, जतिन ललित का संगीत, आवाज उदित नारायण की।

दिल है कि मानता नहीं, इस फिल्म का गीत सुनिए अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में। फईज अनवर के बोल और नदीम श्रवण की धुन।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: इसी के साथ आज का तारा नए पुराने कार्यक्रम संपन्न होता है।
4: तराने नए पुराने।
3: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और आइए अब आपको देते हैं जानकारी आज दिन भर और कल आज के शेष और कल दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की झरोखा के अंतर्गत। आज के इस झरोखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे संध्या रंजन 6:35 पर। संगीत सरिता, इस कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला सिने संगीत में तबले का दौर का भाग 1, कलाकार तबला वादक रविंद्र खासनीस, प्रस्तुति मनीषा जैन की। जयमाला कार्यक्रम होगा शाम 7 बजे और 7:45 पर। स्मृतियों के स्वर में सुनिए सेवानिवृत्त सहायक निदेशक श्रीमती अनिता वेस्ले पटेल से ममता सिंह की बातचीत का भाग 1। हवा महल, इसमें

प्रिय प्रहसन इंटरव्यू, लेखन वीएम आनंद का, निर्देशक मुख्तार अहमद। चित्रलोक कार्यक्रम में आनंद लीजिएगा नए गीतों का। रात्रि 8:15 पर 8:45 का समय होगा समाचार संध्या का। 9:00 प्रस्तुत होगा कार्यक्रम आपके लिए, और 9:30 पर सुनना ना भूलें आज के फनकार, जो कि केंद्रित होगा अभिनेत्री नरगिस पर। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। छाया गीत कार्यक्रम का समय होगा रात्रि 10:00। आलेख और स्वर जयंत पात्रिकर का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात्रि 10:30 से सुनिए कार्यक्रम ढलती जाए रात, और रात 11:00 रंग तरंग। ये थी जानकारी आज शेष कार्यक्रमों की जो आज प्रसारित होंगे, और अब देते हैं जानकारी कल दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। कल सुबह 6:00 होंगे हिंदी में समाचार, 6:05 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। झरोखा के अंतर्गत आप सुन सकेंगे कार्यक्रमों की रूपरेखा कल सुबह 6:30 पर, और 6:35 पर श्री रामचरितमानस का भाग 207। संगीत सरिता में सुनिए श्रृंखला सिने संगीत में तबले का दौर, इसका भाग 2। कलाकार तबला वादक रविंद्र खासनी, प्रस्तुति मनीषा जैन की। कार्यक्रम का समय होगा सुबह और शाम 6:45। सुबह 7:00 सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, और 7:30 पर युगल गीतों का कार्यक्रम हम है राही प्यार के। समाचार प्रभात का समय होगा सुबह 8:00, और त्रिवेणी कार्यक्रम सुनिए सुबह 8:15 पर, और दिन में 2:00। आलेख राजेश झा का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सुबह 8:00 8:30 पर आनंद लीजिएगा चित्रलोक कार्यक्रम में नए गीतों का, और सुबह 9:30 का आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार मणिरत्नम पर। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। रंग तरंग कार्यक्रम सुनिए दिन में 11:00, दिन में 12:00 हिंदी में समाचार, और 12:05 पर यादों की महफिल कार्यक्रम। दिन में 1:00 तय कीजिए सुरीला सफर विविध भारती के उद्घोषकों के साथ। फेसबुक कमेंट्स द्वारा आप इस कार्यक्रम में जुड़ सकेंगे। 2:15 पर दोपहर समाचार, और 2:30 पर सुनिए सदा बहार नगमे। सखी सहेली कार्यक्रम का समय होगा दिन में 3:00, और याद रखिएगा श्रोताओं कल है 2 जून, यानी कि हमारी सखी सहेली कार्यक्रम का बर्थडे। विशेष सखी मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी से ममता सिंह की बातचीत लाइव जरूर सुनिएगा। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। पिटारा के अंतर्गत सुनिए बांसुरी वादक पारसनाथ से यूनुस खान की बातचीत का भाग 2। 5:30 कार्यक्रम तराने नए पुराने, 6:00 हिंदी में समाचार, और झरोखा 6:30। संध्या रंजन होगा 6:35 पर, और जयमाला कार्यक्रम कल 7:00। 7:45 पर पॉप एक्सप्रेस सुनिएगा इंद्रधनुष में। साथ ही होगा हवा महल, झल की ससुराल का नौकर, लेखन संतोष श्रीवास्तव, निर्देशक राकेश ढोंडियाल। चित्रलोक कार्यक्रम रात 8:30, और 8:15 पर रात्रि में कल सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम आपके लिए कार्यक्रम होगा रात 9:00, और आज के फनकार रात्रि का कार्यक्रम केंद्रित होगा निर्माता निर्देशक अभिनेता राज कपूर पर। प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। छायागीत का कार्यक्रम रात 10:00, 10:30 ढलती जाए रात, और 11:00 रंग तरंग। ये थी जानकारी कल दिनभर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की, और अब कार्यक्रम संध्या रंजन का ये सुनिए पहला गीत।

0: श्रोताओं नमस्कार। फिल्म संगीत के इतिहास को पलटे तो आप पाएंगे कि तबला इसमें पूरी चमक के साथ मौजूद है। इसलिए संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से हम एक नई श्रृंखला का आरंभ कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है सिने संगीत में तबले का तौर। इस श्रृंखला के लिए हमारे विशेष अतिथि हैं आकाशवाणी परिवार के आत्मीय सदस्य और आकाशवाणी के प्रथम श्रेणी के संगीतकार श्री रविन्द्र खासनीस। इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी जयंत पात्रीकर। सुनते हैं इस श्रृंखला की पहली कड़ी।
1: संगीत सरिता के सुधी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, कोई पूछे कि हमारे देश में रेडियो पर सबसे अधिक क्या सुना जाता है, तो वो है संगीत, और उसमें भी फिल्म संगीत के सुनने वालों की बहुतायत है। हमारा सिने संगीत संस्कारित है शास्त्रीय संगीत से। सिने संगीत में तबले का दौर, इस श्रृंखला का आज शुभारंभ हो रहा है। हमने आमंत्रित किया है श्री रविन्द्र खासनीस जी को, जो आकाशवाणी के अश्रेणी संगीत रचनाकार हैं, आला दर्जे के तबला वादक हैं और हमारे अपने हैं आकाशवाणी परिवार के आत्मीय सदस्य। रविन्द्र जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी धन्यवाद।
1: इससे पहले कि हमारी चर्चा शुरू हो, हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दें कि आकाशवाणी में से किस तरह से आपका जुड़ाव हुआ, कैसे आप आकाशवाणी में आए।
2: जी, मैं बचपन से ही संगीत से जुड़ा हूँ और मैंने तबला सीखने की शुरुआत जो है वो मेरे 6 साल के आयु में की है।
1: जी,
2: मैं शुरू में आकाशवाणी का चाइल्ड आर्टिस्ट था, उसके बाद में मैं आकाशवाणी का ही यूथ आर्टिस्ट बना।
1: क्या बात है।
2: और 1988 में मैंने यूपीएससी की एग्जाम देकर आकाशवाणी में मैं कार्यक्रम अधिशासी के रूप में मैंने ज्वाइन किया। मैं तो कई आकाशवाणी केंद्रों पर काम कर चुका हूँ महाराष्ट्र में।
1: जी,
2: क्योंकि संगीत से हमारा जुड़ाव था और हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज करते आए थे संगीत की, तो आकाशवाणी में आने के बाद में मैंने आकाशवाणी की म्यूजिक कंपोजर की ऑडिशन दी। कहते हैं कि अगर आपने हुनर है तो वो हुनर दिखाने के लिए आकाशवाणी जैसा और कोई व्यासपीठ है नहीं, तो आकाशवाणी ने तो मुझे बचपन से ही बहुत कुछ दिया। और उसी में जब नौकरी करने आया तब मैंने आकाशवाणी में म्यूजिक कंपोजर की ऑडिशन दी और मैं प्रभु की कृपा से ग्रेड 1 म्यूजिक कंपोजर हूँ। कई सारे म्यूजिकल फीचर हमने आकाशवाणी के लिए किए। उसके बाद मैं आकाशवाणी के सॉन्ग ऑफ द मंथ में कई सारे गानों में संगीत दिया।
1: क्या बात।
2: और बहुत सारी रचनाएं आकाशवाणी के लिए किए हैं। तो ये मेरा संगीत का जो बचपन से जो प्रवाह शुरू हुआ तो आज तक लगातार जारी है।
1: क्या बात है। तो आज हमारे अपने एक अधिकारी है मगर एक कलाकार के रूप में आज श्रोताओं के सामने हैं, हमारे बीच उपस्थित है। आप तो अपनी श्रृंखला की ओर बढ़ते हैं। फिल्म संगीत में, सिने संगीत में तबले का जो दौर है उसकी बात होगी और समय के अनुसार इसमें जो परिवर्तन आया है उस पर हम बात करेंगे।
2: जी,
1: सबसे पहले हम जानना चाहेंगे रविन्द्र जी कि तबला ये जो वाद्य है इसका जन्म कैसे हुआ और इसके जन्म से जुड़ी कोई कहानी होगी तो उसके बारे में भी कृपया हमारे श्रोताओं को बताइए।
2: हम लोग अगर हमारे पुराने स्कल्पचर देखते हैं
1: जी,
2: तो उसमें ज्यादातर हमें यही दिखता है कि मृदुंग या पखावज
1: जी
2: ये वाद्य हमारे पास थे और हमारे यहाँ पर ध्रुपद धमार गायकी होती थी।
1: जी जी।
2: फिर जब अकबर बादशाह के जमाने में ख्याल गायकी का विस्तार होने लगा तो उसमें ये होता था कि ख्याल का जो गायन है वो मृदु शैली में है और उसके ऊपर पखावज के बोल भारी पड़ते थे।
1: जी।
2: तो इसलिए शायद तबले के जन्म की कथा जो है वहां से शुरू ही हुई है। कहते हैं कि अमीर खुसरो साहब जो है उन्होंने पखावज को विभाजित किया, मतलब अच्छा, दो भागों में उसका विभाजन किया और उसका जो आकार है वो तबले का आकार उसका

0: दिया
1: जी,
0: तो बाया और दाया ऐसे उसके दो भाग हुए। और कहते हैं कि वो जब तोड़ा तब बोला,
1: हाँ,
0: तो तब बोला से वो तबला शब्द अच्छा। वहां से आया है। अब ये तो मतलब कहानी है, इस पर किसका कितना विश्वास होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन तबला वाद्य जो है ये वाद्य दाया बाया दोनों का मिला हुआ वाद्य है
1: जी।
0: और उसने पखावज की तुलना में उसके जो बंद बोल है वो ख्याल गायकी के लिए बहुत अच्छे उसके साथ में मिल गए
1: जी,
0: और इसलिए ख्याल गायन में तबला संगति का प्रचलन होने लगा।
1: पखावज के जो बोल होते हैं रविंद्र जी,
0: हाँ,
1: और तबले के बोल,
0: हाँ, हाँ,
1: इनमें अंतर क्या है?
0: वैसे पखावज जो है वो खुला वाद्य है
1: जी, जी,
0: मतलब पखावज पे वो धा जो है वो खुला धा, धा
1: खुला बाज कहा जाता है।
0: धा जी, इट धा दिन ता इट कता गदी गाना धा, तो पखावज जो है वो खुला वाद्य है, उस पे खुले बोल बजते हैं
1: जी जी।
0: अब पखावज का जो धा खुला बजता है वही धा तबले पर बंद है वो धा। तो तबले की जो बोल है वो बंद बोल है
1: जी,
0: और पखावज के खुले बोल,
1: खुले बोल होते हैं।
0: वैसे शुरू में हमारे पास पखावज था, तो पखावज का जो साहित्य था वो बहुत विपुल साहित्य है पखावज का
1: जी,
0: तो उसी साहित्य को लेकर तबले का भी साहित्य बढ़ने लगा,
1: इसका भी एक अलग शास्त्र बना।
0: बिल्कुल शास्त्र जी, बना जी। तबले के घराने बने, जैसे दिल्ली, अजराड़ा, पंजाब, बनारस, लखनऊ, ऐसे तबले के घराने बने।
1: हाँ हाँ,
0: और उसमें भी बहुत शैलियां विकसित हुई
1: जी,
0: और कई सारे तबले के मतलब स्वतंत्र वादन के कार्यक्रम और तबला संगत, ये दोनों चीजें उसमें आ गई
1: जी जी। इसमें भी कुछ महनीय कलाकारों ने बोल निकालने का यानी तबले से बोल बजाने का अपना अपना तरीका विकसित किया है।
0: बिल्कुल, मतलब घराना जो होता है वो उसी विशेषता से लेकर होता है। घराने जो तबले के है
1: जी,
0: उनके जो बोल है
1: हाँ,
0: उसके वो बोलों के आधार पर उसका घराना पहचाना जाता है। तो ऐसे तबले के घराने और उनका बोल और उनका पूरा साहित्य विकसित हुआ है
1: जी जी।
0: पखावज के जो खुले बोल है
1: जी,
0: तो एक ऐसे उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं। अब तबले पे ही उसका मतलब निकास कैसे होती है, तबले पर पखावज की निकास है ये
1: जी।
0: तो

0: तो ये पखावज का एक नमूना है कि ये खुला बोल पखावज पे बजता है। अभी ये तबले के जो बोल होते हैं वो बंद बोल है।
1: हाँ।
0: तो वो इस तरह से होते हैं।

0: वाह क्या बात।
1: हम बात कर रहे थे रविंद्र जी चौताल की
0: जी।
1: तो चौताल जिस गीत में हमें सुनने को मिलता है, ऐसा कोई गीत आपको याद आ रहा हो तो अपने श्रोताओं को सुनवाएं।
0: हाँ बिल्कुल याद आ रहा है। चौताल जो है धा धा दिन ता कीट धा दिन ता तीट कत गदी गन धा
1: जी।
0: इसमें सप्त सुरन तीन ग्राम गीत है जो चौताल में निबद्ध है। बहुत ही लाजवाब है और बहुत कम ऐसे गाने सुनने को मिलते हैं जो चौताल में मृदंग के ऊपर पखावज के ऊपर वो बजाए गए हैं।
1: आइए सुनते हैं।

0: श्री वी एम आनंद का लिखा प्रहसन सुनिए, इंटरव्यू।
1: जी हुजूर।
2: लोग इंटरव्यू के लिए आ गए?
1: जी हुजूर, बाहर उम्मीदवारों की लाइन लग रही, वो सब इसी इंतजार में है कि आप उन्हें बुलाएं और वो इंटरव्यू हो।
2: कुल कितने उम्मीदवार होंगे?
1: जी मेरा ख्याल है होंगे 40-50।
2: और उनमें उम्मीदवारनियां कितनी हैं?
1: उम्मीदवारनियां
2: मेरा मतलब है उनमें लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां?
1: लड़कियां जी, लड़की तो सिर्फ एक ही है, देखता हूँ।
2: हाँ,
1: वो तीसरे नंबर पर बैठी।
2: तीसरे नंबर पर? तो ठीक है, चलाओ इंटरव्यू।
1: चलाओ इंटरव्यू?
2: चलाओ नहीं बल्कि दौड़ाओ, मेरा मतलब है कि जल्दी जल्दी करो, एक दो उम्मीदवार को जल्दी बुलाओ।
1: बहुत अच्छा सरकार,

0: दीवार नंबर एक। चलिए।
1: गुड मॉर्निंग सर।
2: गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। आप जानते हैं कि ये इंटरव्यू किस पोस्ट के लिए है?
1: यस सर, स्टेनोग्राफर के लिए। मेरी टाइप की स्पीड 60 है सर, और शॉर्ट हैंड की स्पीड 150।
2: बस 150
1: सर, वैसे तो 170 तक भी हो जाती है।
2: मुझे अफसोस है कि हमें आप जैसे उम्मीदवारों की जरूरत नहीं है
1: जी।
2: मेरा मतलब है कि हमें ऐसे कैंडिडेट की जरूरत है जिसकी शॉर्ट हैंड की स्पीड की कोई लिमिट ना हो, बल्कि शॉर्ट हैंड उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी हो।
1: तो फिर मैं वही कैंडिडेट हूं सर जिसकी आपको तलाश है।
2: वो कैसे?
1: शॉर्ट हैंड मेरी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं, बल्कि मैं खुद शॉर्ट हैंड का एक मुजस्मा हूं। जितने उम्मीदवार इस वक्त इंटरव्यू के लिए आए हैं ना, उन सब में शॉर्ट हैंड साइज मेरा ही है। यानी कि मेरा कद सिर्फ 3.5 फीट है।
2: ओ, समझा।
1: और मेरा जन्म भी तो शॉर्ट हैंड में हुआ था
2: जी। जन्म शॉर्ट हैंड में?
1: यस सर।
2: अब समझा। तो
1: वैसे मेरा तो लव अफेयर भी शॉर्ट हैंड में हुआ था।
2: लव अफेयर भी शॉर्ट हैंड में हुआ?
1: यस सर। और लड़के लड़कियां तो कई कई साल तक छिप छिप कर मिलते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां जाकर छोले और कुलचे खाते हैं, तब जाकर कहीं उन्हें यह महसूस होता है कि उन्हें मोहब्बत हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं सरकार, फिर लड़के के रिश्तेदार या लड़की की माँ, मामी, चाची या फूफा वगैरह उनकी मोहब्बत में रोड़े अटकाने शुरू कर देते हैं। अगर मैं एक मोहब्बत की दास्तान सुनाने लगूं सरकार, तो सुबह से शाम हो जाए, और लिखने लगूं तो कम से कम 20 फुल स्केप सफे भर जाएं और दास्तानें फिर भी खत्म ना हो। लेकिन अपने केस में तो वही शॉर्ट हैंड वाला मामला। मैं एक दिन बस स्टॉप पर बस के इंतजार में लाइन में खड़ा था। मेरे आगे एक लड़की खड़ी थी, ना मैंने उसे कभी वैसे देखा और ना कभी उसने मुझे देखा। लाइन में खड़े खड़े मुझे खांसी आ गई और फिर उस लड़की को भी खांसी आ गई। बस मोहब्बत हो गई।
2: बस इतनी सी बात पर मोहब्बत हो गई?
1: मोहब्बत ही नहीं सर, बल्कि शादी भी हो गई।
2: शादी भी हो गई?
1: और वो शादी भी शॉर्ट हैंड में सर। यानी कि ना कोई ठाका ना कोई सगाई, बस यूं समझिए सरकार, चट खांसी और पटपिया। और शादी के बाद बच्चे भी हुए, तो वो भी शॉर्ट हैंड में।
2: बच्चे भी शॉर्ट हैंड में?
1: यस सर, 6 साल में 12 बच्चे।
2: ओ माय गुडनेस, 6 साल में 12 बच्चे? वो कैसे?
1: ये शॉर्ट हैंड तो बिल्कुल सिंपल है सर, यानी कि एक एक साल में एक एक जोड़ा।
2: ओ।
1: अब तो आपको यकीन आ ही चुका होगा सरकार कि जो काम बाकी के उम्मीदवार 1 घंटे में करेंगे, मैं वही काम सिर्फ 5 मिनट में कर सकता हूँ।
2: मेरा ख्याल है कि अगर मैंने आपको इस दफ्तर में मुलाजिम रख भी लिया, तो अगर इस कंपनी का दिवाला 1 साल में निकलना होगा, तो आपकी वजह से 1 महीने में निकल जाएगा शॉर्ट हैंड में।
1: जी
2: जी हाँ, अब आप जा सकते हैं। मुझे आप जैसे उम्मीदवारों की जरूरत नहीं है। अब आप शॉर्ट हैंड में, यानी कि फटाफट इस कमरे से तशरीफ ले जाएं तो बेहतर है।
1: राइट सर।
2: राधेलाल।
0: आया हुजूर।
2: दूसरे उम्मीदवार को बुलाओ।
0: जो हुकुम सरकार। उम्मीदवार नंबर 2, चलिए इंटरव्यू के लिए।
3: मैं कम इन सर।
2: आइए बैठिए। आप जानते हैं कि आप किस पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आए हैं?
3: ये सर, स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए। मेरी टाइप और शॉर्ट हैंड की स्पीड।
2: अजी, गोली मारिए टाइप और शॉर्ट हैंड की स्पीड को।
3: हाँ जी।
2: मेरा मतलब है कि हमें ऐसे उम्मीदवार की जरूरत नहीं है जिसकी लियाकत सिर्फ टाइप और शॉर्ट हैंड तक ही महदूद हो। हमें ऐसे उम्मीदवार की जरूरत है जो हाजिर जवाब हो, दिलचस्प हो। अच्छा ये बताइए, आप कितने भाई हैं?
3: हम थे तो 5 भाई, लेकिन अब सिर्फ 4 रह गए।
2: ओ, आपके 5वें भाई को क्या हुआ?
3: जी क्या बतलाऊं सरकार, उसने खुदकुशी कर ली।
2: ओह, बहुत अफसोस की बात है। खुदकुशी कैसे कर ली? मेरा मतलब है कि वो गाड़ी के नीचे आके मर गया, या दरिया में छलांग लगाकर, या जहर खाकर, या छत से कूदकर?
3: जी जी नहीं, उस बेचारे ने शादी कर ली।
2: ओह, शादी कर ली। खैर जाने दीजिए। ये बताइए कि अगर आपके घर और दफ्तर के दरमियान 2 गलियां, 3 बाजार, 4 सड़कें, 5 चौराहे और 6 मोड़ हों, तो बताइए कि आपका घर उस दफ्तर से कितनी दूर है?
4: सरकार, मेरा घर दफ्तर से कितनी भी दूर क्यों ना हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं दफ्तर हर रोज ऐन वक्त पर आया करूंगा।
2: जी। आप पहले भी किसी दफ्तर में काम कर चुके हैं?
4: अब आप एक दफ्तर की बात करते हैं जनाब, अगरचे मेरा कुल तजुर्बा 6 साल का है, लेकिन मैंने कम से कम 1 दर्जन दफ्तरों में काम किया होगा, यानी कि हर दफ्तर में 6-6 महीने।
2: सिर्फ 6-6 महीने?
4: जी।
2: इसका मतलब है कि आपका काम किसी को पसंद नहीं आया?
4: ऐसा नहीं जनाब, बल्कि मेरा काम हर अफसर ने पसंद किया, हर अफसर को मुझसे मोहब्बत हो गई,
2: और वो मोहब्बत फिर जल्दी जल्दी टूटती है।
4: जी हाँ जी हाँ, आपने वो शेर तो सुनी रखा होगा कि जिंदगी प्यार की 2-4 घड़ी होती है। एक दफ्तर में जब मैं भर्ती हुआ तो मेरी तनख्वाह 100 रुपए मुकर्रर की गई। मेरे काम से खुश होकर मेरी तनख्वाह 2 महीने 150 रुपए कर दी गई।
2: यानी कि 1 ही महीने के बाद आपकी तनख्वाह 150 कर दी गई?
4: जी जी जी जी। सिर्फ इतना ही नहीं सर, 3रे महीने 200 रुपए, 4थे महीने 250 रुपए, और 5वें महीने 300 रुपए, और 6ठे महीने

0: 350 रुपए।
1: शाबाश, इतनी तरक्की कर ली आपने और फिर भी वो नौकरी छोड़ दी, क्यों?
0: क्या करता जनाब, नौकरी तो छोड़नी थी, गुजारा जो नहीं होता।
1: ओ, गुजारा जो नहीं होता।
0: जी जी जी, क्योंकि तनख्वाह तो मुझे एक बार भी नहीं मिली।
1: समझ में आया। देखिए
0: जी,
1: आप इस दफ्तर में मान लीजिए काम कर रही
0: हैं
1: और बाहर से एक लड़की सीटी बजाती है, तो आप क्या करेंगे?
0: उसकी पहली सीटी पर तो मैं खामोश रहूंगा, क्योंकि मैं समझूंगा कि शायद वो सीटी आपको बजा रही है। उसकी दूसरी सीटी पर मैं सीटी का जवाब सीटी से दूंगा।
1: और अगर उसने इशारा करके आपको दफ्तर से बाहर बुलाया तो?
0: तो मैं उल्टा उसे इशारा करके दफ्तर के अंदर बुला लूंगा।
1: लेकिन आप ये जानते हैं कि उसके दफ्तर के अंदर आने से आप काम नहीं कर पाएंगे।
0: और अगर वो बाहर खड़ी रही तो मैं भी कैसे काम कर पाऊंगा? अब आप ही बताइए ना जनाब, अगर कोई लड़की आपके कमरे के बाहर खड़ी इस इंतजार में हो कि आप उसे बुलाएं, तो भला आप कोई काम कर पाएंगे?
1: आप जा सकते हैं।
0: अच्छा, वो अभी तो मेरी इंटरव्यू खत्म नहीं हुई ना, अभी तो आप मेरे हाजिर जवाब और दिलचस्प होने का इम्तिहान ले रहे थे। इस पोस्ट के बारे में तो आपने एक भी सवाल नहीं पूछा।
1: जो पूछना था वो मैंने पूछ लिया, अब आप जा सकते हैं। राधेलाल
2: आया सरकार।
1: बुलाओ तीसरे उम्मीदवार को, जल्दी बुलाओ।
2: जो हुक्म, तीसरे उम्मीदवार आ जाए इंटरव्यू के लिए।
3: मे आई कम इन सर?
1: यस यस, कम इन। हाउ स्वीट,
3: हाउ स्वीट।
1: मेरा मतलब है, हैव द सीट। आपका नाम?
3: मेरा नाम है मिस जलेबी वाला।
1: मिस जलेबी वाला, आप टाइप तो जानती ही होंगी।
3: टाइप? व्हाई नॉट, व्हाई नॉट।
1: और शॉर्ट हैंड भी आती ही होगी आपको।
3: शॉर्ट हैंड? व्हाई नॉट। शॉर्ट का मतलब है छोटा और हैंड का मतलब है हाथ।
1: है ना? वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट, बिल्कुल ठीक कहा आपने।
3: ये देखिए मेरे दोनों हाथ कितने छोटे छोटे।
1: हाउ लवली मिस जलेबी वाला।
3: यस सर।
1: आपकी शादी हो चुकी है?
3: जी, नहीं तो।
1: वेरी गुड, तो ठीक है। आपको ये सुनकर खुशी होगी कि यू आर हियर बाय इलेक्टेड। मेरा मतलब है सिलेक्टेड, यानी कि ये नौकरी आपको दे दी गई और आपको नौकरी पर रख लिया गया।
3: थैंक यू माय बॉस।
1: राधेलाल
2: आया सरकार।
1: बाकी के सब उम्मीदवारों से कह दो कि हमने सिलेक्शन कर लिया है, वो अब सब जा सकते हैं।
2: बहुत अच्छा सरकार।
1: मिस जलेबी वाला।
3: यस माय बॉस।
4: जनाब, मैं भी एक उम्मीदवार हूँ, इंटरव्यू के लिए आया था।
1: मैंने आपको दो बार कहलवाया है कि आप जा सकते हैं, सिलेक्शन हो चुके।
4: लेकिन बिना इंटरव्यू मुकम्मल हुए सिलेक्शन हो गई। आप मेरे टाइप का टेस्ट ले लीजिए, शॉर्ट हैंड का टेस्ट ले लीजिए।
1: टाइप, शॉर्ट हैंड? भाई मुझे इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है, आप क्यों अपना वक्त बर्बाद करते हैं और साथ में मेरा वक्त भी बर्बाद कर रहे हैं।
4: जी, फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम आप मेरी इंटरव्यू लेकर देख तो लीजिए, मैं बहुत दूर से हाजिर हुआ हूँ इतना खर्च करके।
1: अच्छी बात है, ये बात है तो फिर तैयार हो जाइए।
4: मैं तैयार हूँ जनाब।
1: आप बतला सकते हैं कि खजूर के पेड़ ऊंचे और अंगूर के पेड़ नीचे क्यों होते हैं?
4: जी जी नहीं।
1: आप जानते हैं कि नींबू खट्टे क्यों होते हैं और मिर्ची कड़वी क्यों होती है?
4: जी जी नहीं।
1: अगर गोभी का भाव 8 आने किलो हो तो गोभी के एक फूल के कितने पैसे होंगे?
4: ये भी नहीं बतला सकता।
1: ये खूबसूरत सूट जो आपने पहन रखा है, उसके बनाने में कितने पाउंड और कितने आउंस ऊन खर्च हुई होगी?
4: जी ये भी मैं नहीं बतला सकूंगा।
1: ये भी नहीं बतला सकूंगा, वो भी नहीं बतला सकता। अगर आप कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं बतला सकते, तो आप इंटरव्यू देने आए क्यों हैं? मैंने कहा था ना आपसे कि आप मेरा वक्त जाया मत कीजिए।
4: लेकिन मैं अर्ज करूं कि इन सवालात का इस नौकरी से क्या ताल्लुक?
1: ताल्लुक है, हर सवाल का नौकरी से ताल्लुक है। अब आप जा सकते हैं।
4: जी
1: जी हाँ, अब आप जा सकते हैं।
4: जी, अगर इस तरह के बेतुके सवालात आपसे पूछे जाएं तो क्या आप जवाब दे पाएंगे?
1: क्यों नहीं, वरना मैं मैनेजर की कुर्सी पर कैसे पहुंचता?
4: जी, क्या आप बतला सकते हैं कि आपके मूछे मुंह पर क्यों, गर्दन पर क्यों नहीं?
1: मूछे? ये कोई सवाल है भला?
4: अगर एक नाई कैंची से आपके सर के सारे बाल आधे घंटे में काट सकता है, तो 4 नाई मिलकर उस्तरों से आपके सर के बालों को कितनी देर में सफा चट कर सकते हैं?
1: कमाल है, आप इंटरव्यू देने आए हैं या इंटरव्यू लेने?
4: जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं ऐसी 562 कुर्सियों का कितना वजन होगा?
1: लेकिन मिस्टर, मैं कहता हूं कि आप यहां से।
4: लेकिन जो मेज आपके आगे पड़ी है, उतनी 50 मेजें बनाने के लिए कितने दरख्त काटने पड़ेंगे? जी, कितने मिस्त्री लगाने पड़ेंगे, कितनी कीने खर्च होंगी?
1: ओह, हद हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।

0: यानी कि उम्मीदवार होकर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं।
1: जी हाँ, शायद आप भी बेतुके सवाल से घबरा गए हैं। अब आपसे मैं काम के सवाल पूछूंगा। क्या आप बतला सकते हैं कि जब से आप इस ब्रांच के मैनेजर बने हैं, इस ब्रांच को कितना नफा या नुकसान हुआ?
0: कमाल है, आप उम्मीदवार हैं या इस कंपनी के ऑडिट ऑफिसर?
1: जी, क्या आप बतला सकते हैं कि आपके पास इस वक्त कितनी पेंडिंग चिट्ठियां हैं जिनका जवाब आपने अभी तक नहीं दिया है?
0: जी,
1: क्या आप बतला सकते हैं कि आपके पास हर महीने हेड ऑफिस से कितने रिमाइंडर्स आते हैं, फुला स्टेटमेंट आया, फुला भेजा है कि नहीं और रिटर्न नहीं पहुंचा?
0: आप तो ऐसे सवाल पूछते जा रहे हैं जैसे इस कंपनी के जनरल मैनेजर लगे हों।
1: आखिरी सवाल
0: जी,
1: क्या आप बतला सकते हैं कि इस नौकरी के लिए 40-50 उम्मीदवारों को बुलाकर उनका इंटरव्यू लिए बिना ही वापस क्यों भेज दिया गया, और जिन 2-3 उम्मीदवारों का इंटरव्यू आपने लिया उनसे आपने कोई काम का सवाल भी पूछा जिससे उसकी काबिलियत का पता चल सकता? जी, क्या आप बतला सकते हैं कि आपने मिस जलेबी वाला की सिलेक्शन कैसे कर दी, उसमें कौन सी खूबी है, क्या वो टाइप जानती है, क्या वो शॉर्टहैंड जानती है?
2: मैं खामोश हूं और आप सर पर चढ़े चले आ रहे हैं। किस उम्मीदवार में कितनी काबिलियत है यह देखना मेरा काम है, आपका नहीं। अब आप यहां से जाएंगे या मैं चपरासी को बुलाकर आपको यहां से निकलवा दूं? राधेलाल,
1: ठहरिए, इधर तशरीफ लाइए।
2: मतलब
1: आपने अपनी पोजीशन का नाजायज इस्तेमाल किया है और इस तरह की सिलेक्शन करके आपने कंपनी को नुकसान पहुंचाया है।
2: जी,
1: क्या अब भी आप अपने को मैनेजर रहने के काबिल समझते हैं? क्यों ना आपको रिवर्ट करके वापस असिस्टेंट मैनेजर बना दिया जाए?
0: ओफो, आप तो मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर लगे हों।
1: ठीक पहचाना आपने।
0: जी,
1: इधर देखिए
0: सर।
1: जी
0: हाँ, आई एम सॉरी सर,
1: मैं ही हूं इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, और जिस लड़की यानी कि मिस जलेबी वाला को आपने सिलेक्ट किया है वो मेरी बीवी।
0: आपकी बीवी?

इंटरव्यू। हवा महल में अभी आपने श्री वी एम आनंद का लिखा ये प्रहसन सुना। इसे प्रस्तुत कर रहे थे मुख्तार अहमद।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस समय रात्रि के 8:15 हो रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज करेंगे 13B इस फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है बाबा सहगल, अनुष्का मनचंदा और लॉय मेनोंसा ने। नीलेश मिश्रा ने इस गीत को लिखा है और धुन बनाई है शंकर एहसान लॉय ने।

ये गीत अभी आपने सुना 13B फिल्म से, और इस गीत में अभिनेता थे आर माधवन, और आज उनका जन्मदिन है तो उन इसी उपलक्ष्य में उनके कुछ गीत हम आज आपको सुनवा रहे हैं। आइए ये अगला गीत सुनते हैं, थ्री इडियट्स फिल्म से आवाजें सोनू निगम, शान और स्वानन किरकिरे की। स्वानन किरकिरे का ही ये इस गीत को इन्होंने लिखा है और धुन बनाई है शांत।

होटो को करके गोल, सीटी बजा के बोल, लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होटो को करके गोल, होटो को करके गोल, सीटी बजा के बोल।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक और आइए अब आपको सुनवाते हैं जोड़ी ब्रेकर्स। इस फिल्म का गीत सलीम मर्चेंट, श्रद्धा पंडित और शादाब फरीदी की आवाजें। शब्द रचना है इरशाद कामिल की और इस गीत को धुन में बनाया है क्लिंटन सेरेजो ने।

0: साथियों, आज साजिद वाजिद इस संगीतकार जोड़ी के वाजिद खान की पुण्यतिथि है। इस दिन पर हम उन्हें याद करते हैं। उन्होंने कई गीत बॉलीवुड सिनेमा को दिए हैं और उन्हीं में से एक गीत जो कि काफी प्रचलित भी है, आइए आपको सुनवाते हैं। दबंग 2 फिल्म का एक गीत है, इसे गाया है वाजिद, ममता शर्मा और श्रेया घोषाल ने। जलीस शेरवानी ने इसे लिखा है और धुन बनाई है साजिद वाजिद ने।
1: Ready? 1, 2, 1, 2, 3.

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: और चित्रलोक कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुनिए विविध भारत।

0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। रात्रि के 8:45 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा

0: क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
2: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमा के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
3: I am confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
3: Of our shared future.
2: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनेरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
2: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं। उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
1: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी

0: पत्रक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने दो विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रूपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रूपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
3: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही है वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही है, किसान के हित में रही है। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रूपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से
1: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री

0: साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-10481, 011-2371-7117 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
1: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Mai Aung Lian hold talks in New Delhi, emphasize upon preventing misuse of their territory against each other's security interests. India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement becomes effective, giving duty-free access to Indian exporters on 98% of Oman's tariff lines. India and Australia to enhance defense industrial collaboration in futuristic technology research. Malaysia joins countries banning social media use by children below 16. And orange alert for thunder squall issued for Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh till tomorrow. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar, U Mee Aung Lian, held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defense, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने कि यहाँ हम लोरियाँ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, हमने कोधे प्याली में।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

वो अभिनेत्री जिसने कई दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज किया, जिसने एक काली अंधेरी रात में चमकते चांद को देखकर ये बात कही थी।

पैदा हुई 1 जून 1929 को कोलकाता में। नरगिस दत्त की मां थी जद्दनबाई, जो उस जमाने की बहुत ही मशहूर शास्त्रीय गायिका थी। इसके अलावा वो नर्तकी, निर्देशक, संगीतकार और अभिनेत्री के तौर पर बहुत ही मशहूर थी। यहां तक कि भारतीय सिनेमा में संगीत देने वाली पहली महिला संगीतकार थी जद्दनबाई। हमेशा वो ये चाहती थी कि उनकी बेटी फातिमा रशीद अभिनय की दुनिया में जाए, लेकिन नरगिस का ऐसा कोई इरादा नहीं था। आपको बताते हैं कि सन 1935 में, जब फातिमा रशीद सिर्फ 6 बरस की थी, जद्दनबाई ने उन्हें अभिनय का मौका दिया। फिल्म थी तलाश-ए-हक। बतौर बाल कलाकार नरगिस के अभिनय की पारी

जैसे कि हमने आपको बताया, नरगिस का अभिनय का कोई इरादा नहीं था, वो तो डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन माँ ने जिद पकड़ रखी थी कि बेटी बनेगी तो केवल अभिनेत्री। एक दिन जद्दनबाई ने उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए भेजा जाने माने निर्माता निर्देशक महबूब खान के पास। चूंकि नरगिस का मन नहीं था एक्टिंग करने का, इसलिए उन्होंने बड़े बेमन से स्क्रीन टेस्ट दिया। बस यूं ही अपने डायलॉग्स बोल दिए, ये सोचकर यूं ही बोल दिए कि महबूब खान उन्हें फेल कर देंगे और वो डॉक्टर बनने के रास्ते पर चल पड़ेंगी। लेकिन उनका ये अंदाजा गलत निकला। महबूब खान ने अपनी फिल्म तकदीर के लिए नरगिस को नायिका चुन लिया। ये फिल्म सन 1943 में रिलीज हुई। इसके बाद सन 1945 में महबूब खान ने फिल्म हुमायूं में काम करने का मौका दिया नरगिस को। इसके 4 बरस बाद नरगिस का करियर चमक उठा। सन 1949 नरगिस की 2 फिल्में आईं। एक थी राज कपूर की फिल्म बरसात।

जैसा कि हमने कहा, सन 1949 में नरगिस का करियर चमक उठा। बरसात के अलावा इस साल आई दूसरी महत्वपूर्ण फिल्म थी अंदाज।

अंदाज में राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ नरगिस का प्रेम त्रिकोण था। नरगिस अपने अभिनय से दर्शकों का ध्यान खींचने में कामयाब रही।

जिंदगी की राहों में कामयाबी और नाकामी जैसे बारी बारी से आती रहती हैं। सन 1949 में चमका नरगिस का तारा सन 1950 के बाद अचानक धूमिल पड़ने लग गया। एक के बाद एक उनकी कई फिल्में नाकाम होती रहीं। इन फिल्मों में खास थी शीशा, बेवफा, आशियाना, अंबर, अनहोनी, शिकस्त, पापी और धुन। सन 1955 का जैसे नरगिस के करियर को इंतजार था, राज कपूर के साथ उनकी फिल्म आई श्री 400।

तीसरी 420 बेहद कामयाब रही। राज कपूर और नरगिस की जोड़ी बहुत पसंद की गई और उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में फिल्में एक साथ की। यहाँ आपको बता दें कि राज कपूर और नरगिस ने सबसे पहले सन 1948 में फिल्म वर्षा में काम किया था। इसके बाद बरसात, अंदाज, जान पहचान, प्यार और फिर आई आवारा।

आवारा के बाद राज कपूर और नरगिस की जो फिल्में आईं, उनके नाम भी आपको बता दें, अनहोनी, आशियाना और उसके बाद आ।

0: रहो प्यार में।
1: आह के बाद धुन, पापी और जागती रहो राज कपूर और नरगिस की फिल्में हैं। इसके अलावा एक और फिल्म जो राज कपूर ने प्रोड्यूस नहीं की, सन 1956 में आई चोरी चोरी राज कपूर और नरगिस के अभिनय वाली आखिरी फिल्म थी।

0: प्यारा प्यारा।
1: राज कपूर की फिल्म जागते रहो में नरगिस ने अतिथि कलाकार के तौर पर भूमिका निभाई और इस फिल्म के आखिर में लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना नरगिस पर फिल्माया गया।

नरगिस की अभिनय यात्रा में हम आ पहुंचे थे सन 1956 तक। अब चलते हैं आगे, साल 1958। महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया।

महबूब खान और नरगिस का नाता पुराना रहा है और आज नरगिस की अभिनय यात्रा में हमने आपको बताया है कि किस तरह से बहुत कम उम्र में महबूब खान ने नरगिस से अपनी फिल्मों में काम करवाया था। जब अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म मदर इंडिया की तैयारी महबूब खान ने की तो जाहिर है नायिका नरगिस ही होनी थी, लेकिन नरगिस के जीवन में यह फिल्म अभिनय के अलावा दूसरे कारण से बड़ी महत्वपूर्ण बनी। फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग बिलीमोरा में चल रही थी। दृश्य था आग से नरगिस को बचाने का। नरगिस आग में घिर गई थी। उनके बेटे की भूमिका निभा रहे सुनील दत्त ने आग में कूदकर नरगिस की जान बचाई। वो सुनील दत्त से इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें अपना जीवन साथी बना लिया। 11 मार्च 1958 नरगिस और सुनील दत्त ने

दिलचस्प बात यह है कि बलराज दत्त जब रेडियो में बतौर अनाउंसर काम करते थे तो उन्होंने अपने जमाने की नामी अभिनेत्री नरगिस का इंटरव्यू किया था। नरगिस को इंटरव्यू करने का इस नौजवान का अंदाज बड़ा पसंद आया था। बलराज दत्त फिल्मों में आए सुनील दत्त के नाम से। सुनील दत्त और नरगिस एक साथ पर्दे पर ज्यादा नजर नहीं आए। सन 1964 में आई फिल्म यादें जरूर ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों ने ऑन स्क्रीन अपनी मौजूदगी दिखाई। शादी के बाद सुनील दत्त और नरगिस के जीवन में

तीन बच्चों की किलकारियां गूंजी, संजय दत्त, नम्रता और प्रिया दत्त। सुनील दत्त और नरगिस के जीवन का एक दिलचस्प किस्सा। फिल्म हमराज की शूटिंग चल रही थी। सुनील दत्त को इस फिल्म के कुछ दृश्यों में 110 बरस के बूढ़े का किरदार निभाना था। पंडरी सुकर ने उनका मेकअप कर लिया था और वो एक बूढ़े बाबा के भेष में सेट पर मौजूद थे। नरगिस सुनील दत्त से मिलने आई, सबसे पूछती रही दत्त साहब कहां हैं। वहीं मौजूद एक बूढ़े बाबा ने कहा, वो तो सेट पर आए ही नहीं है। नरगिस हार मानकर वहां से जाने लगी। इस बीच तकरीबन 2 घंटे बीत गए। मेकअप मैन पंडरी दादा ने धीरे से नरगिस को बताया कि जिस बूढ़े बाबा से आपने दत्त साहब के बारे में पूछा, असल में वही दत्त साहब हैं। इतने शानदार मेकअप को देखकर नरगिस दंग रह गईं। उन्होंने मेकअप मैन पंडरी दादा को अपनी कीमती घड़ी भेंट कर दी। सुनील दत्त और नरगिस का ऐसा था दिलचस्प जीवन। नरगिस भारतीय सिनेमा की ऐसी पहली अभिनेत्री थीं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। समाज सेवा के लिए उन्हें राज्यसभा में सदस्य के रूप में चुना गया था। फिल्म मदर इंडिया में बेमिसाल अदाकारी के लिए नरगिस को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार। शादी के बाद नरगिस ने खुद को अभिनय से दूर कर लिया। वो परिवार और समाज सेवा में लग गईं। लेकिन अनवर हुसैन और अख्तर हुसैन, जो नरगिस के भाई थे, उनके जोर देने पर नरगिस ने सत्येन बोस की फिल्म रात और दिन साइन की। सन 1967 में आई रात और दिन। इस फिल्म के लिए नरगिस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।

सन 1958 कार्लोवी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में नरगिस को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार। 3 मई 1981 पैंक्रियाटिक कैंसर ने नरगिस के हिस्से की सांसें खत्म कर दी। एक अभिनेत्री इस दुनिया से विदा।

पैंक्रियाटिक कैंसर ने नरगिस को जब उनके चाहने वालों और उनके परिवार से छीना। नरगिस महज 51 साल की थी। सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाली बात यह है कि वो अपने लाडले बेटे को रुपहले पर्दे पर बतौर हीरो आते नहीं देख पाई। संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी नरगिस दत्त के देहांत के बाद रिलीज हुई और संजय दत्त को इसका हमेशा से अफसोस रहेगा। सन 1982 में नरगिस की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई। ये फाउंडेशन कैंसर पीड़ित लोगों के कल्याण के लिए आज तक काम कर रहा है। नरगिस एक जागरूक नागरिक, एक बेमिसाल अभिनेत्री, एक शानदार इंसान। अभिनेत्री नरगिस को हमारा विनम्र नमन।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें थी अभिनेत्री नरगिस की, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

मेरी किस्मत की किताब है तेरे हाथों में, सोच लो क्या करना है। मेरी तन्हाइयों का हिसाब है तेरे हाथों में, सोच लो इस दिल का अब क्या करना है।

बहाने इन बहानों के फसाने हमें कर रहे हैं बेकरार। कब बनेगी फूल ये कली है बस इसी का इंतजार।

क्या भरोसा है कल का, जो करना है चलो आज ही करें। जो चाहते हैं कि रेशम सा हो रिश्ता हमारा, तो ये कोशिश आज ही करें।

जब से लगाया है दिल, इस दिल का तो बुरा हाल है। छोड़ जाओगे गर कभी तो क्या होगा, जी को सता रहा यही।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आज नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस बीच

0: किया गया है एक हाउस होल्ड की महिला को, क्योंकि हम जानते हैं कि इतने साल हो गए हमारी इंडिपेंडेंस को, लेकिन फिर भी अभी भी इतने सारे हाउस होल्ड ऐसे थे रूरल एरियाज में, ये रूरल हाउस होल्ड को जोड़ने की स्कीम है ज्यादातर, और इतने सारे हाउस होल्ड थे कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते थे पढ़ते थे। आज तक ऐसी खबरें छप रही थी कि 8-8, 9-9 घंटे तक लोगों को चल के जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, या बहुत किलोमीटर्स का सफर तय करके दूर दराज इलाकों में लोगों को जाना पड़ता है। जो हिली टेरेन्स हैं उसमें पानी की बहुत ज्यादा समस्या थी, जो डेजर्ट एरियाज हैं खासकर जैसलमेर, राजस्थान और गुजरात, कच्छ के साइड में बहुत सारे ऐसे हमें एविडेंस मिलते थे कि जहां पानी की समस्या इतने साल बाद भी आजादी के, मतलब ये एक किसी भी देश के लिए कोई अच्छी कन्वीनियंट स्थिति नहीं है, कन्वीनियंट पिक्चर नहीं है कि आप एक बेसिक सुविधा, जैसे आप पावर की बात कर लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लीजिए, या पानी की बात कर लीजिए, टॉयलेट्स की बात कर लीजिए, ये बड़ी बेसिक चीजें हैं जो आम तौर पर अभी तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन किसी वजह से जो नहीं हो पाई। और आपने सही कहा कि अगर आप स्वास्थ्य लाभ भी देखें इस योजना से तो बहुत ज्यादा लाभ होता है, और इस पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, बहुत लोगों ने बहुत सारे रिसर्च और एविडेंस बेस्ड पेपर्स भी निकाले हैं, जिससे ये भी कहा है कि इससे जल जीवन मिशन की वजह से बीमारियों में बहुत कमी आ रही है, चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स इंप्रूव हो रहे हैं, महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति इंप्रूव हो रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट गर्भवती महिला के लिए ये एक बून की तरह आया है, क्योंकि बहुत सारी वाटर बोर्न डिजीजेस गर्भवती महिला को गंदे पानी की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ता था। और जल जीवन मिशन से क्या हुआ है, ना सिर्फ पेयजल घर तक गया है, बल्कि बहुत सारी, मतलब प्रोडक्टिव टाइम जो महिला का पानी इकट्ठा करने में जाता था वो अब और चीजों में वो व्यस्त हो सकती है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर बन सकती है, वो लखपति दीदी योजना का लाभ उठा सकती है, क्योंकि उसके पास अब वक्त है, घर में पानी आ रहा है। ये सुनने में बहुत छोटी बात लगती है लेकिन बहुत बड़ा प्रभावी कदम है।
1: जी जी जी अदिति, और इसी क्रम में हम आगे बढ़े। शुभ में सैनिटेशन की अगर बात करें, स्वच्छ भारत मिशन ये एक फ्लैगशिप मिशन जिसे कहें, और जब भी इसे इम्प्लीमेंट किया गया था उसके पहले शायद पता नहीं इस तरह की योजना कभी सुनने को नहीं मिली थी। सैनिटेशन की बात करें, स्वच्छ भारत मिशन जिसे ओपन डेफिकेशन एलिमिनेट ऑलमोस्ट कर दिया गया, मास कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी टॉयलेट्स, ये कोई छोटी बात नहीं है। शुभ में क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में?
2: हाँ, ये वाला चीज जो आप देखेंगे
1: जी,
2: कि पानी का सप्लाई, स्वच्छ भारत मिशन, इन सभी चीजों से जो बदलाव अभी दिख रहा है वो है काफी सिग्निफिकेंट। आप इसके पहले एक आम बात थी कि बहुत सारी जगहों पे ओपन डिफिकेशन और उससे चलते जितने सारे तरह की बीमारियां, उनका खासकर मॉनसून में फैल जाना, बाकी समय में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें एक आम सरफ चीज था कि भाई होता है, क्या किया जाए। इसमें जो भी जो नेशनल हेल्थ सर्वे के जब डेटा देखेंगे तो सबसे बड़ी बदलाव आप उस डेटा से देख सकते हैं कि ये एक से कहते हैं आपका एक मेजरमेंट आ गया है कि कितना और कितना प्रभावी ये सारे बदलाव हुए हैं। अभी आप, मैं आग्रह करूंगा कि कोई आकाशवाणी के जो लिसनर्स हैं, कभी अगर वो ट्रेन का सफर करे, दूर दराज के रास्ते में चलते हुए एक जो कॉमन साइट था ओपन डेफिकेशन का, वो करीब एकदम वैनिश हो गया। और ये बहुत ही बड़ा बदलाव है, इसमें टाइम लगा, इसमें करने में शुरुआत में बहुत सारे हिचक आए, बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस करने पड़े, लोगों को बहुत सारे हिदायतों के साथ साथ बहुत सारे आग्रह का भी इंटरेस्ट चीजें दिया गया, इधर उधर की जिसे कहते हैं शॉर्टकमिंग्स भी आई, लेकिन इतने साल के बाद अब जाके उनका इफेक्ट लोगों के जिंदगी के ऊपर अभी दिख रहा है। और ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज इसलिए है कि ये एक तरफ एक सिविक चेंज आ गया है हमारे देश में, बहुत सारे इलाकों में। अब जिन सारी चीजों की बात करें, जैसे ओपन डेफिकेशन, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन के साथ उज्ज्वला, या उसके पहले जब जैम ट्रिनिटी, इन सब के चलते लोगों में जो एक नया वार्तालाप का एक सिस्टम आ गया, एक नया जैसे कहते हैं आइडियाज का एक कॉम्बिनेशन बन गया है कि ये सारी चीजें तो जिंदगी में होनी चाहिए, इनका ना होना ही आज आश्चर्य की बात लगता है बहुत काफी जगहों पे। ये जिसे कहते हैं सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, एक बहुत बड़ा चीज है डेमोक्रेसी के लिए, बहुत बड़ा चीज है लोगों में अपना भरोसा बनाने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस बनाने के लिए कि हम इससे आगे चल सकते हैं। ये सारी चीजों के लिए हमें डेली का जो लड़ाई है वो जूझना नहीं पड़ेगा, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये सब हमारे लिए

0: services, manufactured products, whatever it is, and earning income and keeping a track of it. And then also being able to sustain it and being able to pay, repay loans. And then, because the mudra loan, as we can see, is of three stages. Shishu, then Kishore, and then Tarun. So there are three stages in which so you graduate from one to another. To be able to do that sort of a thing, you need a considerable amount of financial, what I should say, architecture in place. And that is a very interesting innovation that has been created. Obviously, compared to, say, Ujwala or Sakshatkar Mission or missions like the Swachh Bharat Mission, this is relatively more recent. So it'll start showing its effect later. But already you can see from the PLFS survey, the Periodic Labor Force survey, that about 50% of Indians are now reporting self-employment. And that self-employment is not distress employment. It is employment, self-employment that is being made possible for a large number percentage of them because they are confident that they can take on these enterprises and can take on capacity building, expansion of their products and services, which wasn't possible earlier. How it will pan out is a very big thing. Remember, we are talking about a population base, which is the largest population base in the world. To be able to create self-employment in that sort of a large population, with being able to support themselves, being able to support their families, being able to carry on the business for long length of time, not being drawn into the race for getting a job. Here, there we are talking of plenty of changes, which is not very easy to think of as just, you know, suddenly that we've done it and it's one-time support. It's not a one-time support. It's something which is actually a result of series of interventions, which brings a scheme like Mudra into being a success that it is being envisaged.
1: Right, Shubh. देखिए अभी शुभ मैंने self-employment की बात की. Stand Up India scheme भी एक ऐसी scheme है जिसके तहत 15,000 प्लस करोड़ लोन अभी तक डिसबर्स किए जा चुके हैं. इस बारे में भी थोड़ा हमें बताएं. और पीएम स्वनिधि योजना जो कि एक बहुत ही जिसे कह सकते हैं एक फ्लैगशिप स्कीम जिसे कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को ये लाभान्वित कर रहा है. कैसे देखते हैं आप इसे?
2: देखिए, ये जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है ये एक बहुत कॉन्सिक्वेंशियल रिफॉर्म है. वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे याद है कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ साथ ही इसका आरंभ किया गया था कोविड-19 के दौरान. जून 2020 में ये शुरू की गई थी. उस वक्त मंशा ये थी कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो बहुत बुरी तरीके से हिट हुए थे, जिनकी वजह से हम और आप कोविड से लड़ पाए थे, क्योंकि वो सब्जी बेच रहे थे, वो वेयर्स बेच रहे थे, तो हम उसको खरीद रहे थे.
1: इवन अगर गिग वर्कर्स की बात करें,
2: बिल्कुल गिग वर्कर्स की भी स्वनिधि में वो भी काफी हद तक कवर होते हैं. तो उनके लिए ये स्कीम लाई गई थी कि बेसिकली आइडिया था कि वर्किंग कैपिटल जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको दी जा सके, ताकि वो ऐसा ना हो कि कोविड-19 की वजह से बिल्कुल ही त्रस्त हो जाएं. तो तब से इतनी इम्पोर्टेंट बन गई स्कीम और इसका लाभ इतना दिखाई देने लगा फाइनेंशियल सिस्टम में कि स्ट्रीट वेंडर्स को डिग्निटी मिली, फाइनेंशियल इंक्लूजन मिला. सबसे इम्पोर्टेंट होता है वर्किंग कैपिटल हाथ में है तो आप 10 तरीके की चीजें कर सकते हैं. तो अब क्या किया गया है, हाल ही में 2025 में यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम को रिस्ट्रक्चर भी किया है और लोन देने की जो अवधि है वो 2030 तक बढ़ा दी गई है. और ना सिर्फ ये किया गया है, तीन लेवल्स पर लोन दिया जा रहा है स्वनिधि में स्ट्रीट वेंडर्स को. पहले लेवल पर आप ये 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है, वैसे ही दूसरे लेवल पे 20 से 25,000 कर दिया गया है, और फाइनल लेवल जो है वो 50,000 है. और इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है उन लोगों को जो टाइमली रीपेमेंट कर रहे हैं. प्लस एक बहुत महत्वपूर्ण जो इस स्कीम का बिंदु है वो ये है कि अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन ज्यादा से ज्यादा कर पा रहे हैं तो उस स्थिति में आपको कैशबैक इंसेंटिव भी दे रही है ये स्कीम. तो अभी तक अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि करीब 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स पूरे देश में हैं जो इसमें लाभान्वित हो चुके हैं, और करीब 17,000 करोड़ तक का जो लोन है वो दिया जा चुका है. 122 लाख लोन्स दिए जा चुके हैं करीब 17,000 करोड़ के.
1: राइट आदित्य, लेट्स टॉक द वुमेन फोक लखपति दीदी अभियान. ये लगभग 2 करोड़ से ज्यादा महिलाएं बन चुकी हैं लखपति दीदी और 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी है. कुछ बताएं इसके बारे में.
2: जी, ये एक बहुत बड़ी मुहिम है सरकार की. और किसान सम्मान निधि की जो बात हुई उसमें बस छोटी सी एक चीज जोड़ना चाहूंगी कि जब ये अमाउंट तय हो रहा था तब एक स्टडी करवाई गई थी कि फार्मर्स का कॉस्ट इनपुट क्या है, उनकी कॉस्ट कवर करने का ये कवायद है.
1: जी,
2: जो 6,000 की रकम तय की गई है ऐसा

पाया गया कि अगर ये दे दी जाए तो एटलीस्ट उनका जो इनपुट है वो कवर हो जाएगा, इस वजह से ये 6,000 पे तय हुई थी। पर अब जो महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, महिलाओं को क्या किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बहुत सारे वक्तव्यों में ये कहा है कि विकसित भारत के 4 स्तंभ होंगे, जिसमें से पहले हम चर्चा कर चुके हैं गरीबों की, उसके बाद हम चर्चा कर चुके किसानों की, तीसरा यूथ, आपने स्टैंड अप इंडिया की बात की, और अब चौथी आप बात कर रहे हैं महिलाओं की। ये 4 स्तंभ हैं, जब तक आप इनको फाइनेंशियली एम्पावर नहीं करते तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि आप विकसित भारत के गोल को अचीव कर पाएं, जिसकी वजह से

0: जो भाग ले रही हैं, लखपति दीदी योजना, उसके तहत ये कोशिश कर रही है कि हर महिला एक साल में 1,00,000 रुपए अपने बलबूते पर कमा सके। उसमें तरीके तरीके के प्रावधान किए गए हैं, जैसे ड्रोन दीदी का प्रोग्राम भी उसके साथ इंटीग्रेट किया गया है। कुछ महिलाएं ड्रोन दीदी प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग लेकर खेतों में ड्रोन के माध्यम से मतलब पेस्टिसाइड्स छिड़काव कर रही हैं या और बहुत चीजें कर रही हैं। सिमिलरली कुछ लोगों को आप हॉर्टिकल्चर में इन्वॉल्व कर रहे हैं। इस तरीके से डाइवर्सिफाई किया जा रहा है, फिशरीज में भी इन्वॉल्व कर रहे हैं महिलाओं को। उनका फाइनेंशियल जो इक्वेशन है, फाइनेंशियल जो एम्पावरमेंट है, उसको बढ़ाने की कवायद है। और एक चीज की वर्ल्ड बैंक की अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी, जिसको हम जिनी इंडेक्स के नाम से जानते हैं, वो देशों को मापती है इस माध्यम से कि कितनी इक्वल सोसाइटीज हैं और जो फ्रूट्स ऑफ पावर हैं वो कितनी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं लोगों में। ये जितना कम होता है इसका वैल्यू, उतना एक सोसाइटी को इक्वल माना जाता है। तो वहां मैं पढ़ रही थी कि भारत का जो वैल्यू है जिनी इंडेक्स में वर्ल्ड बैंक की, वो 25.5 है और चाइना का 35.7 है और यूएस का 41.8 है। कहने का मतलब है कि ये जो सरकार ने लैंडस्केप तैयार किया है वेलफेयरिज्म का, इससे ये प्रूव हो रहा है, और ये थर्ड पार्टी ऑडिट है, दुनिया की बहुत बड़ी एजेंसी है वर्ल्ड बैंक, ये हम और आप नहीं कह रहे हैं या सरकारें नहीं कह रही हैं यहाँ बैठकर, ये एक थर्ड पार्टी ऑडिट, एक इम्पोर्टेंट एजेंसी कह रही है कि भारत में अब धीरे धीरे वेलफेयर बेनिफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने लगे हैं। और जैसा आपने अपने वक्तव्य में कुछ देर पहले कहा कि एक्सट्रीम पावर्टी, जिसका मेजर क्या है, उसका मेजर है कि $3 से कम पर प्रतिदिन कितने लोग इस देश में रहते हैं, उसकी जो संख्या है वो 16.2% 2011-12 में थी और अब घटके 5.3% रह गई है। तो धीरे धीरे एविडेंस क्रिएट हो रही है। इसी वजह से बहुत सारी एजेंसीज, जो सरकारी ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल एजेंसीज भी, अपने एविडेंस बेस्ड पेपर्स में ये कह रही है कि भारत अब उस तरफ बढ़ रहा है जहां उसको विकसित भारत बनने के लिए जो मैकेनिज्म्स चाहिए थे वो इन प्लेस हैं। विकसित भारत का क्या मतलब है? विकसित भारत का मतलब है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी है हमने अपनी। अभी हम लो मिडिल इनकम कंट्री के कैटेगरी में हैं, हमें हाई इनकम कंट्री बनना है 2047 तक। वो बनने के लिए चर्चा की है आपने, जिन तबकों की, उनको आपको धीरे धीरे फाइनेंशियली इंक्लूसिव बनाना है, उनको एम्पावर
1: करना है। राइट राइट, थैंक यू सो वेरी मच शुभमा आदिति, बोथ ऑफ यू फॉर हैविंग जॉइंड अस एंड शेयर्ड योर व्यूज ऑन द टॉपिक। थैंक यू सो वेरी मच।
0: थैंक यू।
2: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं और उनका जमीनी असर। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक सुभमोय भट्टाचार्य जी और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशित कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR@nsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: इन द स्पेशल सीरीज यू आर लिसनिंग टू अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, key welfare schemes and their grassroots impact. Participants were Shubhamoy Bhattacharji, economic analyst, and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator was Nishit Kumar. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.